0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। सुबह के 5:55 और 36 सेकंड हुए हैं। आइए हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें नुपुर कुलश्रेष्ठ आपके साथ होंगी। सुबह 7:02 पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कार्यक्रम लेकर आएंगी निशा तंवर, जिसमें आप दिल्ली जगत की खबरों को आप सुन सकते हैं, साथ ही साथ गीतों का आनंद ले सकेंगे। सुबह 8:02 पर नुपुर कुलश्रेष्ठ आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 9:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने, जिसमें निशा तंवर आपके साथ होंगी। सुबह 10:02 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर, यह अंग्रेजी कार्यक्रम है जिसमें आप इंग्लिश गीतों को आनंद ले सकेंगे। इसमें शालिका कपूर आपके साथ रहेंगी। सुबह 11:02 पर हिना मौज आपके लिए लेकर आएंगी बॉलीवुड जगत की खबरें और कार्यक्रम होगा बॉलीवुड ट्रेल्स। दोपहर 12:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक प्ले इट कूल, जिसमें शालिका कपूर आपके साथ रहेंगी। दोपहर 1:02 पर हिना मौज आपके लिए लेकर आएंगी फरमाइशी संगीत पर आधारित कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। इसमें श्रोता अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजकर। दोपहर 2:02 पर आप सुनेंगे एसएम शाहिद के साथ कार्यक्रम आशियाना। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे एक लाइव फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, इसमें सुषमा शर्मा आपके साथ रहेंगी। आज का विषय रहेगा आयुर्वेदा फॉर हैप्पियर टुमारो, और इसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर महेश व्यास। शाम 4:02 पर आप सुनेंगे सैनिक भाइयों का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, इसमें एसएम शाहिद आपके साथ रहेंगे। इसमें आज मेहमान होंगे अनिल नांडा, रिटायर्ड कर्नल है ये। शाम 5:02 पर सुषमा शर्मा आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम सिटी लाइट्स। शाम 6:02 पर आप सुनेंगे गीता चौधरी के साथ मैसेज मसाला विंक्स। शाम 7:02 पर रघु के साथ आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक हिट्स एंड मेमोरीज, इसमें आप इंग्लिश गीतों का आनंद ले सकेंगे। शाम रात्रि 8:02 पर गीता चौधरी आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, इसमें नॉन स्टॉप डांस हिट्स आप सुन सकते हैं। रात्रि 9:02 पर ताहिर हसन आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपकी याद आती रही, इसमें 90s के गीतों का आप आनंद ले सकेंगे। रात्रि 10:20 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक ऑल दैट जैज रघु के साथ, और रात्रि 11:02 पर सजेगी गजलों की खूबसूरत महफिल रंग महफिल, जिसमें ताहिर हसन आपके साथ होंगे। इसमें आप गजलों का आनंद ले सकेंगे। तो ये थी एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से सुबह थोड़ी देर में यानी सुबह 6:02 पर आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को फिर दोहराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सहअध्यक्षता की। श्री जयशंकर ने कहा, दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज MV केप डाउ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचाया गया, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हुई। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया। प्रवर्तन निदेशालय ने त्रिपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के अंतर्गत की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्सी चालकों और किसानों के लिए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना आरंभ की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के मकसद से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रूपये से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। अमरीका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिसंबर में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया और भारतीय खिलाड़ी जापान के आइशी नागोया में एशियाई खेलों के पांचवें दिन आज कई खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। भारत ने अब तक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर हो चुकी है इस प्रोग्राम की शुरुआत, जिसका नाम है सुप्रभात। और आप सभी को इस प्यारी सी सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। और इससे पहले कि हम करें अपने परिवार इस प्रोग्राम की शुरुआत अपने लोगों के साथ, एफएम रेनबो परिवार के लोगों के साथ, तो उससे पहले एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है अभी आपके लिए, आप उसको सुनिए। सत्य वचन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनेंगे आप और उसके बाद होगी जल्द आपसे मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एफआर मीडिया एकेडमी।
2: दोस्तों, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि एक बार जब प्रभु यीशु के पास एक धनी व्यक्ति आकर अनंत जीवन के बारे में पूछता है, तो प्रभु उससे कहते हैं कि जा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और दोस्तों, प्रभु यीशु की ये बात सुनकर वो व्यक्ति निराश हो जाता है। उसको निराश देखकर प्रभु कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश करना उतना ही कठिन होगा जितना किसी ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। ये सुनकर वहां मौजूद लोग प्रभु से कहने लगे कि प्रभु, फिर किसका उद्धार हो सकता है? तब प्रभु ने उनसे कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखकर जब हम ये अंगीकार करते हैं कि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, तारनहार है, तो प्रभु अपने वचन और हमारे विश्वास के अनुसार हम पर अपनी नजर इनायत करता है और हमारी सुधि लेकर हमारी सारी जरूरतों और मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर देता है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर तुम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होते देखना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों को माफ करना सीखो। अपने दिल से लालच और स्वार्थ त्याग दो और दूसरों के लिए दिल में बसे द्वेष को दूर करो, और जब ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खुशियों और आशीषों से भर जाएगा।

दोस्तों, जितना ज्यादा हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे, उतना ही हम अपने परमेश्वर और उसकी सामर्थ के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल वो पवित्र पुस्तक है जो हमारे सम्मुख परमेश्वर और उसके राज्य के छिपे हुए गहरे राजों को खोलती है। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इन नंबरों पर मैसेज या फोन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं सुप्रभात। तो सुबह हो चुकी है और उसी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको दे रही हूं और आप भी उठ चुके हैं बेड से, क्योंकि जो जीवन में जो भी आपको सपने आते हैं, जो भी आप उनको पूरा करना चाहते हैं, जिन भी सपनों को, तो उनको हकीकत में बदलने के लिए आपको ये जो नींद है ना प्यारी सी, इससे बाहर निकलना पड़ता है, कुछ अपने लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो आलस को त्याग दीजिए और इस आलस्य को त्याग कर आप जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका सबसे पहला शत्रु है ना। क्योंकि आलस हमारे दिमाग का ब्लैक होल है, जहां हमारे सपने सुस्ताने लगते हैं, विचार अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं और सभी योजनाएं ऐसी ही रह जाती हैं। तो इसलिए आप इसमें मत खोइए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाना ज़रूरी है और उसके लिए उठना ज़रूरी है। ज़रा सा शीट को हटाइए, पैर कदमों को धरती पर रखिए और प्रणाम करते हुए उठिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, ये जो सुस्ती है चली जाएगी। तो चार कदम ज़रा बाहर टहल कर आइए, फिर देखिए आप 20 मिनट की वॉक भी कर पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा मुझे भी, आपको भी, और साथ साथ रेडियो का साथ है तो फिर गाने जो हैं उनका आनंद भी, सुकून भी आपको मिलता रहेगा। और आलस्य पर तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, आज कुछ थोड़ी सी उससे हटकर एक और बात करेंगे कि क्या आप इसके साथ साथ बहुत कुछ है जो अपने दिमाग में रखते हैं, और क्या आप ऐसा भी करते हैं कि आप अपनी तुलना अक्सर और लोगों से करते हैं। ज़रा सोचिए, मैं भी सोचती हूँ और लौट कर आते हैं और बात करते हैं। सुन रहे हैं आप सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में।

क्विकीत और संकेत आप भी गुनगुनाइए, अपनी पसंद का कोई गाना दिल भर कर गाइए, आपको अच्छा लगेगा। और संकेत का साथ हो तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, मूड दो मिनट में आपका बेहतर हो जाता है, आपको अच्छा लगता है कुछ ही सेकंड्स में, मिनट्स की भी नहीं बात करते, कुछ ही सेकंड्स का कमाल हो जाता है जब आप पसंदीदा अपना कोई भी गीत सुनते हैं। और जब भी उदास हो तो हमेशा हैप्पी वाला सॉन्ग सुने, तभी काम करेगा। उदास रहने की ज़रूरत नहीं है, आज हम उदासी पे भी बिल्कुल बात नहीं करेंगे और हम ना ही आपके हलस्से पर बात करेंगे, क्योंकि इससे हम सबको खुद ही लड़ना है और बहुत सारी बातों से हमें खुद ही लड़ना होता है। तो आज वो बात कि मेरे बाल ज़्यादा लंबे और घने हैं या फिर मेरी जो कमीज़ है वो उसकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है, मतलब ऐसे बहुत सारे हमने एड्स भी देखे हैं और मैं ज़्यादा उनकी बात नहीं करूँगी, लेकिन हम हमेशा ये जो तुलना है वो बहुत छोटे से शुरू कर देते हैं, है ना। अगर बात करें तो जब आप नर्सरी में हैं या फिर आप जब भी शुरुआत करते हैं तो ये शुरू हो जाता है, देखो नुपुर कितनी अच्छी है और नेहा देखो क्यों रो रही है, नुपुर तो रोती नहीं, क्या यहाँ पर आप भी हो सकते हैं। तो तुलना होती है ना, कैसे रोना नहीं चाहिए, क्यों लड़ाई कर रहे हो, उसको देखा है वो कितने अच्छे से रहता है या रहती है। तो ये तो है ना, ये तुलना जो है वो एक बार जब शुरू हो जाती है तो जीवन भर चलती है। या फिर आप बात करें कि हम अपने दूसरों से अपनी तुलना करते हैं एक व्यक्ति के तौर पर, हम अपने जो हमारे साथी हैं या सहपाठी हैं पड़ोसी हैं, जब रिज़ल्ट आता है तब ये बात होती है ना, आपने अक्सर गौर किया होगा कि देखो उनके बच्चों के कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम्हारे तो आए नहीं, क्या करते हो, है ना। ये सब होता है, हर घर में होता है, सहकर्मियों से।

अपनी तुलना करते हैं, तो ये जो तुलना रहती है ना, ये ठीक तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। परिवार के की तुलना भी होती है दूसरे परिवार के लोगों से, समुदाय की तुलना, फिर हम इसको बड़े स्तर पर भी हम बात कर सकते हैं, एक कंपनी की दूसरे कंपनी से तुलना और एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से तुलना। तो तुलना जीवन में अगर कोई भी तुलना है, तो मुझे लगता है कि अगर वो जलन को समझा रही है या फिर जलन को महत्व दे रही है हमारे दिमाग में, तो वो वहाँ पर गलत है। और अगर दूसरी हम बात करें, तो तुलना अच्छी बात है या बुरी बात, थोड़ा सा आप भी सोचिए, बताइए, और मैं भी क्या सोचती हूँ इस बारे में आपसे जिक्र करूँगी। लेकिन क्या आप भी अपने जीवन में तुलना करते हैं या बच्चों के साथ इस तरह की बातें करते हैं? उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही सही कि आप इस तरह की बात करते हैं? बात करेंगे इस पर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में जिसका नाम है सुप्रभात।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात, और हम बात कर रहे थे कि आप भी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। देखिए, ये सही है या नहीं है दूसरों से तुलना करना, एक अच्छी बात है या बुरी बात है, इस पर तो बिल्कुल हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, जलन जो होती है वो एक सामान्य गुण है, क्योंकि जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम कंपेयर करने लग जाते हैं ना। हमने बहुत सारी बातें की कि जैसे कोई हमें अपने से ज़्यादा खूबसूरत लगता है, कई बार हम सोचते हैं वो पढ़ाई में अच्छा है ना, वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद है, या उसके पास अच्छी नौकरी है, या वो ज़्यादा कामयाब है, और तो उनके दोस्तों का दायरा कितना अच्छा है ना, कितने सारे दोस्त हैं, कितनी सारी साजो सामान की चीज़ें हैं, और मॉनिटरी अगर हम बात करें फाइनेंशियली, तो हम कई चीज़ों में तुलना करने लग जाते हैं। नए मॉडल की गाड़ी है, और बहुत ज़्यादा इस तरह की सोच में हम डूब जाते हैं। तो ये बात आपके नज़रिए पर निर्भर करती है पूरी तरह से कि ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से समझें कि अगर कोई भी प्रतियोगिता है, तो कोई भी प्रतियोगिता सीधी तुलना की जगह होती है, ये अच्छा है या बुरा इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे देखते कैसे हैं। एक स्वस्थ प्रतियोगिता अच्छी है, ये हर प्रतिभागी को अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर कोई प्रतियोगिता ना हो तो लोग क्या करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करेंगे और पहचान ही नहीं पाएंगे कि उनमें ये खूबी भी है, वो ये कर सकते हैं, वो ये हासिल कर सकते हैं। आप एथलीट्स के बारे में सोचिए, वो कितनी मेहनत करते हैं, और पॉइंट्स का सवाल होता है, उससे हार या जीत तय होती है, लेकिन पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हर कॉम्पिटिशन है, उसमें कोई फर्स्ट या सेकेंड तो आएगा ही, लेकिन पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, खुद की खूबियों को और अपनी क्षमताओं को पहचानना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव स्वभाव में ये आम बात है कि हम कई बार देखते भी हैं अच्छी चीज़ों को, हम उनकी जो कोई भी चीज़ अच्छी लगती है उसको सराहते भी हैं, लेकिन खुद से तुलना ना करें, क्योंकि बहुत कुछ है ऐसा ख़ास जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है, और सामने वाले के पास वो चीज़ नहीं है। तो आप ये खुद निर्णय लें कि आप जहाँ पर तुलना कर रहे हैं वहाँ तुलना करना सही भी है या नहीं। आप जुड़ रही हमारे साथ, और तुलना करनी ही क्यों, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है। तो कुछ मैसेजेस आपके हम तक शामिल हुए हैं, बिल्कुल बात करेंगे, आप जुड़े रहिए सुप्रभात के इसी सफर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर ये प्रोग्राम।

बिल्कुल, संवार लीजिए अपने हुनर को, संवार लीजिए खुद को, संवार लीजिए और जितनी भी काबिलियत है ना आपके अंदर, उस सब को संवार लीजिए। यहाँ वहाँ किसी से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तुलना की भावना जब होती है ना, ये आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ दुख ही लेकर आती है। मन में ईर्ष्या, तनाव और अपने आप को हम कम समझने लगते हैं, तो वो क्यों करना हमें ऐसा, है ना। असली मुकाबला तो हमारा खुद से ही है, दूसरों से आगे निकलने की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय अपने बीते हुए कल से करें। कल आप क्या थे और आज आप कैसे हैं और किससे बेहतर आप कैसे हो सकते हैं, इस पर काम आप बिल्कुल और हमेशा कर सकते हैं। और तुलना हमेशा ना अधूरी और गलत होती है, हमें नहीं पता कि हमारे संघर्ष

क्या हैं, सामने वाले के संघर्ष क्या हैं, उसकी परिस्थिति कैसी है, हमारी परिस्थिति कैसी है, उसकी क्षमताएं अलग हैं, आपकी क्षमताएं अलग हैं, तो इसलिए ये तुलना मत कीजिए। लेकिन हाँ, चाय पर तुलना की जा सकती है कि मेरी चाय उसकी चाय से बेहतर है, ये मुझे किसी ने भेजा है, तो यहाँ पर सोच सकते हैं, चाय के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन हेल्दी कंपैरिजन हो तो अच्छा है, आपको भी मज़ा आता है जब हेल्दी कंपटीशन होता है, क्योंकि कोई तो आपसे बेहतर होगा और कोई आप ये किसी से बेहतर होते हैं, है ना, जब परफॉर्मेंस देते हैं तो सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और स्कूल के टाइम पे तो बहुत ही आपको अगर कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कि देखो वो लड़की कितनी अच्छी पढ़ाई करती है, कितना सब कुछ करती है, अपनी पढ़ाई भी करती है, सारे काम भी कर लेती है, तो ऐसी तुलना भी की जाती है। और डॉली ने हमें ये मैसेज किया है कि इस तरह की भी तुलना होती है और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए जाते थे अच्छी बातों के लिए। और यहाँ पे पंकज हैं और वो लिखते हैं कि अपनी तुलना दूसरे अपने बच्चों की तुलना अगर हम दूसरों से करते हैं तो खुद पर जो उनका आत्मविश्वास है वो कम हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबकी अलग काबिलियत होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, हमें उन्हें मार्गदर्शन दिखाना चाहिए, प्रेरणा उनको देनी चाहिए कि वो आगे बढ़ें, उनके वो जो भी काम करते हैं उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और ऐसे उनकी प्रशंसा करें और उनको हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो हम सब अपने आप में बहुत ही खास हैं और खुद पर विश्वास रखें तो सब कुछ बहुत अच्छा है। मीरा सिंह हमें सिलचर आसाम से लिखती हैं, तो बात बस इतनी सी है कि आप अपने आप में ना बहुत खास हैं और आप नहीं जानते कि कितने लोग हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो इसलिए हम सब में अलग अलग खूबी है और उस खूबी को जानते हुए समझते हुए ज़िंदगी के सफ़र में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जो जीवन है ना बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए जितने पल हैं उनको जी लीजिए, क्योंकि जो बीत जाता है वो लौट कर नहीं आता। तो जिस पल में आप है ना उसको आप कितना खूबसूरत अपने लिए बना सकते हैं बना लीजिए, फिर जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो ज़रूरी है ना खूबसूरत यादें हों और आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हों।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात और कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और उसमें आपके साथ होंगे निशा तंवर और उसके बाद एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंक में और उसके बाद सुनेंगे आप प्रोग्राम दिल की तरह गाने नए तो पुराने, इसमें भी आपके साथ जुड़ेंगी निशा तंवर और उसके बाद आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिकार शालिका कपूर के साथ और बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ जुड़ेंगी हिना मौज और उसके बाद एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी शालिका कपूर प्लेट कूल प्रोग्राम में और उसके बाद आप सुनेंगे मेरा वाला सॉन्ग, इसमें आपके साथ होंगी हिना मौज। आशियाना आप सुनेंगे शाहिद के साथ, एसएम शाहिद आपके साथ जुड़ेंगे 2 से 3 बजे तक और 3 से 4 का समय रहेगा रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम का और इसमें आज का विषय रहेगा आयुर्वेद फॉर हैप्पियर टुमारो और इसमें आपके साथ जुड़ेंगी सुषमा शर्मा आपके साथ होंगी और साथ ही साथ अगला प्रोग्राम जो आप सुनेंगे वो रहेगा संदेश टू सोल्जर्स और इसमें आपके साथ होंगे एसएम शाहिद और बात करेंगे कर्नल अनिल नंदा जी से, रिटायर्ड कारगिल वॉर वेटरन इंडियन आर्मी, इस पर बात होगी, इनसे बात होगी। फिर एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी प्रोग्राम सिटी लाइट्स में सिटी की खबरों के साथ सुषमा शर्मा और उसके बाद आप सुनेंगी गीता चौधरी के साथ प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे इसके बाद, जी हाँ, हिट्स एंड मेमोरीज और इसमें आपके साथ होंगे रघु और उसके बाद प्रोग्राम सुनेंगे आप म्यूजिक मस्ती, गीता चौधरी होंगी इस पर प्रोग्राम में आपके साथ और आपकी याद आती रही आप सुनेंगे ताहिर हसन के साथ और वेस्टर्न म्यूजिक में एक बार फिर ऑल दैट जैज आप इस प्रोग्राम को सुनेंगे रघु के साथ और उसके बाद रंगे महफिल में एक बार फिर आपके साथ शामिल होंगे ताहिर हसन। तो प्रोग्रामों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। अभी बस इतना ही, जल्द होगी मुलाकात और आप अपने आप में एक खास हैं, इस बात को हमेशा रखिए याद।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब समय है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्सी चालकों और किसानों के लिए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना आरंभ की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के मकसद से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लुसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैपिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर L69 विकासशील देशों का अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज MV केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचाया गया, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हुई। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के अंतर्गत की जा रही है। अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिसंबर में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। भारतीय खिलाड़ी जापान के आइची नगोया में एशियाई खेलों के 5वें दिन आज कई खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। ये हैं FM रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 मैं निशा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए आपसे बस यही कहूंगी, गुड मॉर्निंग है जी। आपका दिन अच्छा है ना? देखिए, लाइफ के बहुत सारे स्ट्रेंज ट्रूथ्स होते हैं ना, जिन्हें हमें हंसी खुशी के साथ अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए ना उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, हमारे आसपास चाहे कितने भी लोग हो, कितने भी फैमिली रिश्तेदार अच्छे फ्रेंड्स हो, लेकिन जिंदगी के कुछ रास्ते हमें अकेले ही चलने होते हैं। हाँ जी, तो कुछ हमारे फियर्स हैं, कुछ हमारे इमोशंस हैं जो सिर्फ हमें हमारा ही टाइम मांगते हैं, उन्हें कोई और उसके साथ में नहीं चाहिए होता है। तो इसीलिए हमें अपना बेस्ट बडी बनना है, ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है। आकाशवाणी रेनबो है ये, बने रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

बिल्कुल ऐसे ही हमरा, आप भी मेरे हैं और इस रास्ते का नाम है 102.6 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं निशा हूँ आपके साथ में। मौसम विभाग ने कहा है दिल्ली NCR का जो ये वेदर है ये इसी तरह से अब शुष्क बना रहेगा। हाँ जी, 2002 के बाद दिल्ली में ऐसा हुआ है ये कि मॉनसून जो है बहुत जल्दी विदा ले चुका है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और अब क्योंकि बारिश की कोई वापसी का कोई साइन नहीं है तो इस शुष्क वेदर में ही रहना पड़ेगा दिल्ली NCR वालों, जिसकी कॉमन समस्या है ड्राई स्किन और बालों में डैंड्रफ। अब आपको पता है ना कैसे इन चीज़ों से बचना है, कैसे मतलब अब दिल्ली में रह रहे हो इतने दिनों से तो आदत तो हो ही जाती है ना, पता हो जाता है कि हमें क्या चीज़ें किस तरह से ठीक करनी है। फिलहाल 7:09 दिखा रही है स्टूडियो क्लॉक और सूर्य देवता 6:40 पर आसमान में चमक रहे थे, सुंदर ऑरेंज कलर के दिख रहे थे बहुत। और फिलहाल जो तापमान बना हुआ है बाहर वो 27 डिग्री बना हुआ है। तो दिल्ली के वेदर को विद दी FM रेनबोज ब्यूटिफुल म्यूजिक कीप एंजॉइंग। आई एम निशा विद यू। 23 तारीख है।

आज और थर्सडे मॉर्निंग है। चौबीस तारीख है आज और थर्सडे मॉर्निंग है।

0: यूं ही सफर ये कट जाएगा।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं।

0: रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कौन सा स्टेशन है. 102.6 FM रेनबो. मैं निशा हूँ आपके साथ. गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR. बहुत कुछ दुनिया में हमें बहुत सारी आसानी से चीज़ें मिलती चली जाती हैं. ट्रेन की ज़रूरत होती है तो ट्रेन आती जाती है, बस की ज़रूरत होती है तो बस में चढ़ जाते हैं. प्रकृति से हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, खाने की सभी चीज़ें मिल रही है. हमेशा हर चीज़ के लिए बस दिल में ग्रेटफुल रहते हुए ना, मुझे लगता है कि हमें अपना आभार ही व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमें मिले ही जा रहा है. और ज्ञान की अगर बात करें तो किताबों का जो ज्ञान होता है ना, वो तो हर कोई हासिल कर लेता है, लेकिन समाज को ही अपनी कोई पाठशाला बना ले, असली लीडर ना वही कहलाता है. आज 24 सितंबर है और आज के दिन राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस है, यानी कि NSS डे. साल 1969 में महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर यह शुरू हुआ था और आज देश के लाखों जो युवा हैं वो इससे जुड़े हुए हैं. इनिशियली तो 37 विश्वविद्यालयों में लगभग 40,000 स्टूडेंट्स के साथ इसकी शुरुआत हुई थी. नॉट मी बट यू, यानी मैं नहीं आप. NSS का ये मोटो सिर्फ एक मोटो नहीं है, बल्कि जीने का एक बड़ा ही खूबसूरत तरीका है. ये आदर्श वाक्य स्वयं सेवक को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और मानवता के हित में कार्य करने की प्रेरणा देता है. चाहे बाढ़ में लोगों की मदद करनी हो, रक्तदान शिविर लगाना हो, या गांव-गांव जाकर साक्षरता और स्वच्छता की अलख जगानी हो, हमारे NSS के वॉलंटियर्स हमेशा सबसे आगे खड़े मिलते हैं. बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं. तो आज हम अपने देश के हर एक युवा को सलाम करते हैं जो अपनी मेहनत से समाज को बेहतर बना रहा है. और सच में अगर एक बार युवा ठान लेना तो वो काम हो ही नहीं सकता कंप्लीट ना हो. हैप्पी NSS डे टू एवरीवन.

देश के युवाओं के साथ साथ आज का दिन हमारे देश के साइंटिस्ट्स को भी समर्पित है। 2009 में आज के दिन ही 24 सितंबर के दिन ही देश के पहले चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी खोज निकाला था और भारत ने 24 सितंबर 2014 को ही अपने पहले ही प्रयास में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था और इस बड़े कार्य को अंजाम दिया था। जापान और चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत ने अपने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल करने वाला वो पहला देश बन गया था। है ना बड़े गर्व की बात। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6। इस गाने के बाद बात करेंगे एक खास और दिन के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है समुंदर की वेव्स और उसमें तैरने वाले सेलर्स से।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गाने में तो दरिया की बात हुई, लेकिन अब इससे भी कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा डीप और बहुत सारे जीवों को अपने अंदर समा जाने वाले खास चीज की बात करने वाले हूँ। अच्छा ये बताइए, आज की सुबह की चाय हो गई है आपकी? और जब, या फिर मतलब हो सकता है आप कॉफ़ी भी पीते हो, और जब हम ये कॉफ़ी की चुस्की ले रहे होते हैं ना, तो कभी आपने सोचा है जो कॉफ़ी बीन्स पता नहीं किस देश से आप तक पहुँचे होंगे, और ये जो स्मार्टफोन आपके पास में ही रखा है ना, ये जो आपके हाथ में है, वो आप तक कैसे पहुँचा है? चलिए एक हिंट दे देती हूँ। नीला समंदर है, विशाल जहाज है, और लहरों को चीरते हुए हमारे जाबाज सी फेयरर्स हैं। समझ ही गए होंगे भाई। हाँ जी, आज विश्व समुद्री दिवस है, विश्व वर्ल्ड मैरीटाइम डे, इसीलिए हम हमारे सेलर्स की बात कर रहे हैं, हमारे सिपाहियों की बात कर रहे हैं। हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है। इसका मकसद यही है उन सभी लोगों को सलाम करना जो कि समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं, और हमारे नेवी तो है ही जो सुरक्षा प्रदान करती है हमारे देश को। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि 80% से भी जो ज़्यादा व्यापार है ना, वो समुद्र के रास्ते ही होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये जहाज़ और ये समुद्री रास्ते ना हो ना, तो दुनिया ना थमसी ही जाएगी। इस साल का जो थीम है वो भी बहुत खास है। ये थीम फोकस कर रहा है समुद्र की सुरक्षा और पर्यावरण को बचाने पर, क्योंकि समंदर जो है सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, ये हमारी धरती का दिल है। लगता है ना आपको, यही तो हमें ऑक्सीजन देता है। हम सलाम करते हैं उन सभी मर्चेंट नेवी के हीरोज़ को, कैप्टन्स को, क्रू मेंबर्स को, जो कि महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, लहरों के बीच में हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस।

बिल्कुल इसी तरह से समंदर पार करते हुए हमारे देश के खिलाड़ी भी पहुंचे हुए जापान में और वहां पर पीछा कर रहे हैं पदकों का। और भारत को एशियन गेम्स में 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग का मेडल मिला है जी। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। ये मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया है। 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी ने ये सिल्वर जीता था और तब से अब मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। उन्होंने स्नैच में 87 केजीज उठाया और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम का वजन उठाया। 32 साल की मीराबाई चानू ने ना एशियाई खेलों में पहली बार है कि अपना कोई मेडल जीता है। और आपने कल की वीडियो देखी, द मोमेंट उन्होंने वेट को लिफ्ट किया, खासतौर पर वो 80 किलोग्राम का वेट तब इन्होंने उठाया था और स्नैच कहते हैं उसको, और दैट वाज रियली अमेजिंग। पूरा वेट सोचो उनके हाथों में एंड दैट वंडरफुल स्माइल ऑन अ फेस, सच में दिन बना दिया था उन्होंने उस वीडियो ने तो मेरा। खैर, बहुत बहुत मुबारक है हमारी इस खास खिलाड़ी को जिन्होंने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियन जैसी प्रतियोगिताओं में मेडल ये जीतती रही हैं। ये पहला एशियन गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर मेडल के लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई। और इसके अलावा रोशी बिना देवी महिला वुशु के 60 किलोग्राम फाइनल्स में पहुंची और उसके बाद एशियन गेम्स का ये उनका सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। रोइंग की अगर इवेंट की बात करें, मेंस डबल्स स्कल्स फाइनल में भारत की जो स्टार जोड़ी रही सतनाम सिंह और सलमान खान ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारत अब तक 13 मेडल जीत चुका है, 1 गोल्ड 5 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज जीते हैं और मेडल टैली में 14वें नंबर पर बना हुआ है।

0: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रेनबो पर बहुत बहुत स्वागत है आपका 102.6 FM, मैं निशा हूँ आपके साथ में। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 24 तारीख है, थर्सडे मॉर्निंग है आज, और आज एक खास हमारे भारत की निडर बेटी की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने अंग्रेजों की धरती पर खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर पहली बार तिरंगा फहराया था। आज भारत की महान क्रांतिकारी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, यानी कि मैडम भीकाजी कामा की जयंती है। सोचिए, आज से तकरीबन 120 साल पहले, और ज़्यादा समय इवन, जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल था, तब एक पारसी महिला अपने परिवार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर देश की आज़ादी के लिए सात समंदर पार जंग लड़ रही थी। तो क्या जज्बा रहा होगा उनका, है ना। आज भारत की महान शख्सियत हमारी भीकाजी कामा जी की 165वीं जयंती है। इन्हें भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की जननी माना जाता है। सोचिए, 1907 का वो दिन था, जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। तभी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मैडम भीकाजी कामा मंच पर आई। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई और अचानक अपनी साड़ी के पल्लू से एक तिरंगा झंडा निकाला, जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था, और बीच में लिखा था वंदे मातरम। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा था कि ये भारत की स्वतंत्रता का ध्वज है जिसका जन्म हो चुका है, और सभी राष्ट्र प्रेमियों से उन्होंने अपील की थी कि वो

भारत का उनकी स्वतंत्रता संग्राम में साथ थे। आकाशवाणी रेनबो पर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। नूपुर जल्दी आ गई हैं और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का अगला चंक आपके लिए लेकर आएंगे। मैं आपको ठीक 9 बजे मिलूंगी दिल के तराने गाने नए पुराने में।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्सी चालकों और किसानों के लिए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना आरंभ की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के मकसद से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर L69 विकासशील देशों का अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज MV केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचाया गया, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के अंतर्गत की जा रही है। अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिसंबर में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। ये थे AIR FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

नमस्कार, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट, और ज़रूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स, और हमारे स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहें, बस यही दुआ रहती है। और इसी दुआ के साथ मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ स्वागत कर रही हूं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के इस दूसरे अंक में भी होंगी बहुत खास बातें। जो पहला सेगमेंट था उसको आपने काफ़ी इंजॉय किया, और इस सेगमेंट में भी होंगी खास बातें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी सफर में जिसका नाम है, जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

हवाओं का रुख बदल गया है और शुभारंभ होगा अगले आने वाले कुछ कुछ कुछ ठंडे दिनों का, और कुछ कुछ ठंड के साथ साथ ये जो ठंड है वो भी बढ़ती जाएगी, और उसके बाद फेस्टिव सीज़न. ऐसा ऐसा एहसास होने लगा है ना कि जो हल्की सी गुलाबी सी ठंड है वो बस दस्तक देने को है ना. और आज तो बिल्कुल ही, क्या बात करें अगर मौसम की, तो बिल्कुल ये बात है जो आप तक पहुँचनी है कि आसमान जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा, धूप वाला मौसम रहेगा, और दिन में मानसून की सुस्ती के कारण तेज़ धूप खिलने वाली है, और जो चिपचिप गर्मी है ना वो भी थोड़ी सी आपको महसूस हो सकती है. तो अधिकतम तापमान रहेगा हमारा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक. और ऐसे में अब बारिश की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए आज के दिन तो मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है. और आप अपना बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि सर्द दिशा में जब दस्तक देंगी तो फिर आपको स्किन में बहुत कुछ जो बदलाव लग रहे हैं, ड्राई स्किन हो रही है, और आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ जाइए आप तो समझदार हैं, और समझदार हैं तो अपना बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छे से. हर मौसम में आपको अपना ध्यान रखना आना चाहिए, ये ज़रूरी है. तो बस आप सफ़र पे निकले हैं तो मौसम का हाल कैसा है ये बिल्कुल जान चुके हैं, तो पूरी तैयारी के साथ निकले, मास्क ज़रूर लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और साथ ही साथ हाथ धोते रहें जब भी मौका मिले आपको, और आप उसके बाद कोई भी लोशन ज़रूर लगा सकते हैं ताकि आपकी स्किन भी सॉफ्ट रहे. और गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, बहुत कुछ खास आप कर सकते हैं, और बहुत कुछ खास आपके लिए भी है. आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफ़र में. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR.

0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और स्वागत है आप सभी का। और आज बहुत कुछ खास है। जी हाँ, आज देश की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में कुछ खास होने वाला है। क्या होने वाला है? भारतीय फुटबॉल का भविष्य मैदान पर उतरने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 65वीं सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के ग्रैंड फिनाले की। 18 अगस्त से शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की और आज वो ऐतिहासिक पल आ चुका है जिसका हम सबको इंतजार था। तो कौन सी टीम्स फाइनल में पहुंची है और कैसी वाइब्स हैं, इन सब पर बात करने के लिए बिल्कुल स्वागत करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आप है हमारे साथ विंग कमांडर सतिंदर सिंह धनकर जी, ऑनररी सेक्रेटरी जनरल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी। सतिंदर सिंह धनकर जी, स्वागत है आपका, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
0: सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज ग्रैंड फिनाले होने वाला है और दोनों टीम काफी उत्साहित होंगी और इस खिताबी मुकाबले को लेकर, तो बच्चों में कैसा उत्साह है और आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की वाइब्स है और माहौल है?
1: बच्चों ने बहुत मेहनत की है, ये टूर्नामेंट पिछले एक महीने से ज्यादा चल रहा था और बच्चे दिन रात लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे। आज जो टॉप टीम है दो हैं, जो CISC मिनर्वा स्कूल एंड केरला जी, वो फाइनल्स में पहुंची हैं और जोश पूरा है उनके अंदर।
0: जी, तो सर सुब्रतो कप है जिसकी शुरुआत हो गई थी 1960 में और आज 65वां संस्करण है और जैसे कि मैच जो है 18 अगस्त से इसकी शुरुआत हो गई थी, तो इस पूरे टूर्नामेंट की क्या हाइलाइट्स रही, कुछ बताना चाहेंगे आप हमें?
1: हाँ, ये टूर्नामेंट तीन कैटेगरी में खेला जाता है, अंडर 17 बॉयज, अंडर 17 गर्ल्स एंड अंडर 15 बॉयज। जो अंडर 17 गर्ल्स था वो 18 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और 27 अगस्त को उसका फिनाले हुआ था अंबेडकर स्टेडियम में। फिर जो हमारा दूसरा

0: अंडर 15 बॉयज है वो 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर बेंगलुरु में हुआ था, और अभी तीसरा संस्करण जो है इसका अंडर 17 बॉयज वो 15 सितंबर को शुरू हुआ था और आज उसका कल्मिनेशन है अंबेडकर स्टेडियम में।
1: जी, और सर जब हम बात करते हैं तो सुब्रतो कप को हमेशा से भारतीय फुटबॉल की नर्सरी माना गया है, जहां से भाईचुंग भूटिया जैसे बड़े खिलाड़ी निकले हैं, तो आप क्या देखते हैं इस साल जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जिनको आप देखते हैं जो भारत को, हमारे देश को विश्व स्तर पर प्रेजेंट कर सके?
0: बिल्कुल, बच्चे दूर दराज के इलाकों से आए हैं और बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। हमारे स्काउटिंग पार्टनर्स निरंतर उनकी निगरानी कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं कि किस बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, और वी आर वेरी होपफुल कि हो सकता कोई अगला बैचिंग भूटिया इसी संस्करण से निकले।
1: बिल्कुल, ऐसी उम्मीद हम सब करते हैं। और साथ ही साथ आज मैच देखने के लिए अगर ऑडियंस आना चाहे, जो और भी लोग पहुंचना चाहे, तो क्या कैसे पहुंच सकते हैं, क्या प्रोसीजर है?
0: हाँ, ये बहुत ही वेल कनेक्टेड एरिया है डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम। अगर आप दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन है जो इसके मुख्य द्वार पे ही है, अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आप डायरेक्ट अंबेडकर स्टेडियम में पहुंच सकते हैं। बाकी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अपनी व्हीकल से आ सकते हैं, पार्किंग वहाँ हो जाती है और बसेज ऑल्सो DTC की जाती है, मेन रोड पे ही है ये। तो मेट्रो सबसे इजी मोड है जो आपको बिल्कुल अंबेडकर स्टेडियम के मेन द्वार पे ले आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी जुड़ना चाहे, आना चाहे, वो 4:30 बजे तक वहाँ पहुंच जाएं, उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट आ जाएंगे तो सारे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुब्रतो कप की इतनी शानदार जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए, और दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से।
0: धन्यवाद।
1: तो अभी आप, जी हाँ, बात कर रहे थे हम विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी से, ऑनररी सेक्रेटरी जनरल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी। तो बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत सा मौका है, ज़रूर पहुंचिए, दोनों टीम्स की हौसला अफजाई कीजिए और मैच को देखकर आप भी बिल्कुल जोश में आ जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
10: इस बुधवार 23 सितंबर को शाम 5:45 से 6 बजे तक,
9: और जानिए SOL के स्किल कोर्सेज के बारे में।
11: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
12: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ बिल्कुल, आप भी हर मैदान जो है उसे फतेह कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो संकल्प आपने लिया है उसको पूरा करके, उसको निभा के, जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है तो वो तभी पूरा होगा जितनी भी

के बारे में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप सब जो युवा हैं वो सेवा भावना उनके अंदर आए और संकल्प शक्ति को आप अपनी जागरूक करें, और हर युवा अपने खेल के प्रति समर्पित हो। जो भी खेल आपको पसंद है आप उसको खेलें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, और आप बस प्रेरित हों, और बिल्कुल आप ही अगले वो खिलाड़ी हों जो अपने देश का नाम रोशन करें अपनी मेहनत के दम पर। तो बस आगे आइए, अपने हुनर को यूं ही ज़ाया ना होने दें, उसको निखारें और बस एक अच्छी जीवन शैली के साथ आगे बढ़ते जाइए। और आप भी एक फिट इंडिया, खेलो इंडिया इस अभियान में जुड़ जाइए। युवाओं में खेल संस्कृति सामाजिक योगदान की भावना को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को खेल के साथ जोड़ना इसी कैंपेन का मुख्य संदेश है। तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

बिल्कुल सब कुछ वेल है, ऑल इज वेल. कभी भी कुछ भी आपको लगे, कोई भी परेशानी हो, तो खुद से कहिए ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाता है. और खुद से कहने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि साथ में किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत है तो ले लेनी चाहिए, बता देना चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. और जैसा आप फील कर रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, और शेयर करने से बहुत सारे जो मसले हैं उनका हल मिल जाता है टाइमली शेयर करने से, है ना. तो जब ज़रूरत है तब दिमाग खोल कर आगे आइए, अपनी बात कहें और सॉल्यूशन के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ते जाइए. और आज बहुत ही खास दिन है, हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है ना. इतिहास के पलों में बहुत कुछ खास है. आज हमने बात भी की कि सुब्रतो कप है, उसका आज फाइनल मैच है, वो भी आप देखने बिल्कुल पहुंच सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम. और साथ ही साथ आज एक खास दिन भी है जिसको हम मना रहे हैं, उसकी भी बात हो चुकी है. और जब भी मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे अपनी एक दोस्त याद आ जाती है, और आपके भी आई बिलीव कि ऐसे कुछ दोस्त होंगे जिनको आप मैसेज करते होंगे. तो कुछ लोगों को लैंग्वेज से इतना प्यार होता है, तो जब आप उनको लिखते हैं तो अगर आपका एक भी पंक्चुएशन जो मार्क है अगर वो भी एक भी गड़बड़ हो गया, है ना, अगर आपने फुल स्टॉप आना था नहीं लगाया, या फिर आपका कॉमा आना था आपने नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था और आपने नहीं लगाया, तो वो आपको पहले तो पूरा करेक्ट करके भेजेंगे कि ये ऐसे लिखो, है ना. तो ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज नेशनल पंक्चुएशन डे है. और ये डे बिल्कुल आप जब भी कुछ लिखते हैं, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो चाहे आप अंग्रेज़ी भाषा में लिख रहे हो, तो आपको हर पंक्चुएशन कहाँ पे, क्योंकि वो एक्सप्रेशन आपका बताता है कि, है ना, तभी तो हम सारे एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स हैं हम उनको लिखते हैं. और तो मुझे वो अपनी दोस्त याद आ जाती है जो उसको बहुत ही प्यार था, मतलब वो हिंदी भाषा से, वो मलयाली थी और मलयालम उसको बहुत अच्छी आती थी, तेलुगु तमिल स्कूल में पढ़ी तो तमिल भी उसको बहुत अच्छी तरह से आती थी, और इंग्लिश से भी उसको बहुत ही खास लगाव रहा. तो जब भी अगर उसको कोई मैसेज करता था और अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी पंक्चुएशन में, तो वो पहले तो उसको सही करती थी और उसके बाद उसका जवाब देती थी. तो आई बिलीव कैसे आपके भी दोस्त रहे होंगे जिनको भाषा से बेहद लगाव होता है, और हमको अच्छे से लिखना पढ़ना और जहाँ पंक्चुएशन आनी चाहिए वहाँ करना चाहिए. कई बार तो कोई सवाल पूछता है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता, लेकिन कई बार समझ में भी आता है और कई बार नहीं भी समझ में आता. तो इसलिए आप भी इस डे को सेलिब्रेट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ. और मुझे बिल्कुल याद आ गई अपनी वो दोस्त, और ये जो दोस्त हैं इनके साथ बिताए हुए जो वक्त है वो बीत जाते हैं और कई सब अलग अलग शहरों में पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो हमें उनकी याद दिला देती है. तो बस इस डे से मुझे अपनी दोस्त की याद आई. और आप भी जब भी कुछ लेटर लिखें या कोई भी आप मेल करें तो सारी चीज़ों का ख्याल रखें. जुड़े रहें हमारे साथ इसी सफ़र में.

आप क्यों आए हैं, आपको पता होगा, है ना, इस जीवन का आपका क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य आपके जीवन का है अच्छे से पढ़ना, जिस भी चीज़ में आपको रुचि है उसको बेहतर तरीके से करना, और जहाँ आपको पहुँचना है, जिस भी फील्ड में आपको जो भी अपना बेस्ट देना है वहाँ तक पहुँचना है ना। आप कुछ भी चुन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स चुन सकते हैं, आप डांस चुन सकते हैं, आप कोई भी आर्ट चुन सकते हैं, और साथ ही आप किसी भी फील्ड में, हम साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, या हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, आप किसी फील्ड में बेहतर कर सकते हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। और जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको बेहतर मौके भी मिलते हैं, आप जब कॉलेजेस में होते हैं तब आपको इंटर्नशिप के मौके मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आप इंटर्नशिप

आपको मिलेगी और पेड इंटर्नशिप रहेगी जिसमें आपको 10,000 से लेकर 60 लगभग 60,000 तक आप को ये जो इंटर्नशिप है उसमें आपको पे किया जाएगा। तो आपको अच्छा ही लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि अगर आपकी इंटर्नशिप इतनी अच्छी सी हो जाएगी तो आगे आपको जॉब के लिए भी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। तो मैं बिल्कुल आपको बात कर रही हूँ, DU जो है वो एक आपको जो है इंटर्नशिप करा रहा है। उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल की ओर से जापानी कंपनी में इंटर्नशिप दी जा रही है और इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। आपको ये पेड इंटर्नशिप है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या PhD स्टूडेंट्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि जो छात्र पूर्व छात्र भी इसके योग्य हैं और कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं उनके साथ अगर आप हाल ही में BBA, BCom, BMS, MBA और कोई भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो वो भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उन्हें एकेडमिक ट्रेनिंग, टेस्ट प्रिपरेशन, लर्निंग स्टूडेंट सॉल्यूशन पर आपको काम करना होगा। ये आपका एक प्रोफाइल है और इंटर्नशिप 1 महीने की है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन दिल्ली ही रहेगी और इसकी ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। इस पेड इंटर्नशिप के लिए गूगल फॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और इसका लिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिए शेयर किया गया है। आप चाहें तो सीधे QR कोड स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन लिंक तक पहुँच सकते हैं। तो अच्छे से सारी डिटेल्स भर दीजिए और हो सकता है कि आप भी हो वो कैंडिडेट जो इस इंटर्नशिप को करे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफर में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो का ये सफर जारी है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही, आप जुड़ रही हमारे साथ क्योंकि कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल की तराने, गाने नए पुराने। इसमें आपके साथ जुड़ेंगी निशा तंवर और उसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर शालिका कपूर के साथ और बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक बॉलीवुड रील्स में हीना मौज। तो कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्सी चालकों और किसानों के लिए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना आरंभ की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के मकसद से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचाया गया, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की जलकर मृत्यु हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामलों में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के अंतर्गत की जा रही है। अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिसंबर में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। और जापान में एशियाई खेलों में रोशी बिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। ये थी FM रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 गुड मॉर्निंग, मैं निशा हूँ आपके साथ। यह है दिल के तराने, गाने नए पुराने, वही आपका अपना प्यारा प्रोग्राम जिसमें नए गानों के बीच में तीन खास रेट्रो गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन इन गीतों के पहले एक खास बात, एक पर्शियन प्रोवर्ब जो मैंने आज ही पढ़ी, उसमें लिखा था कि आई वेप्ट बिकॉज आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मतलब साफ है, हम अपनी ही प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखते हैं, बड़ा कर देते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि इन प्रॉब्लम्स के साथ मतलब जो है सो है, लेकिन हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी तो मिली है ना। सो काउंट योर ब्लेसिंग एंड स्टार्ट योर डे। आकाशवाणी रेनबो 102.6, 9:03, मैं निशा हूँ आपके साथ।

दिल के तराने गाने नए पुराने, इसी तरह प्यार में भीगे हुए गाने यहाँ पर आप सुनते रहेंगे। और अभी फिलहाल जिस फिल्म का रेट्रो गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, उसमें दोनों लीड एक्टर्स ऐसे ही प्यार में भीगे रहते हैं एक दूसरे के। नाम है रंजीत उर्फ धर्मेंद्र और मुमताज ने कैरेक्टर प्ले किया था उनकी लव इंटरेस्ट अंजू का। रंजीत जो होता है वो एक पिक पॉकेट का काम करता है गैंग के लिए, लेकिन अंजू जो होती है प्यार में पड़ने का शुरू में नाटक करती है और बाद में पता चलता है कि वो तो किसी मतलब राइवल जो गैंग

है, ऑपोजिट गैंग है उनकी तरफ से, शी इज स्पाइंग ऑन हिम। चलिए इसी तरह से आगे कहानी बढ़ती है। ए भीमसेन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और नाम है फिल्म का लोफर, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और सारा जो लिरिक्स जो लिखे थे वो आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे गाने के बोल। तो धर्मेंद्र और मुमताज़ की इस सुंदर सी जोड़ी को एंजॉय करते हैं। कहानी का छोटा सा हिस्सा मैंने आपको बताया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। फिलहाल ये गाना हमारी प्यारी लता जी की आवाज़ में है।

0: हमारी प्यारी लता जी की सुरीली आवाज, जिन्होंने तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा हिंदी सिनेमा में गाने गाए हैं, दूसरी भाषाओं में भी गाने गाए हैं, इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। ये जो गाना है लोफर फिल्म से नहीं था, ये कुदरत फिल्म से था, जो 1981 में आई थी, चेतन आनंद साहब की फिल्म, देखी है ना आपने, जिसमें राजेश खन्ना है, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और अरुणा ईरानी, ये मल्टी स्टारर फिल्म रही थी और बहुत ही अच्छा चंद्रमुखी का सुंदर सा कैरेक्टर जो है हेमा मालिनी ने प्ले किया था, हमारे आर डी बर्मन का संगीत था इस फिल्म में। खैर, लोफर फिल्म की बात जरूर की थी और गाना भी आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा करते हुए एक छोटे से ब्रेक में चलते हैं। यू कीप लिसनिंग दिल के तराने, गाने नहीं पुराने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों, मैं हूँ साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाबाब अहमद और हम लेकर आ गए आपके लिए सुबह 9:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 की लाइव अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए कैसी रही। सबसे पहले द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे दैट केम इन अर्ली इन द मॉर्निंग वॉज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुशू। रोशिबेना देवी ने वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल में भारत को और अपने लिए सिल्वर मेडल जीत लिया। जी हाँ, शी कंप्लीटेड ट्रिक ऑफ मेडल्स इन द एशियन गेम्स। आपको याद दिला दे कि रोशिबेना देवी के नाम 2018 में भी ब्रॉन्ज मेडल रह चुका है, 2022 में वो सिल्वर पदक से भी सम्मानित करी जा चुकी हैं और उसके साथ अब 2026 में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। शी टुक द सिल्वर मेडल इन द वुमेन सैंडा 60 किलोग्राम कैटेगरी आफ्टर अ हार्ड फॉट बैटल अगेंस्ट चाइनाज जियाओ जैंग। द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे शबाब जी।
3: जी बिल्कुल, आज का दिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत सारे भारतीय खेल प्रेमियों के उठने से पहले, जागने से पहले एक पदक

0: एथलेटिक्स की दुनिया से भी आपके लिए कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स में अनामिका अनीश फिनिश्ड फिफ्थ इन लास्ट इन अ हीट विद द टाइम ऑफ 14.80 सेकंड्स अर्निंग 868 पॉइंट्स। जापान की यूरी तनाका टॉप्ड द हीट क्लॉकिंग 13.99 सेकंड्स टू कलेक्ट 980 पॉइंट्स। वहीं मिक्स 4x400 मीटर रिले हीट 2 में मनुटीएस पुट इंडिया इन द थर्ड बिफोर एम आर पूवामम्मा रैन अ ब्रिलियंट सेकंड लेग टू टेक द लीड। जयकुमार मेंटेन द एडवांटेज डिस्पाइट चाइना एंड यूएई क्लोजिंग इन एंड आफ्टर स्लाइटली स्लो एक्सचेंज एंकर किरण पहल हेल्ड द फ्रंट पोजीशन इनटू द फाइनल लैप। चाइना मेड अ लेट सर्च टू पिप इंडिया एट द लाइन बट द इंडियन टीम सेफली क्लिंच्ड द सेकंड प्लेस टू बुक देयर स्पॉट इन द फाइनल विद अ टाइमिंग ऑफ 13 मिनट 16.23 सेकंड्स। और वुमेन्स हेप्टाथलॉन हाई जंप में भी अनामिका अनीश ने फाइनली एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके इन हाई जंप क्लियर्ड अ बेस्ट हाइट ऑफ 1.74 मीटर्स टू फिनिश सेकंड इन द इवेंट एंड गैदर्ड 903 पॉइंट्स। जी हाँ, पूजा क्लियर्ड 1.71 मीटर्स टू फिनिश जॉइंट फोर्थ एडिंग 867 पॉइंट्स टू हर टैली। The performance gives both the Indian athletes a significant boost in their overall standings because अब अनामिका है 6th place पर 1,771 points के साथ और पूजा है 9th place पर 1,761 points के साथ। शबाब
1: यह बिल्कुल उधर मेघा प्रदीप की बात करें तो महिला कैनो सिंगल्स में थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है। 200 मीटर के सेमीफाइनल में वो चौथे स्थान पर रही हैं मेघा प्रदीप। सेमीफाइनल के शीर्ष तीन खिलाड़ी ही फाइनल में पहुंचती हैं, इसलिए मेघा का फाइनल में पहुंचने का जो प्रयास था, अच्छा प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया।
0: राइट, और आपको स्विमिंग की दुनिया से भी थोड़े अपडेट्स देने वाले हैं, पर वहां पे ज्यादा कुछ हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि स्विमिंग में हमने देखा कि मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स के अंदर भारत के बेनेडिक्टन बेनेस्टन फिनिश फिफ्थ इन द हीट 5 ऑफ मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल बट इज स्टिल प्लेस्ड इन द रिजर्व्स। ही फिनिश 12th ओवरऑल। वहीं मेंस 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले हीट्स में इंडिया भारत की तरफ से बेनेडिक्टन अनीश सुनील आकाश माने और गितेश शाह वर एलिमिनेटेड इन द हीट्स आफ्टर फिनिशिंग लास्ट इन देयर सिक्स टीम रेस। मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल में भी हमने देखा आर्यन नेहरा फिनिश थर्ड विद द टाइमिंग ऑफ 8 मिनट्स 2.52 सेकंड्स टचिंग द वॉल 5.13 सेकंड्स बिहाइंड वियतनाम्स गुयेन होय हांग। और इसके साथ ही नेहरा डिड नॉट लीव दिस इवेंट विद अ पोडियम प्लेसमेंट आल्सो। निराशाजनक खबर स्विमिंग की दुनिया से शबाब।
1: हाँ, उधर अगर निशानेबाजी की बात करें तो बहुत अच्छी खबर उसमें नहीं है, क्योंकि कमलजीत ने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल जो क्वालिफिकेशन था उसमें 580 अंक ही प्राप्त करे और उसके साथ सातवां स्थान उन्होंने हासिल किया। हालांकि उन्होंने फाइनल में इसके जगह जरूर बनाई। वहीं आकाश भारद्वाज 579 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है और केवल एक अंक से फाइनल में जगह बनाने से चूक गए।
0: जी, अपडेट्स तो हम लगातार आपको हर घंटे लाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस अपडेट से आपसे अभी के लिए विदा ले, आपको बता दें कि मेडल टैली में भारत की अभी स्टैंडिंग और कितने मेडल्स भारत आज अभी कमा चुका है। मेडल टैली में हम बात करेंगे तो भारत की पोजीशन है 14th। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त है 14 मेडल, एक गोल्ड, जो कि क्रिकेट की दुनिया से महिला क्रिकेट टीम ने हमें दिलवाया था। 6 सिल्वर आ चुके हैं जिसमें से 4 शूटिंग में आए, 1 वेट लिफ्टिंग में, 1 वुशू में। 7 ब्रॉन्ज मेडल्स आ चुके हैं जिसमें से 3 शूटिंग में है, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट, एक सॉफ्ट टेनिस में है, जो कल जय मीना लेके आए थे विद हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड इन सॉफ्ट टेनिस, बिकॉज ये पहला मेडल है इस तरह के स्पोर्ट के अंदर भारत का। एक बैडमिंटन में ब्रॉन्ज आया और आज एक रोइंग में भी ब्रॉन्ज आ गया, तो कुल मिलाकर 14 मेडल्स अभी तक, 14th पोजीशन पर है भारत। उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी इस मेडल टेबल के अंदर पोजीशन को और ऊपर बनाएगा, यानी धीमे धीमे करके ऊपर क्लाइंब करेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है शबाब अहमद। हमें दीजिए इजाजत, जुड़ेंगे आपके साथ सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM पर।

0: स्थानीय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
1: इस बुधवार 23 सितंबर को शाम 5:45 से 6 बजे तक।
0: और जानिए SOL के स्किल कोर्सेज के बारे में।
2: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

हर एक गीत के पीछे ना एक सुंदर सी कहानी होती है। ये फिल्म भी एक बहुत प्यारी कहानी कह गई थी जब भी आई थी, और ऐसी एक सुंदर सी कहानी से आपके लिए एक सुंदर सा गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये है तीसरा और आखिरी गीत दिल के तराने गाने नए पुराने का। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं निशा हूँ आपके साथ में, और ये कहानी है अर्जुन की, जो बड़ा ही इल टेम्पर्ड होता है लेकिन सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होता है। इसीलिए लोग उसको इल टेम्पर की वजह से ही उसको एक बैड पर्सन समझते हैं, एक जहरीला इंसान समझते हैं और उसकी गुड क्वालिटीज को इग्नोर करते हैं। तो फाइनली अर्जुन को जब उसका प्यार आरती जिंदगी में मिलती है तब कहानी आगे बढ़ती है। और ये फिल्म 1974 में आई जहरीला इंसान की बात कर रही हूँ। आर डी बर्मन ने फिल्म का संगीत दिया था, बहुत ही पूरी एल्बम बहुत अच्छी थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और हमारे प्यारे किशोरदा की आवाज़ में ये सुंदर सा गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए राइट हियर ऑन 102.6 FM।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

इतने प्यार से बात कह रहे हैं, सुर लगाकर, तो क्यों ना बात पूरी हो जाने दी जाए, है ना। 102.6 FM रेनबो, गुड मॉर्निंग। दिल के तरारे, गाने नए पुराने, भाई आज के लिए बस जितने गाने सुनवाने थे उसमें सिर्फ एक ही गाना बचता है जो अभी फिलहाल मैंने आपके लिए क्यू किया हुआ है। लेकिन हाँ, ये गानों का सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, अब आपको वेस्टर्न म्यूजिक सुनने मिलेगा। मैचलेस म्यूजिक आवर लेकर आ रही है शालू, तो आप बनी रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM पर। फिसलना नहीं है, अपना ख्याल रखना है और दिन की अच्छी शुरुआत को बरकरार रखना है टिल नाइट। ओके, सो कीप लिसनिंग आकाशवाणी रेनबो 102.6। आई एम निशा साइनिंग ऑफ, यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।

0: And now what shall I do? I shall do something that's absolutely fair. This time, messages from my side to you. So, well, let's get started right away. Listen into these messages. This, of course, is Akashvani Rainbow. And you're listening in to the MMH, the Matchless Music Hour.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: It's time for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, एशियन गेम्स की हलचल की ताजा अपडेट्स के साथ मैं हूं शबाब अनवर और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। आज सुबह बहुत अच्छी हुई थी भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो, जिस प्रकार से रोशेबिना देवी ने वुशु में सिल्वर मेडल जिलाया और उसके बाद सतनाम और सलमान की जोड़ी ने हमें रोइंग में मेडल दिलाया, लेकिन उसके बाद जो एक घंटा गुजरा है वो सन्नाटा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का नहीं रहा है। काफी ज्यादा उम्मीदें निशानेबाजी में भारत को हर इस तरह के मल्टीपल इवेंट में रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है। निशानेबाजी से हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर बात करें तो थोड़ी सी राहत इस बात की है कि अनंत जीत सिंह नारुका और पनिराज धालीवाल की भारतीय जोड़ी ने स्किट मिक्स टीम के फाइनल में जरूर जगह बनाई है। फाइनल में भारत का सामना बहुत ही मजबूत दक्षिण कोरिया, कतर और चीन से होने वाला है। भारत ने 138वें कुल में स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय जोड़ी ने तीन सीरीज में 44, 47 और 47 का स्कोर किया था। उधर भारत के पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में काफी निराश किया है और ये टीम चौथे स्थान पर रही है। अगर कहा जाए तो देलदारिंग उचुकांकर ने 568 अंक बनाए और व्यक्तिगत स्पर्धा में 35वें स्थान पर है, और वो जो उनका जो लचर प्रदर्शन था उसके कारण ही भारत जो था वो तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया।
3: जी, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू गिव यू क्विक अपडेट्स ऑन टेबल टेनिस, जहां पर भारत ने ईरान को वुमेन्स डबल्स राउंड 2 में हरा दिया।

0: score line, which read like 11-9, 14-12, 11-7, 11-4. So early start right now for table tennis, but definitely small little smiles, क्योंकि यहाँ पर भारत को at least शुरुआती जीत मिलनी शुरू हो गई है शबा
1: जी. बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, जैसे जैसे ये क्रम आगे बढ़ेगा हम इसकी जानकारी देते रहेंगे. बहुत सारे खेल आज नए स्पर्धाएं भी शुरू हुई हैं, उसमें एक फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी भी है, और उसमें महिला वर्ग में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि तलवारबाजी स्पर्धा में भारत की भवानी देवी पूल फोर में चौथे और श्रेया गुप्ता पूल दो में दूसरे स्थान पर रही हैं. ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है, आगे बढ़ने की थोड़ी गुंजाइश इस मुकाबले में है
0: जी. और अब स्क्वाश से भी आपको दे देते हैं अपडेट, जहां ऑल इंडिया क्लैश इन द मिक्स डबल्स राउंड ऑफ 16 हुआ था, जिसमें जोशना चिनप्पा एंड विल्वन सेंथिल कुमार सिक्योर्ड अ हार्ड फॉट 2-0 विक्ट्री ओवर फेलो इंडियंस सूरज चंद एंड शमीना रियाज टू एडवांस टू द मिक्स quarterfinals. The second game proved to be a thriller, with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level it at 9-9 and earn a game point. However, Joshana Chinnappa's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favor.
1: थोड़ा क्रिकेट की बात फिर से शुरू हो गई है एशियन गेम्स में. आपको बताइए कि महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता, अपने स्वर्ण पदक की रक्षा की. मेंस वर्ग का मुकाबला भी आज से शुरू हो गया है, और पहला मुकाबला था जापान यानी जो मेजबान टीम है और अफगानिस्तान ने, तो वहां से ये खबर ये आ रही है कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने मेजबान जापान को 48 रनों से हरा दिया है. और आपको तो याद होगा कि भारत को क्वार्टर फाइनल में बाई मिला है मेंस टीम में. 28 सितंबर का इंतजार कीजिए, एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा. फिलहाल क्रिकेट की शुरुआत पुरुष वर्ग में भी हो गई
0: जी, और कबड्डी ने भी आज के दिन की शुरुआत कर ली है, जिसमें इंडिया इज अप अगेंस्ट चाइनीज तिपा इन द मेंस ग्रुप ए मैच. और फर्स्ट हाफ भारत के नाम रहा बहुत ही कन्विंसिंगली और कमांडिंग तरीके से, जहां भारत ने 23-11 से फर्स्ट हाफ को अपने नाम किया. और दूसरा हाफ दोस्तों अभी जारी है, बरकरार है. भारत इस वक्त उसमें भी लीड में है 5 अंकों से, यानी भारत के पास अभी हुए हैं 12 अंक, और चाइनीज तिपाई अपने उसमें सिर्फ 7 अंक ही डाल पाए हैं इन द सेकेंड हाफ. द मैच इज स्टिल ऑन गोइंग. इंडिया स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 35 पॉइंट्स, वाइल चाइनीज तिपाई स्टैंड्स एट अ टोटल ऑफ 18 पॉइंट्स सो फार. सो ही इज होपिंग दैट इंडिया शुड बी एबल टू ऑल्सो क्रूज ईजी इन दिस गेम. और आपको ये भी बता दें कि शूटिंग की दुनिया में एक निराशाजनक खबर आपको ये दे सकते हैं कि बोथ द इंडियन मेंस एंड वुमेन्स पिस्टल शूटर्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड from the Asian Games with no medal in either individual or team events so far. जैसे आपको शबाब बता भी रहे थे, लेकिन एक overall अगर आपको picture दे तो pistol ने अभी तक 7 medals produce किए in the last 2 Asias, 3 gold, 2 silver, 2 bronze. और आज के लिए या फिर आगे भी मैं कहूंगी दोस्तों, अभी mixed doubles के events बाकी हैं. तो ये थे अभी तक के latest updates आपके लिए, जो शबाब और मैं साक्षी आपके लिए लेकर आ रहे थे. दोबारा एक बार हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आएंगे सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी के माध्यम से. फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: यू आर लिसनिंग टू द एशियन गेम्स 2026 अपडेट.

0: And now when it is 41 minutes past 10 and the last quarter of the show is just about to begin, what we'll do is we'll take a little messagey kind of a break, and of course the show will continue. This is the MMH, the Bachelor's Music Hour. Yes, you know it.
1: केले का छिलका सड़क पे ना भाई ना, चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी।
0: So with that we're going to take yet another message break. Yes.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों
0: We'll have to terminate that for the time being because there seems to be a little technical glitch, but then that's what happens

0: So that was No Woman, No Cry. And now, as promised, we've somehow worked around it. And the message, of course, back to the messages. A little break this one and then back into the show.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: So that tells us that this is time now for me to say goodbye to you, but also to say hello to Nija and also to Roland, who had sent in their messages. But, you know, how time is. But I'm acknowledging your messages. Thank you so much, lovely listeners, for writing in and also to tell us that you're here with us on the show. Well, I'm going to go away now and place the reins of the show into the hands of the next presenter. As always, I like to leave by saying a very special regard to those people for whom today is a very, very special day. So happy birthday, lovely people. And everyone, keep smiling and sharing that smile. On that note, Shalu says ta.

11 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी और महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के मकसद से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के अंतर्गत की जा रही है। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक बस में आग लगने से 9 यात्रियों की जलकर मौत हुई। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशू में रजत पदक जीता। पुरुष डबल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

11:52 हिना मौज हाजिर है प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ। हेलो जी, हाउ आर यू जी, आप लोग ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ इस बात की। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज का एक बार आदाब तो कबूल कीजिए हुजूर। आज मना रहे हैं हम विश्व बॉलीवुड दिवस, जी हाँ, वर्ल्ड बॉलीवुड डे। आज के दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिनेमा, संगीत और संस्कृति के उत्सव के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, सिनेमा केवल कहते हैं कि पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे सपनों, भावनाओं, संगीत, संस्कृति और जीवन के रंगों को भी अपने साथ लेकर चलता है। भारतीय सिनेमा की इस खूबसूरत दुनिया को समर्पित है आज का ये दिन। बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म जगत, ये दर्शकों के बहुत सारे सपनों को पूरा करती हुई तस्वीरें, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाती हैं ये।

ये खूबसूरत तस्वीरें जो हमें फिल्मों में नजर आती हैं चलती फिरती। राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, मधुबाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान जैसे कलाकारों से लेकर आज के दौर तक दोस्तों अनेक सितारों तक हिंदी सिनेमा ने इस यात्रा को समृद्ध और विविध बनाए रखा है। बॉलीवुड की खासियत दोस्तों ये है कि केवल इसकी कहानियों में नहीं बल्कि इसके गीत, संगीत, नृत्य, संवाद, अभिनय और भव्यता में भी इसका बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। हिंदी फिल्मा जो है वो इतना खूबसूरत, इतना हसीन है कि इसे हम अगर ये कहें कि हमारी ज़िंदगी के हर अक्स को ये बयान करता है तो गलत ना होगा। हिंदी फिल्मों के गीत तो कई बार दोस्तों फिल्म की कहानी से भी आगे निकलकर लोगों के ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाया करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई गीत आपकी ज़बान पर चढ़ जाता है और वो आप बार बार अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी दोहराते रहते हैं। कभी प्रेम कहानी हमें भावुक कर देती है, कभी माँ बाप और परिवार के रिश्ते हमें छू जाते हैं, कभी देशभक्ति की कहानी हमारे भीतर उत्साह जगाती है दोस्तों, और कभी संघर्ष की कहानी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे जाती है। बॉलीवुड ने भारतीय संस्कृति के कई रंगों को दुनिया तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी फिल्मों के गीतों और नृत्य की लोकप्रियता भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंच गई है। आज विश्व बॉलीवुड दिवस के अवसर पर हम उन कलाकारों, लेखकों, निर्देशकों, संगीतकारों और गायकों को, लाखों सिनेमा प्रेमियों को जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्हें याद करते हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत को अपनी प्रतिभा और मेहनत से समृद्ध बनाया है। तो आइए आज के दिन बॉलीवुड के इन सुनहरे सफर के सितारों को नमन करते हैं जिनमें कहानियां हैं, किरदार हैं, गीत है, संगीत है और सबसे बढ़कर दर्शकों की यादें और भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो सेलिब्रेट कीजिए आज का ये दिन इस प्यारे से सॉन्ग के साथ और लौटती हूँ आपके पास, बताऊंगी आपको आज का बॉलीवुड सरताज का क्वेश्चन। तो बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर हिना मौज के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स में।

11:15 हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, बॉलीवुड के गलियारों से होते हुए बहुत सारी खबरें हैं जो आप तक पहुंचवानी हैं आज आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। लेकिन इससे पहले कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ आगे बढ़ें, आपको बताए देते हैं कि आज हम क्या पूछेंगे आपसे, बॉलीवुड सरताज का क्वेश्चन। तो उसके लिए तैयार हो जाइए ताकि आपको जवाब देने के लिए सोचने का वक्त मिल जाए। सबसे पहले ये बात करूंगी कि बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और बहुत अच्छे काम करने पर भी आगे बढ़ने का मौका देती हैं, और ख़ास तौर पे इस दौर पे जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग बहुत सारी चीज़ों को जब करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हाँ हमें कोई सम्मान मिलना चाहिए, या फिर हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा अवार्ड या रिवॉर्ड होना चाहिए जिससे प्रोत्साहन बढ़े और इंसान और ज़्यादा करने की कोशिश करे। तो इसी फील को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, होती रहती हैं, और अभी भी कुछ दिनों पहले हुई हैं, 2-3 दिन पहले ही हुई हैं। खैर बहरहाल क्वेश्चन आपको बता दें इससे पहले कि आपको आंसर ही पता चल जाए। क्वेश्चन हमारा यह है आज का कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो इंडिया में किस फील्ड का हाईएस्ट अवार्ड है। इस सवाल का जवाब आपने देना है और जो देगा वो बनेगा आज का बॉलीवुड सरताज हमारे बॉलीवुड ट्रेल्स में आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और अब आते हैं लौट कर उस गलियारे में जहां पर सरगर्मियां हैं बॉलीवुड की फिल्म्स की, उनके गानों की। जी हां, अफसाना सॉन्ग रिलीज हो गया है गन मास्टर मूवी G90 का, जिसमें इमरान हाशमी के साथ। इसमें म्यूज़िक की बात करें तो हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक है और ये गाना इनका आज रिलीज़ होने वाला है, और ये बल्कि रिलीज़ हो चुका है। और इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में जो हैं वो क्यू में हैं जो रिलीज़ होने वाली हैं, या फिर 25 को यानी कल होंगी, या फिर उसके बाद अक्टूबर 1st वीक तक बहुत सारी फिल्म्स जो हैं वो लाइनअप हैं जो आप विकेट पे जाकर देख सकते हैं। अगर बात की जाए द वन की, तो इसमें नो कट सेंसर सर्टिफिकेशन जो है वो दे दी गई है, और इससे जुड़ी दिलचस्प खबर यही है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई कट जो है वो सेंसर ने नहीं किया है। आपको पूरा 2 घंटे

घंटे 16 मिनट 25 सेकंड की ये फिल्म देखने को मिलेगी और 25 सितंबर यानी कल आप जाकर सिनेमा घरों में इस फिल्म को देख सकते हैं। तो जी, ऐसे मौके पर जब आप बात करते हैं किसी सितारे की तो उसका गाना तो बनता है। तो आइए सुने एक प्यारा सा गाना सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म का।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

एफएम रेनबो पर हिना मौज के साथ हैं आप बॉलीवुड ट्रेल्स में 11:26:17। दोस्तों आज हम कुछ लोगों को याद भी कर रहे हैं जो फिल्म जगत से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया और बहुत सारी फिल्मों में ऐसे अभिनय किए जो हमें प्रेरित कर गए। उन्हीं में से एक नाम है पद्मिनी रामचंद्रन का। जी हाँ, इन्होंने कई ऐसी फिल्में की हिंदी फिल्म जगत में भी जिनको आज भी याद किया जाता है। पद्मिनी जी ने अपने लंबे करियर में कई प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया और दक्षिण भारतीय सिनेमा की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा काम किया है और उसके साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी फिल्मों में मेरा नाम जोकर, जिस देश में गंगा बहती है और आशिक और मेरा साया जैसी चर्चित हिंदी फिल्में शामिल हैं। तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया जा रहा है। इस गाने के जरिए आइए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: आप हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज के साथ। अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का, तो आइए आपको लिए चलते हैं अपडेट के लिए।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दोस्तों शबाब अनवर, और हम लेकर आ गए हैं सुबह के 11:30 बजे अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स इन द लास्ट वन आवर। और सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग खबर जो आई है पिछले एक घंटे में वो रही बॉक्सिंग की दुनिया से, क्योंकि सुमित कुंदू का जो 70 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 का बाउट था वेर ही वॉज अप अगेंस्ट अली कासिम हमदन अल सरे, वेल दैट उसमें बिकॉज ऑफ इंजरी ही हैड टू विथड्रॉ। यस, ही कुडंट कैरी ऑन एंड एज अ रिजल्ट दिस हैज बीन द बिगेस्ट हार्ट ब्रेकिंग न्यूज दैट हैज कम इन टू प्ले फॉर बॉक्सिंग के काम से, बिकॉज उनको फॉरफिट करना पड़ा अपना थर्ड राउंड। बता दें आपको कि सुमित लैंडेड बिग पंचेज अर्ली इन द बाउट एंड मेंटेन्ड अ क्लियर डोमिनेंस ओवर द इराकी प्यूजलिस्ट। द इंडियन बॉक्सर टुक द फर्स्ट राउंड 5-0 बिफोर कासिम मेड अ बिट ऑफ अ कम बैक। हाउएवर द सेकेंड राउंड वंस अगेन वेंट टू सुमित विद अ स्प्लिट डिसीजन ऑफ 3-2, बट डिजास्टर struck just seconds into the third round as Sumit suffered a severe knee injury, slipping and hobbling before the medical officer stepped in to stop the bout. Commentators suspected an ACL injury, bringing a heartbreakingly abrupt end to his campaign. And because of this, Iraq's Ali Al-Sarai advanced to the quarterfinals. And Shabab, कहना पड़ेगा कि ये जो घटना उनके साथ हुई है वो definitely heartbreaking तो है।
3: Yeah, बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि काफ़ी उनसे उम्मीदें भी थी और स्वयं भी काफ़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे अगर मुकाबले से बाउट से पहले की बात करें तो। लेकिन उधर हमें अगर कबड्डी की बात करें तो जहां जलवा भारत का बरकरार है, लगातार चौथी जीत दर्ज की है भारत ने, चीनी ताइपे को 37-21 से हराया है, और जैसा कि हमने बताया कि लगातार चौथी जीत के साथ लगभग सभी ग्रुप मैच जीत कर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है पुरुष कबड्डी में।
2: राइट, एंड द अदर बिग न्यूज दैट वी विल नाउ ब्रिंग टू यू, रादर शुड वी मूव ऑन टुवर्ड्स, इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश, जहां पर हमने देखा कि अनहत सिंह वन एंड रैप्ड अप अ कॉन्टेस्ट विद एन 11-7 विक्ट्री इन द थर्ड गेम, एंड थेरबाय इन द वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 16 क्लैश वाज एबल टू डिफीट हर ओपोनेंट 3-0 टू क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। इट वाज अ क्लीन विक्ट्री दैट केम हर वे, 11-4, 11-5, 11-7, गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्क्वॉश। और उससे पहले भी अगर हम स्क्वॉश के कुछ और इवेंट्स के ऊपर आज एक नजर डाले तो ऑल इंडियन क्लैश इन द मिक्स डबल्स राउंड ऑफ 16 भी हमने आज देखा, जिसमें जोशना चिनप्पा एंड विलवन सेंथिल कुमार सिक्योर्ड अ हार्ड फॉट 2-0 विक्ट्री ओवर फेलो इंडियंस सूरज चंद एंड शमीना रियाज टू एडवांस टू द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स। एंड मेन सिंगल्स राउंड 1 में भी मनुष शाह एंजॉयड अ कंफर्टेबल स्टार्ट टू हिज मेन सिंगल्स कैंपेन विद अ विन ओवर मलेशियाज वोंग क्विशेन ऑफ मलेशिया 11-9, 14-12, 11-7, 11-9।

0: महिला साबरे के राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें 2026 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट चीन के राव शुंगई ने 15-5 से पराजित कर दिया है।
1: Right, and the big news that came in today early in the morning was from the world of wushu, जहां रोशि बिना देवी ने वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल के अंदर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया और भारत का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया। हैट्रिक ऑफ मेडल्स फॉर हर इन द एशियन गेम्स, बिकॉज 2018 के एशियन गेम्स में उनको ब्रॉन्ज से नवाजा गया था, 2022 के एशियन गेम्स में उनको सिल्वर से नवाजा गया था, और एक बार फिर से 2026 में उन्होंने सिल्वर पदक अपने नाम कर लिया। गोज टू शो हर कंप्लीट डोमिनेंस इन वुशु इन द 60 किलोग्राम कैटेगरी, विच शी obviously earned after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. And Shabab, हमें पता है, it's never going to be easy to defeat a Chinese opponent in any sport. But Shabi, we have Roshi Bina Devi somehow breaking those barriers and every time proving every person wrong that we can go ahead and defeat China or Japan also.
0: देखिए, individual round में अगर देखा जाए तो अब तक जितने भी athlete ने जो कारनामा दिखाया है उनमें वो सबसे आगे हैं। जिस तरह का उनका सफर रहा है और जिन परिस्थितियों में उन्होंने कई खेल छोड़े और सेल्फ डिफेंस के लिए जो उन्होंने जो अपनाया एक घटना घटने के बाद उनके बाद उसमें लेकर के जो आगे बढ़ी वो काबिले तारीफ है।
1: राइट, एंड नाउ अ क्विक अपडेट ऑल्सो कमिंग इन फ्रॉम शूटिंग, जहां आपको बता दें कि एक अच्छी खबर या खुशखबरी की हम उम्मीद कर सकते हैं शूटिंग में, वो है मिक्स टीम स्केट के फाइनल्स के थ्रू, बिकॉज इसके अंदर आपको बता दें द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ अनंतजीत सिंह नरुका और परनाज धलेवाल हैव मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ द मिक्स स्कीट शूटिंग कॉम्पिटिशन, एंड दे हैड फिनिश्ड फोर्थ इन द क्वालिफिकेशन राउंड, गेटिंग 138 आउट ऑफ 150 पॉइंट्स एज पर द ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स। ऑल्सो कतर, साउथ कोरिया और चाइना उनके ऊपर है ये तीनों देश, चौथे पर उन्होंने फिनिश किया था, तो दे आर गोइंग टू नाउ बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द मिक्स्ड स्कीट टीम फाइनल्स। ये इवेंट 11:15 सुबह शुरू हो चुका है, इसके बारे में आपको अपडेट लेके आएंगे अगले एक घंटे के बाद, यानी दोपहर 12:30 आपको इसमें बताएंगे क्या हुआ। फिलहाल के लिए शबाब और मुझे यानी साक्षी को दीजिए इजाजत, वी विल कैच यू बैक अगेन विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स इन द 12:30 अपडेट। थैंक यू सो मच, गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

6:41 हिना मौज के साथ हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने भेजा है बॉलीवुड सरताज के लिए अपना आंसर, लेकिन बताएंगे जाने से पहले बताएंगे ज़रूर सवाल एक बार फिर कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किस श्रेणी का अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है। इस पर आपको अपना आंसर देना है और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम उन लोगों को भी याद करना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं इस वक्त जिन्होंने 22 तारीख को अवार्ड्स जो हैं अपने नाम किए हैं और वो भी सबसे बड़े 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स। उनके विजेताओं के नाम यहाँ बॉलीवुड ट्रेल्स में बताना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी और उनके नाम बताते चलें क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उन्हें ये अवार्ड हासिल करने का मौका मिला। अगर फीचर फिल्म की बात की जाए तो आर्टिकल 370 ने इस खिताब को हासिल किया है और फीचर फिल्म के तौर पर लोकप्रिय फिल्म जो थी वो कालकी साबित हुई है और निर्देशक आमरण के लिए राजकुमार पेरियासामी जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है और अभिनेता के तौर पे दो लोगों ने ये अवार्ड शेयर किया है, ममूटी ने ब्रह्मयुगम के लिए और कार्तिक आर्यन ने चंदू चैम्पियन के लिए। और जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब अपने नाम किया है आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम ने। और सहायक अभिनेता के तौर पे अगर देखा जाए तो संजय मिश्रा भक्षक के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। अभिनेत्री हैं जिन्हें ये सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है वो हैं रचना नामीदास महाराजा के लिए और रूपा श्री वरकंडी मिथ्या के लिए इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है। बहुत सारे अवार्ड्स और भी हैं जिन्हें हम बता रहे हैं आपको और ये हमने आपको लाइव भी आकाशवाणी से आप तक पहुंचाए हैं इस अवार्ड्स की सेरेमनी को। चलते चलते बस इस अवार्ड के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये मिला है अनंतनाग को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है अभिनेता जिन्होंने बहुत योगदान दिया है इस सफ़र में, भारतीय सिनेमा के इस लंबे सफ़र में उन्होंने बहुत लंबा वक्त बिताकर इस अवार्ड को अपने नाम किया है। बहरहाल आकाशवाणी एफएम रेनबो पर बने रहिए, बॉलीवुड की और बहुत सी खबरें हैं जो आप तक पहुँचानी हैं। 11:43 और 52 सेकेंड हुए हैं, हिना मौज के साथ बने रहिए है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार

रहता है इंतजार। मनयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

11:50 हुए हैं। आकाशवाणी पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेल सीना मौज के साथ। दोस्तों, बॉलीवुड की गलियारों में जब ऐसी कोई बात होती है जहां पर दो एंटी पार्टीज एक दूसरे के समर्थन में आ जाएं, तो वहां बात तो बनती है। ऐसा ही कुछ हुआ है वीकेंड के वार में सलमान खान के दिए हुए ट्रोलर्स को जवाब पर विवेक ओब्रॉय की प्रतिक्रिया सामने आई है। विवेक ओब्रॉय ने उनके समर्थन में, उनके बचाव में आते हुए कहा है कि किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए। ट्रोलिंग एक नेगेटिव चीज है। जिंदगी में पॉजिटिव काम करने के लिए इतने सारे अवसर हैं, फिर नेगेटिव चीजों की तरफ क्यों बढ़ना। ये प्रतिक्रिया तब आई जब सलमान खान ने लेडी को, जब उनके प्रसव के बाद उनका वजन बढ़ जाता है, खास तौर पे कटरीना कैफ को इस चीज के लिए कहा जा रहा है कि ट्रोल किया गया उनके बढ़े हुए वजन को लेकर, और बहुत सारी ऐसी पेपराजी की तस्वीरें होती हैं जो जिस एंगल से ली जाती हैं उनको नहीं लेनी चाहिए। इन पर बात की थी वीकेंड के वार में सलमान खान ने। उसी की प्रतिक्रिया देते हुए ये बयान विवेक ओब्रॉय का सामने आया है।

अब बात बॉक्स ऑफिस की, जो बॉलीवुड में बहुत फेमस है, इस चीज को लेकर के क्या हुआ, कहाँ हुआ और कौन सी फिल्म रिलीज हुई, किसने क्या कलेक्शन किया, इस बारे में आज तो नहीं बता पाएंगे। आज सिर्फ ये बताएंगे कि कल यानी 25 सितंबर को कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, द वन और इसके अलावा लव लॉटरी। इसमें भी अक्षय, ओब्रॉय, हेली दारूवाला और इनके साथ कई कलाकार शामिल हैं। श्री रामायण कथा, जो देखने के लिए सब बहुत उत्सुक हैं, ये देखने के लिए कल आप जा सकते हैं क्योंकि कल ये रिलीज हो रही है। इसके अलावा ओए चुलमार, ये फिल्म भी आने वाली है 25 सितंबर को यानी कल, और ये बॉलीवुड की ऐसी फिल्में हैं जो कल रिलीज होंगी और आप जाकर इनको देख सकते हैं। एक्चुअल कलेक्शन जो है वो इन फिल्मों का अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि पहले से बुकिंग हुई हुई जो है उसके हिसाब से भी अभी कुछ आसपास का मामला चल रहा है, लेकिन लगता है कि शायद रामायण जो आ रही है

रामायण कथा, श्री रामायण कथा, इसको शायद ज़्यादा लोग देखने के लिए जाएंगे, जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। बहरहाल चलते चलते आपको ये बता दें कि कौन कौन है आज का बॉलीवुड सरताज। इस सॉन्ग के बाद बात करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्या कहते हैं आप? क्योंकि आज हम एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हैं सिल्क स्मिता, उनका नाम था, और शायद सब लोग जानते हैं, उन पर एक फिल्म भी बनी थी, द डर्टी पिक्चर, और इस फिल्म का गाना तो उनकी याद में बनता है।

चलते चलते आपको बता दें कि आज के बॉलीवुड सरताज कौन बने हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। जवाब ये था कि ये फिल्म एक क्षेत्र का सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है और होता है। इसका सही जवाब हमें भेजा है सोनिया विहार से अंश ने। शैलेंद्र वर्मा ने भेजा है कहाँ से, ये उन्होंने नहीं बताया है। विनोद सोनी ने भटिंडा से और धर्म भाटिया ने रोहतक से। तो आप बनते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा वाला सॉन्ग में रहूंगी 1 बजे से आपके साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली प्रेजेंटर आ रही है शालू, इनके साथ आप रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: The time by the studio clock, 14 minutes past 12 and 28 seconds right on the dot. Let's take a little messagey break.
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
4: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
3: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
4: हैं इतनी जल्दी?
3: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

0: दी एयरवेव्स।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: It's time for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
2: हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त दोस्तों यहां पर मौजूद हैं शाबाब अनवर और हम लेकर आ गए आपके लिए एशियन गेम्स 2026 की लेटेस्ट अपडेट्स दोपहर 12:30 बजे। इंतजार का सफर थोड़ा लंबा रहा आज के इस इवेंट के अंदर, लेकिन फाइनली वो सफर आकर समाप्त हुआ। मैं बात कर रही हूँ शूटिंग में, भारत की मिक्स टीम्स की फाइनल्स में हमारे भारतीय शूटर्स अनंतजीत सिंह नरूका और परिणाज धालीवाल ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया। जी हाँ, अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस पुट अप बाय द टू इंडियन शूटर्स इन द मिक्स टीम्स की फाइनल्स, अनंतजीत सिंह नरूका एंड परिणाज धालीवाल, एंड दे हैड ऑल द रीजंस टू स्टैंड टॉल एंड प्राउड फॉर देयर एफर्ट्स, बिकॉज डिस्पाइट टाइंग विद कोरिया एट 44 पॉइंट्स फॉर द नंबर टू स्पॉट यानी दूसरे स्थान के लिए, दे हैड टू सेटल इन विद द ब्रॉन्ज आफ्टर द एंड ऑफ द सिक्स सीरीज सिक्स ओइंग टू अ लोअर स्कोर इन क्वालिफाइंग राउंड। जी हाँ, बिकॉज द स्कोर्स ऑफ द इंडियन शूटर्स वर लो इन द क्वालिफाइंग ground, hence they couldn't stand to be in competition for the second spot finish, but nonetheless the effort of Anantjeet Singh Naruka and Parinaz Dhalwal in itself is huge, commendable and appreciable. So here's to the Indian shooters and to the Indian mixed teams keep final events which concluded with the bronze medal for India.
3: Yeah, और कुल पदकों की संख्या 7-15 भी हो गई है। उधर स्क्वाश से भी अच्छी खबर आ रही है, तन्वी खन्ना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, हम आपको बता दें, और अभय भी राउंड 16 में पहुंचे हैं। तन्वी खन्ना ने स्क्वाश के विमेंस सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने सिंगापुर की केई गहन को 3-1 से पराजित किया। मेन सिंगल्स इवेंट में अभय सिंह श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी को 2-0 से हरा के प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बना ली। वीर चित्रानी ने मलेशिया के संजय जीवा के खिलाफ पहला गेम 11-9 से जीता था जिस समय हम आए थे स्टूडियो। और उधर इससे पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि 18 साल की अनाहत सिंह ने स्क्वैश के महिला सिंगल्स में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सिंगापुर की ओ यू योंग वाईयन को 3-0 से हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत ने मुकाबला 11-4, 11-15, 11-7 से जीता और इस जीत के साथ ही अनाहत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। तो स्क्वैश में आज सुबह से ही अच्छी खबरें आ रही हैं।
2: जी, और क्योंकि हम यहां पर अच्छी खबरों की बात कर रहे हैं और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है तो इसको मैं बरकरार रखती हूँ। कबड्डी की दुनिया से भी अपने श्रोताओं का हमें लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि एज वॉज एक्सपेक्टेड द चाइनीज ताइपे टीम वॉज नो मैच फॉर इंडिया इन द फाइनल ग्रुप ए गेम। इंडिया सिक्योर 37-21 विक्ट्री क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स एज द टॉप रैंक्ड टीम। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भारत को कबड्डी की दुनिया से अब एक मेडल तो डेफिनेटली तय हो ही गया है। अब वो कौन से रंग का होगा शबाब, थोड़े दिनों में या कह सकते हैं कि थोड़े ही पलों में पता चल जाएगा, कुछ घंटों बाद कल तक, लेकिन फिलहाल द गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी इज दैट
3: रंग तो वही स्वर्णिम होगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

0: ना, यानी बहुत ही छोटे मार्जिन से हम सिल्वर या स्वर्ण तक नहीं पहुंच पाए शबाब, लेकिन वी स्टिल मैनेज टू गेट अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट द स्टार्ट ऑफ द डे टुडे. सो हियर्स टू आर टू रोअर्स सतनाम सिंह एंड सलमान खान फॉर ब्रिंगिंग द इंडियन रोअर्स एंड मेकिंग देम फील प्राउड.
1: अब बहुत सवेरे उन्होंने खुशखबरी सुना दी थी हम लोग को. उधर क्रिकेट प्रेमियों को भी इंतजार था कि मेंस क्रिकेट शुरू एशियन गेम्स से हो रहा है. तो जी हाँ, उसकी शुरुआत हो गई, उसका पहला मुकाबला भी हो गया और पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने जीता. मेजबान जापान को 48 रनों से उन्होंने पराजित किया. ग्रुप ए के इस मुकाबले में अफगानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए थे, जवाब में जापान 81 रन ही बना सका.
0: जी, और हॉकी में आपको बता दें कि मेंस हॉकी पूल ए एनकाउंटर इस समय शुरू हो चुका है. भारत इज अप अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड अच्छी खबर यह है कि यहां पर भी भारत का कंप्लीट डोमिनेशन दिख रहा है उनकी ओपोनेंट साउथ कोरिया के ऊपर, बिकॉज थर्ड क्वार्टर की शुरुआत हो चुकी है और भारत ने बहुत स्ट्रांग लीड बना ली है. 6-0 से इस समय भारत आगे है. साउथ कोरिया हैज एन अपहिल टास्क टू मेक अ कमबैक इनटू दिस गेम. भारत की तरफ से शीलानंद लाकरा, सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अभिषेक दिलप्रीत सिंह और इन चारों कहना चाहिए हॉकी प्लेयर्स ने भारत के लिए गोल दागे हैं, जिसमें से एक तो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन था जो हरमनप्रीत सिंह ने करा. सो ऑल इन ऑल अ वेरी कमांडिंग एंड अ वेरी डोमिनेटिंग स्टार्ट बाय द इंडियन हॉकी प्लेयर्स अर्ली ऑन अगेंस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया. ही इज होपिंग कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हम खुशखबरियों का सिलसिला जारी रखेंगे आप सबके साथ. फिलहाल के लिए शबाब और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत. वी विल ज्वाइन बैक वंस अगेन एट 1:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एशियन गेम्स 2026. Thank you.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.

0: Play It Cool on 102.6 Akashwani Rainbow. When the studio clock says it is 49 minutes past 12 and 9 seconds, we're going in for a tiny little मैसेज ब्रेक।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक बज चुका है। लीजिए सुनिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद किया। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक बस में आग लगने से 9 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। जापान में एशियाई खेलों में रोशी बिना देवी ने वुशू में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। पुरुष डबल में सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुडुचेरी के यानम क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव क्षेत्र के प्रभाव से तेज बारिश हो रही है। विश्व समुद्री दिवस पर पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नीतिगत सुधारों और सी फेयरर फर्स्ट पहल को बढ़ावा दे रही है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग शुरू हो चुका है, लेकिन मेरा वाला सॉन्ग में सबसे पहले मैंने वो गाना बजाया जो मेरा वाला सॉन्ग है। जी हाँ, हिना मौज है आपके साथ। वादे के मुताबिक दोबारा हाजिर हुई हूँ इस प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए जिस पे आपको भेजनी है अपनी पसंद, जो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की। 9868107070 ये हमारा नंबर है, एक बार फिर से नोट कर लीजिए 9868107070। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप। बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। ये मैसेज आया है हमारे पास, भटके हुए रास्तों को जो सही राह दिखाता है, दिल्ली का रेनबो एफएम हर पल साथ निभाता है, दुनिया भर की अफवाहों से दूर रखता है हमें सच्ची खबरों से, जो हर दिल का भरोसा जीतता है। सुरों की महफिल भी सजेगी और ज्ञान भी मिलेगा, इसकी हर एक बात पर आपका दिल खिलेगा। कहते हैं कौन, यश शिंदे मुंबई से इनका ये मैसेज हमें मिला है। गुमराह फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर सुनवाएंगे गुमराह फिल्म का ये गाना, ये मुझे भी बहुत पसंद है। इसके अलावा अगला मैसेज है उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का, और इन्होंने थ्री इडियट्स का जूबी डूबी सुनना चाहा। इसे पहले वाले प्रोग्राम में सुनाया, तो कोई नया सॉन्ग भेजिए ताकि हम आप तक पहुंचाएं वो सॉन्ग। अगला मैसेज किसका है देखें, ये हमारे पास आया है कालका से, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ये कहते हैं। और इनके साथ हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, जो शामिल हुए हैं मोहाली चंडीगढ़ से, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह, और इन्होंने गाना जो है वो भेजा है। हाँ हाँ, कहते हैं गाना तो एक बहाना है, तो कोई बात नहीं, से बहाना ही रहने दीजिए, ना बजाऊँ आपका गाना कोशिश करूँगी। चलिए, और अगला मैसेज हमारे पास आया है सौरभ अनेजा का गाज़ियाबाद से, और इन्होंने कोई कहते हैं कोई भी चॉइस मेरी नहीं है, मैं तो बस शो एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, और सारी अगर सारे सॉन्ग्स आपको पसंद आएंगे, क्योंकि सब लिसनर्स की चॉइस या हमारी चॉइस होंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगला मैसेज किसने लिखा है, गुड आफ्टरनून जी, सभिया जी नहीं हिना जी हैं इस वक्त सभिया भी आएंगी, डोंट वरी। और इन्होंने सड़क मूवी का सॉन्ग हमें कहा है सुनाने के लिए, और ये हैं जॉनी कश्यप, विपिन कश्यप, नवाब अहमद भारती, संजय मालाकार, पिंटू दीवाना, दिल्ली से इनका ये मैसेज हम तक पहुंचा है। तो भेजते रहिए जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस, और बताते रहिए गाने कौन कौन से आप सुनना चाहते हैं। तो गुमराह फिल्म का ये गाना आपके लिए, लीजिए सुनिए।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: आज फिर लेट हो गए।
6: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
5: क्यों बैठे थे बाहर?
6: क्यों ना बैठे?

0: हूँ, बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
0: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।

1:19 हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग और बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंच गई हैं। मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन फिर भी हम एक बार और नंबर बता दें अपना, 9868107070 हमारा नंबर है, और भेजिए अपनी फरमाइश के सॉन्ग्स, कोशिश करेंगे ये ट्रैक्स आप तक पहुँचा सकें। ये मैसेज हमारे पास आया है पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से, कहते हैं गुड आफ्टरनून जी, और इन्होंने इसी गाने की फरमाइश की थी जिस गाने को अभी हमने प्ले किया, और उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे कि आपकी फरमाइश आप तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे पैगामात हम तक पहुंच रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका खोरवाल ने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है।

वेलकम कह रहे हैं हमें गुड आफ्टरनून के साथ गाजियाबाद से सौरव अनेजा, और इन्होंने किसी गाने की फरमाइश तो नहीं की है, इनका सिर्फ ऐसे ही मैसेज हम तक पहुंचा है। गुड्डू धाकड़ उज्जैन ज़िले से शामिल हुए हैं, कहते हैं दिल तो पागल है फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। तो जी बिल्कुल सुनवाएंगे आपको, जो सॉन्ग आपने लिखकर भेजा हम वही सुनाने की कोशिश आपको करेंगे। और ये हैं महिपालपुर से अदनान सलमानी, अमन सलमानी और राजा हिंदुस्तानी का नगमा सुनने के लिए इन्होंने कहा है। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून फिरोज़ ख़ान नूरी, फिरोज़ अरबाज़ ख़ान, शहबाज ख़ान शामिल हुए हैं ज़िला बदायूनी से, और दिल तो पागल है फ़िल्म का सॉन्ग ये भी सुनना चाहते हैं। तो जी आप सबकी फरमाइश पर दिल तो पागल है फ़िल्म का सॉन्ग आपको ज़रूर सुनवाएंगे। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मेरा वाला सॉन्ग सुनते रहिए हिना मौज के साथ। ये लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये सॉन्ग।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हैं आप। अब वक्त हो चुका है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का, तो थोड़ी देर में आपको लिए चलते हैं अपडेट के लिए।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे शबाब अनवर। घड़ी में हो गया है इस समय 1:30 और हम लेकर आ गए दोस्तों आपके लिए एवरी आवर अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। तो क्योंकि दोपहर के 1:30 आज के दोपहर की शुरुआत अपडेट्स की हम करते हैं खुशखबरी के साथ। क्यों शबाब?
2: बिल्कुल, खुशखबरी ये है कि

0: भारत ने मेंस हॉकी में मजबूत टीम मानी जाने वाली इस ग्रुप की साउथ कोरिया को बड़े आराम से 8-2 से पराजित कर दिया है। और इस टूर्नामेंट में पूरे अगर कहा जाए एशियन गेम्स के इतिहास में ये अब तक साउथ कोरिया पर भारत की सबसे बड़ी जीत है। एशियन गेम्स में इससे बड़ी जीत भारत ने अब तक हासिल नहीं की थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो मुकाबले हुए थे अपेक्षाकृत आसान टीमों के विरुद्ध भारत बहुत बड़े अंतर से जीता था, तब ऐसा कहा जा रहा था कि असल परीक्षा तो कोरिया के साथ होगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि कितनी तैयारी के साथ आए हैं अपने खिताब की रक्षा करने के लिए। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि टीम इंडिया ने पूल ए में यह लगातार तीसरी जीत हासिल की और जाहिर सी बात है अपने ग्रुप में वो चोटी पर है।
1: जी, और थोड़ी सी आपको खबर एक और देते हैं बॉक्सिंग की दुनिया से, जहां मेरे पास ज्यादा खुशखबरी वाली न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन वेल इट्स एन अपडेट दैट वी हैव टू गिव यू कि बॉक्सिंग में सुमित किंदू का जो मुकाबला था 70 किलोग्राम के राउंड ऑफ 32 में, वेर ही वाज अप अगेंस्ट अली कासिम, वो फिलहाल उनको उनसे फॉरफीट कर लिया गया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज सुमित की जब शुरुआत हुई थी उस मुकाबले में, ही लैंडेड बिग पंचेस अर्ली इन द बाउट एंड मेंटेन्ड अ क्लियर डोमिनेंस ओवर द इराकी प्यूजलिस्ट। द इंडियन बॉक्सर टुक द फर्स्ट राउंड 5-0 एंड उसके बाद सेकेंड राउंड भी स्प्लिट डिसीजन से भारतीय बॉक्सर सुमित किंदू के ही फेवर में गया था विद द डिसीजन ऑफ 3-2, बट डिजास्टर स्ट्रक जस्ट सेकेंड्स इनटू द थर्ड राउंड एज सुमित सफर्ड अ सीवियर नी इंजरी, स्लिपिंग एंड हॉबलिंग बिफोर द मेडिकल ऑफिसर स्टेप्ड इन टू स्टॉप द बाउट। वेल, द ऑफिशियल सस्पेक्टेड एन ACL इंजरी, ब्रिंगिंग अ हार्ट ब्रेकिंगली अब्रप्ट एंड टू हिज कैंपेन, एंड एज अ रिजल्ट इट कुडंट हैव बीन मच मोर वर्स फॉर द इंडियन बॉक्सर सुमित किंदू, बिकॉज इराक्स अली अल सरे एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑटोमेटिकली।
0: यह साक्षी, एक रोइंग से खबर आ रही है, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अपने श्रोताओं को अपडेट देना बहुत जरूरी है। भारत के कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह, जकार खान और बलराज पवार की टीम पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स के जो फाइनल मुकाबले थे उसमें 5वें स्थान पर रही। हालांकि प्रयास बहुत अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन सफलता ज़्यादा मिली नहीं। चीन ने इस मुकाबले का गोल्ड मेडल जीता, इंडोनेशिया दूसरे, उज्बेकिस्तान तीसरे और जापान चौथे स्थान पर आए।
1: जी, और स्विमिंग में भी नॉट अ लॉट ऑफ गुड न्यूज टू गिव एट दिस आवर, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द डे वी विटनेस्ड एक्शन इन मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स, मेंस 4x200 फ्री स्टाइल रिले हीट्स एंड मेंस 800 मीटर फ्री स्टाइल। इन तीनों इवेंट्स में एक एक करके आपको बताते हैं, मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स में भारत की तरफ से बेनेडिक्टन बेनिस्टन फिनिश्ड 5th इन द हीट 5 ऑफ मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट, फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल डायरेक्टली बट इज स्टिल प्लेस्ड इन द रिजर्व्स, ही फिनिश्ड 12th ओवरऑल। मेंस 4x200 फ्रीस्टाइल रिले हीट्स के अंदर बेनेडिक्शन बेनिस्टन, अनीश सुनील, आकाश माने और गितेश शाह वो एलिमिनेटेड इन द हीट्स आफ्टर फिनिशिंग लास्ट इन देयर 6 टीम रेस इवेंट। मेंस 800 मीटर फ्रीस्टाइल में भी हमने देखा आर्यन नेहरा फिनिश थर्ड विद द टाइमिंग ऑफ 8:02.52, टचिंग द वॉल 5.13 बिहाइंड वियतनाम्स ग्यूइन होए हवांग। एज अ रिजल्ट आर्यन नेहरा डिड नॉट लीव दिस इवेंट विद अ पोडियम प्लेसमेंट ऑल्सो।
0: क्या बिल्कुल, और स्क्वैश में भी आज का दिन अच्छा रहा है, आज से मुकाबले भी शुरू हुए। तन्वी खन्ना ने स्क्वैश के विमेन सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, उन्होंने सिंगापुर की वेई रहन को 3-1 से हराया। और मेन सिंगल्स में अभय सिंह श्रीलंका के रविंदु लक्षिरी को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई। और चौतरानी ने अगर देखा जाए तो मलेशिया के संजय जीवा

0: थ्री एशियन गेम्स 2018, 2022 और 2026 तीनों बार उन्होंने मेडल्स अपने नाम किए. अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स कमिंग फॉर रोशिबिना देवी. एंड आई थिंक शबाब वी ऑल्सो हैव सम न्यूज़ टू शेयर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग फॉर आवर लिसनर्स टुडे.
1: या बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर थोड़ी सी परेशानी हुई. भवानी देवी ने थोड़ा सा निराश किया. राउंड ऑफ 16 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बहुत ही अफसोसनाक ये खबर रही है, क्योंकि उन्होंने 2026 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट को उन्होंने हराया था और उसके बाद से मुकाबले से बाहर होना थोड़ा चिंता की बात है.
0: राइट, वील कैरी ऑन विद दीज अपडेट्स ऑफ कोर्स. लेकिन उसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज दिन की शुरुआत भी मेडल्स के साथ ही हमारे लिए हुई थी, बट वील बी कमिंग विद दैट, जिसकी वजह से भारत की पोजीशन अगर मेडल टेबल पर देखें तो 14th पोजीशन पर अब बन गई है. 15 मेडल्स कुल मिला के भारत को मिले हैं, जिसमें से एक है गोल्ड क्रिकेट की दुनिया से, महिला क्रिकेट ने दिलवाया. 6 सिल्वर है, जिसमें 4 शूटिंग, 8 वेट लिफ्टिंग और 1 वुशू से आया है. और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स, 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन और 1 रोइंग, मेकिंग इट अ टोटल of 15 medals. Hope still resting a lot on the Indian athletes. और इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय एथलीट्स और प्लेयर्स भारत का नाम और रोशन करवाए और मेडल टेबल में धीमे धीमे करके भारत और ऊपर आए. On that note, right now it's Shabab and me, Sakshi, saying goodbye to our listeners. We'll join back at 3:30 PM with all the live updates of the ongoing Asian Games 2026.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे.

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हैं हिना मौज के साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9868107070। ये मैसेज हमारे पास आया है पंकज डोगरा का। ये हैं चंडीगढ़ से और पंजाब पुलिस में हैं, इंस्पेक्टर के तौर पे सेवाएं दे रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी पसंद के गाने का तो नहीं लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी गाना है, गाने आप सुना रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। और ये हमारे पास गुमराह फिल्म का आपका जो गाना है वो चल चुका है, तो दोबारा मैसेज मत भेजिए। ये है यूपी हकीमगंज से आसिफ अंसारी, तालिब शेख, मुकीम शेख, इमरान शेख, इन्होंने भी एक नगमे की फरमाइश, एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से शामिल हुई हैं। ना मिला तो सनम मूवी का कह रही हैं, सॉन्ग सुनवा दीजिए जी। कोशिश करेंगे। और कई लोगों के नगमे यानी सॉन्ग्स क्यू में भी हैं, तो उनके भी गाने हम आप तक ज़रूर अभी पहुंचाएंगे। एक दूजे के लिए फ़िल्म की फरमाइश भेजी थी, इस फिल्म की, बबलू कश्यप, अशरफ अली, नवाब अहमद और शबाना भारती ने। और एक और सॉन्ग इन्होंने भेजा है, तो देखते हैं दोनों में से कौन सा सॉन्ग आप तक पहुंचता है। होली चौक उत्तर उत्तम नगर दिल्ली से जयराज खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और इनके बहुत सारे साथी, इन्होंने भी एक गाना बोला है गोलमाल से। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका गाना आप तक पहुँचे। हीरा मनी वर्मा, अपारस मनी वर्मा, पुष्पेंद्र मनी वर्मा और नोखेला लाल वर्मा, छत्तीसगढ़ भाटा पारा से इन्होंने शिरकत की है हमारे इस प्रोग्राम में। तो जी, आप सबकी फरमाइश पर ये गाना आप सब लोगों के लिए।

0: मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश और इनके बहुत सारे साथियों का मैसेज आया है। ज़िला मुरादाबाद से शिरकत की है, शामिल हुए हैं ये। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से इन्होंने शिरकत की है। वेलकम जी, थैंक यू जी। कह रहे हैं कि कोई भी अपनी पसंद का गीत सुना दीजिए। ये कही आपने बढ़िया वाली बात, कम से कम एक आध सॉन्ग तो मेरी पसंद का जाएगा। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, खूबसूरत गाने बज रहे हैं। डॉली कह रही हैं कहाँ से, ये इन्होंने नहीं लिखा है। और जी पंकज अमरावती महाराष्ट्र से शामिल हुए हैं। और ये हैं मनी नंदा, और कहाँ से, मनी नंदा गाज़ियाबाद से शामिल हुए हैं। और ये पैगाम हमें आया है नमस्कार के साथ, अशरफ अली नवाब अहमद और इनके साथ हैं अवंतिका रोहिणी दिल्ली से, इन्होंने शिरकत की है। फिल्म बागबान का कह रहे हैं कि गाना चला दीजिए। ये हैं राम बाबू मालवीय, मनीष मालवीय, और इन्होंने कोलार रोड भोपाल से हमें मैसेज भेजा है। अनीता वर्मा द्वारका दिल्ली से, इन्होंने बहुत सारे गाने लिखकर भेजे हैं कि अगर ये नहीं मिल रहा तो ये वाला, ये नहीं है तो वो वाला। तो कोशिश करते हैं आपका गाना आप तक पहुंचे। और ये हैं ऋषिकेश से सत्य, और नहीं, ये टॉम डिक और हैरी ने हमें ये मैसेज भेजा है। और अगला मैसेज देखें किसका है। ये हैं जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन फिल्म का नगमा सुनना चाहते हैं। जी एस गिल पटियाला से शामिल हुए हैं। तो जी बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात।

थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तमिलनाडु से शामिल हुए हैं मुस्कान। फिल्म का नगमा सुनना चाहते हैं। ये हैं अमरदीप कुमार, कुप्पम पट्टी और इनके साथ इनके और भी साथी शामिल हैं। और ये मैसेज हमारे पास देखें किसका आया है। ये मैसेज गुड आफ्टरनून के साथ हमें भेजा है कृष्णा वंजानी, नीलम स्वाथी और किशु का, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

1:51 44 सेकेंड हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और ये भी सॉन्ग आप सबकी फरमाइश पर ही हमने आप तक पहुंचाया है। गुड आफ्टरनून के साथ मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से शामिल हुए हैं, और ये रिफ्यूजी फिल्म का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर सुनवाएंगे जी। और ये हैं संजय मालाकार, बबलू कश्यप, नवाब अहमद भारती, सिराज मिथुन और इनके बहुत सारे साथी। सुनीता शर्मा शालीमार बाग से शामिल हुई हैं, और ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से।

यूपी रामपुर जिले से शामिल हुए हैं मनमोहन सिंह, सोनम, काव्या और दक्ष। बबलू कश्यप मंगोलपुरी से इनका पैगाम है और ये हैं महावीर जैन कर्नाटका से। और जी कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालविया और इनके साथी। तो जी चलते चलते बस आपको एक आखिरी सॉन्ग रिफ्यूजी फिल्म से सुना रही हूँ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में। फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।

दोपहर के 2 बज गए हैं। पेश एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि सेवा परमो धर्म यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है और यही भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा है कि देश में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। विश्व समुद्री दिवस पर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र देश की प्रगति का एक मजबूत आधार है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जापान एशियाई खेलों में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशी बिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। पुरुष डबल में सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के आखिरी मैच में चीन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ये 30 घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

मेरी वाणी आकाशवाणी। आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशियाना। आज मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आज बात सीनियर सिटीजन्स के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में और कुछ और भी खास बात। बने रहिए मेरे साथ।

एक विलन से बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, खूबसूरत आवाज, अरिजीत सिंह। आप सुन रहे मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद। आशियाना में हम हर थर्सडे बात करते हैं हमारे वृद्ध, हमारे बुजुर्गों के, हमारे सीनियर सिटीजन्स के बारे में, उनकी ओल्ड एज के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, उनकी बेटर हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग। लेकिन साथ ही कुछ और भी बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी होता है। सीनियर सिटीजन्स का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे उनकी ओल्ड एज के साथ साथ सिर्फ उनकी हेल्थ और वेलबींग नहीं, उनका घर पर होना और उनका घर के लोगों के साथ गाइड करना, उनको उनके बीच में रहना, उनके अच्छे बुरे बातों में, चीज़ों में उनका शामिल रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही सुकून पहुँचाने वाला। तो आज बात हम यही करने वाले हैं कि उनकी हेल्थ और वेलबींग के अलावा उनकी जो दवा होती है, उनके बुजुर्गों के प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो चीज़ें चलती हैं, कॉमन चीज़ें, उनके अलावा की और भी कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, उनके होने से क्या फ़र्क पड़ता है परिवार में, फैमिली में।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आज फिर लेट हो गए।
3: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से

0: उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

रॉय से ब्यूटीफुल ट्रैक, अंकित तिवारी की आवाज, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद, प्रोग्राम आशियाना, आप सुन रहे हैं मेरे साथ। आशियाना में आज बात सीनियर सिटीजन के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, लेकिन साथ साथ और भी कुछ जरूरी बातें हैं। सीनियर सिटीजन्स का, हमारे घर के बुजुर्गों का जो हेल्थ है वो हमारा प्राइम कंसर्न होता है, ऑब्वियसली हमेशा होता है, और कभी कभी हम उनके रूटीन में उनकी इस चीज को हम इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा जब हो जाता है तो फिर उनके रिटायर होने के बाद उन्हें सिर्फ हम आराम की, और पूरी तरह से आराम की ही सलाह देते नजर आते हैं, जो कि पूरी तरीके से ठीक नहीं है। आराम सिर्फ आराम के समय, लेकिन उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है, और खास तौर पर जब बुजुर्ग, जब सीनियर सिटीजन अपनी 60 या उससे ऊपर की उम्र तक पहुंच जाएं। रिटायरमेंट के बाद या बुढ़ापे की दस्तक के बाद ही उन्हें अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम बैठ गए तो समझिए कि बैठ ही गए। मशीन अगर बंद कर दी जाए तो कुछ समय के बाद उसमें जंग लग जाता है, तो इसलिए मशीन का जिस तरह से चलना हमेशा जरूरी होता है, उसी तरीके से इंसान का भी चलते रहना, फिजिकल एक्टिविटी करना, मूवमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और आमतौर पर हम लोग अपने बुजुर्गों को एक उम्र के बाद ज्यादातर आराम की और पूरे आराम की सलाह देते हैं, जो कि गलत है। बेहतर यह है कि उनके साथ हम वक्त बिताएं और फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हों, खास तौर पर उनकी इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक में हम उनका साथ दें, और वो फिजिकल एक्टिविटी में और भी चीजों में, घर की छोटी छोटी चीजों में उनको इन्वॉल्व करें, ना कि उनके बिस्तर पर ही, उनकी कुर्सी पर ही सारी चीजें, सारा सामान पहुंचाएं। तो ये इस तरीके से उनके हेल्थ के लिए, उनकी ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं, गलत है।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं।
1: और मैं आपका मित्र अजीत, आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
0: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
1: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
0: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
1: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
0: जी,
1: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
0: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
1: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
0: जी।
1: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे, भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
0: लेकिन श्रोताओं, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
1: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी।
0: जी।
1: फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था।
0: बिल्कुल।
1: और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
0: तो श्रोताओं, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
1: तो श्रोताओं, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
0: जी।
1: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा।
0: जी।
1: अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो, विचार तो अच्छा था लेकिन।
0: लेकिन एक नई समस्या सामने आई, वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
1: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओ, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
0: जी।
1: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
0: जी।
1: यही तो है नवाचार।
0: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
1: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
0: जी।
1: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
0: बिल्कुल।
1: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
0: जी। आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो नन्ही गेंद घूमती है और

0: और यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
4: चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाए हम अक्षर।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए, जरा सोचिए, सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
4: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
3: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
5: माँ, ये चिट्ठी।
3: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
2: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
5: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
2: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
5: अच्छा,
2: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
5: अच्छा,
2: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
3: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के

0: रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
1: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
0: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
1: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
1: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
1: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
0: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
0: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
1: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
0: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
1: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
0: लगभग 10,000 बार।
1: 10,000 बार?
0: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
1: अच्छा,
0: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
1: अरे वाह,
0: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
1: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
0: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे दो लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
1: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
0: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
1: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
0: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
3: श्रोताओं, आयुर्वेद एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाकर स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां, मालिश, योग, ध्यान, जीवन शैली, पोषण का महत्व बताया गया है। इनकी विस्तृत जानकारी के लिए आज का रेडियो डॉक्टर जरूर सुनिएगा। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर महेश व्यास को। आप डीन हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। तो डॉक्टर महेश, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
4: नमस्कार, सभी को नमस्कार।
3: आयुर्वेद के बारे में जो भी जानकारी आप चाहते हैं डॉक्टर महेश व्यास से आज आप पा सकते हैं। और आज का विषय

0: जो हमने खास तौर पर रखा है वो है आयुर्वेदिक वेलनेस टेक्निक्स, या आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य लाभ की तकनीकें बताई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, और ये तकनीक किस तरह से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती हैं, पहुंचा सकती हैं, ये सारी जानकारी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप भी आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी और विस्तृत रूप से चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम के साथ। सबसे पहले हम अपने श्रोताओं के लिए ये जरूर जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद, क्योंकि जैसा हमने बोला बहुत प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और बहुत पुरानी है, और भारत में इसकी जड़ें बहुत पुरानी और बहुत मजबूत हैं, तो इसके सिद्धांत क्या हैं?
1: जी बिल्कुल, आयुर्वेद जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति
0: जी।
1: और इसके अगर मुख्य सिद्धांत की बात करें तो आयुर्वेद में कहा गया समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, माने दोष धातु और मल ये हमेशा सम बने रहें, इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। और ये सम है तो इसका एग्जामिनेशन का तरीका जो है वो आयुर्वेद में कहा गया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधि है। अगर आपकी आत्मा प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, इंद्रियां प्रसन्न है, अगर किसी व्यक्ति को हम चेहरे से देखें वो एकदम बिल्कुल स्माइलिंग फेस देख रहा, खुश दिख रहा, मीन्स वो स्वस्थ है। कई बार व्यक्ति को हम देखते हैं कि उसके चेहरे से ही पता लग जाता, जैसे फीवर का पेशेंट आता उसकी आंखों को देख के लग जाता कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और कई लोगों का फेस देख के अपने को लग जाता कि ये एकदम बिल्कुल वेल नहीं है। तो आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में जो तीन दोष बताए वात पित्त और कफ, हमारे यहाँ सात धातुएं बताई है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, और तीन मल बताए हैं मूत्र पुरुष और स्वेद, ये प्रॉपर अगर इनका फंक्शन है तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो हमको हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे दोष धातु और मल समान मात्रा में रहें, सम स्थिति में रहें, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रह सके
0: जी। और यही तो उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का कि हमारा हर लिसनर स्वस्थ रहे, और इस जो ज्ञान के लिए जो आयुर्वेद से संबंधित है और जिस जो हमारे स्वास्थ्य की बात करता है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया, लेकिन बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे जो सोच रहे होंगे, उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि हमें तो ये तकलीफ है, क्या ये भी आयुर्वेद से दूर हो सकती है, क्या इसमें कौन सी तकनीक लगानी चाहिए। ये सारी जानकारी जो है हम चाहेंगे कि आप अगर पूछना चाहें तो जरूर पूछें, हमारी तरफ से हमें जो लगेगा वो प्रश्न हम जरूर करेंगे। तो आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल हमारे फोन लाइन्स के जरिए और हमारे मैसेज के जरिए आप जुड़ सकते हैं। एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, शुरुआत में एक प्यारा सा गीत, और उसके बाद हम लेंगे अपने श्रोताओं के फोन कॉल्स। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास हैं स्टूडियो में, डीन हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में, और डॉक्टर साहब हमें जानकारी देंगे आयुर्वेदिक वेलनेस टेक्निक पर। आयुर्वेद में स्वास्थ्य लाभ की जो तकनीकें हम लोग सुनते पढ़ते रहते हैं उसकी सही जानकारी आपको आज के इस रेडियो डॉक्टर के कार्यक्रम में जरूर मिल जाएगी। और बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं, फोन कॉल पर भी श्रोता वेट कर रहे हैं, तो क्या करें सर, पहले फोन कॉल की पहले मैसेज, पहले फोन कॉल? ठीक है, पहले फोन पे हमारे श्रोता जो वेट कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार मैडम
0: जी। जी नमस्कार, बताएं।
1: धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, आयुर्वेद तो बहुत महा एक समुद्र से भी ज्यादा गहरा है, इसके अंदर इतनी असीम चीजें समाई हुई है, एक प्रोग्राम में पूरी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटीज में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों दवाइयां एक साथ ले सकते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि दोनों दवाइयां डॉक्टर बहुत बता देते हैं यहाँ ले सकते हैं। और दूसरा एक ये है कि खान पान पे भी थोड़ा आप कार्यक्रम में थोड़ा रोशनी डालिएगा, जैसे रात के समय दही छाछ और जूस वगैरह नहीं लेते, दूध लेते हैं, इसके बारे में बताइएगा क्यों ऐसा, क्यों उसका क्या कारण है, बादाम छील के ही खाने क्यों चाहिए? और इसके एक चीज साथ में ये बताइए कि मकड़ी के दाने जिसको हर चीज जोस्टर बोलते हैं, आयुर्वेदिक में इसका क्या सही इलाज है कि नहीं है इसके लिए? क्योंकि मकड़ी के दाने ऐसे खतरनाक होते हैं कि आदमी को पूरा नसें पूरी हिल जाती हैं, दो दो साल हो जाते हैं उनकी नसों में अभी तक दर्द है। ऐसा कुछ आयुर्वेदिक में है कि जो दर्द ही ठीक हो जाए?
0: बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी, आपने बहुत सारे प्रश्न कर लिए, लेकिन हम धीरे धीरे इन प्रश्नों को शामिल करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे और श्रोता हैं जो अपनी अपनी समस्याओं के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप रेडियो पर ये कार्यक्रम सुनिए और कार्यक्रम के अंत तक आपको सारी जानकारी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच जाए। तो डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न जो था पहला वाला हम ले लेते हैं, डायबिटीज में जैसे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक क्या दोनों एक साथ ले सकते हैं, और मैं इसको एक्सटेंड कर दूं किसी भी और बीमारी में?
2: जी जी, सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहूंगा, इनने कहा था कि केवल एक कार्यक्रम से आयुर्वेद को वो नहीं कर सकते। हाँ। तो मैं इनको बोलना चाहूंगा कि आकाशवाणी की इस पूरी टीम ने रेडियो डॉक्टर 2021 से है, तो निश्चित रूप से पूरी टीम बधाई की पात्र है।
0: थैंक यू सर।
2: और इनका जो प्रश्न था डायबिटीज का, देखिए ऐसा है कि जहां तक कोशिश करना चाहिए किसी एक पैथी से हम ट्रीटमेंट करें।
0: अच्छा।
2: अगर आप आयुर्वेद में ले रहे हैं तो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लें, अगर आप एलोपैथी में ले रहे हैं तो एलोपैथी का ट्रीटमेंट लें। बहुत सारी डिजीज ऐसी है जिसमें एड ऑन इफेक्ट भी हम कर सकते हैं, मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कई बार हम कुछ ऐसी बीमारियां रहती है जिसमें हम रिफर कर देते हैं कि इस कंडीशन में आप एलोपैथी के पास जाइए, कई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आयुर्वेद में ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो जब तक डॉक्टर उनको नहीं कहे कि आप साथ में दूसरी मेडिसिन लीजिएगा, तब तक दो व्यक्तियों के पास जाकर के सलाह लेके अपनी इच्छा से कोई भी चीज शुरू नहीं करें, क्योंकि हर एक पैथी डिजीज का ट्रीटमेंट करने में समर्थ है। इसलिए आपको जिस पैथी पे ज्यादा विश्वास हो उसका ही प्रयोग करें, कि कई बार ड्रग इंटरेक्शन भी होता है।
0: अच्छा।
2: कि आपने दो मेडिसिन ली, उनका इंटरेक्शन दोनों टाइप का रहता है, कि कई बार हार्मफुल इफेक्ट रहता है और कई बार हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए चिकित्सक की सलाह से आप मेडिसिन लें। आयुर्वेद में भी डायबिटीज का अच्छा इलाज है, बिल्कुल आप डायबिटीज को डाइट से, लाइफस्टाइल से और मेडिसिन से कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो इसलिए मेरा उनसे यही कहना है कि आप चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही मेडिसिन लें।
0: जी जी। और जो इन्होंने बाकी और खान पान की संबंधित बातें की हैं वो जरूर हम इस कार्यक्रम में आगे लेते रहेंगे। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो
3: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार। हाँ जी,
3: मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी जयकिशन जी,
3: आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ।
2: नमस्कार जी।
3: मेरे तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पीलिया का इलाज आयुर्वेदिक में है? नंबर दो, जो आपके यहाँ आयुर्वेदिक में अगर कोई भी दवाई दी जाती है वो 90% शहद से खानी होती है, चाटनी होती है शहद लगा के, तो क्या शुगर का मरीज जो है वो शहद को इस्तेमाल कर सकता है? और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आयुर्वेद में एंटीबायोटिक भी होता है या एंटीबायोटिक नहीं होता? क्योंकि आप लोग टेस्ट करा के तो दवा देते नहीं है, जैसे एलोपैथिक कहता टेस्ट करा लो जी, पता चला कि नील आ गया, आप तो सिर्फ नर्व्स को देख के सब कुछ बता देते हैं कि भी आपको ये बीमारी है।
2: तो पहला उनका क्वेश्चन था पीलिया, जिसको अपन जॉइंटिस कहते हैं। और ये तो आयुर्वेद का मुख्य क्षेत्र है, आयुर्वेद में इसकी सफलतम चिकित्साएं हैं और कई औषधियां कल्प आयुर्वेद में बता रखे हैं, तो मेरा उनको यही कहना है कि अगर परिवार में किसी को भी पीलिया अगर है, आप निश्चित रूप से आयुर्वेद चिकित्सक के पास पहुंचे, और आयुर्वेद चिकित्सा में इसका बिल्कुल अच्छा इलाज है,

0: और आयुर्वेदिक औषधियाँ बिल्कुल इसके लिए, तो लीवर डिसऑर्डर्स जो होते हैं, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इन सब में तो आयुर्वेद का मैंने, ये तो मेन क्षेत्र है कि अपने अग्नि को प्रमुख मानते हैं। आयुर्वेद कहता है रोगा सर्वे भी मंदाग्नो, मैंने अग्नि का इन्वॉल्वमेंट जहाँ रहता है, तो इसलिए पीलिया के लिए आप निश्चित रूप से आयुर्वेद का जो है वो औषधियों का सेवन कर सकते हैं। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था
1: कि शहद के साथ एक एंटीबायोटिक की डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे कि क्या एंटीबायोटिक है इसमें?
0: हाँ, उन्होंने कहा था कि एक तो एंटीबायोटिक और दूसरा टेस्ट। देखिए टेस्ट तो हर पेथी में किया जाता है। हम डायबिटीज का व्यक्ति आता है, उसको बोलते हैं कि आपका ब्लड टेस्ट करवा के आइए, ब्लड शुगर कितनी है, खाना खाने के पहले की कितनी है, खाना खाने के बाद की कितनी है, HbA1c जो 3 मंथ का देखते हैं वो, और मेडिसिन देने के बाद में वापस उसका टेस्ट करवाते हैं कि उनका लेवल कितना है। तो आयुर्वेद भी टेस्ट वगैरह सब कुछ करता है, और उसी के आधार पर हम जो साइंटिफिक पेपर पब्लिश करते हैं उसका बेस ही वही है, तो इसलिए वो बिल्कुल ठीक है। तो एक तो आयुर्वेद में भी टेस्ट है, और दूसरा एंटीबायोटिक, देखिए ये एंटीबायोटिक एलोपैथी में होता है, हमारे यहां इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग मेडिसिन है, तो हम तो पहले ये करते हैं कि आपको व्याधि ही नहीं हो, डिजीज ही नहीं हो, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हम इम्यूनिटी के लिए बताते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में च्यवनप्राश दिया जाता है, च्यवनप्राश एक अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हम आंवले का प्रयोग करते हैं करीब करीब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन महीनों में आंवला ताजा मिलता है। अगर एक आंवला रोज लेते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो आपको कोई डिजीज की समस्या ही नहीं होगी। तो आयुर्वेद में एंटीबायोटिक के रूप में, हम एंटीबायोटिक उसका नाम नहीं देते, लेकिन रसायन है, कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग है, वो सब आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, उनका ही प्रयोग किया जाता है।
1: जी, इसीलिए शायद कहा जाता है आयुर्वेद इज अ वे ऑफ लाइफ, और इसमें प्रिवेंटिव या प्रिवेंशन पर आप ज्यादा जोर देते हैं। और प्रिवेंशन की बात करेंगे, प्रिवेंटिव क्या टेक्निक्स आप लोग अपनाते हैं उसकी भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब मैसेजेस भी बहुत आ गए हैं। सागर लिख रहे हैं हमको, 25 साल के हैं, विजयपुरा कर्नाटका से इन्होंने प्रश्न किया है हमसे कि प्लीज सजेस्ट सम वेज फॉर गुड एंड डीप स्लीप यूजिंग आयुर्वेदिक टेक्निक्स, आई एम स्ट्रगलिंग विद इट। तो निद्रा का भी बहुत महत्व है। और दूसरा इनका क्वेश्चन वही है जो हम, जिस पर हम आज पूरा कार्यक्रम ही कर रहे हैं, कि आप बताएं कि फिट एंड हेल्दी कैसे रह सकते हैं, और आयुर्वेदिक कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें फिट एंड हेल्दी रख सकती हैं।
0: तो इनका जो पहला क्वेश्चन है कि भाई नींद जो है, साउंड स्लीप कैसे होना चाहिए। आजकल जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वर्क का प्रेशर है, या कई प्रकार के जो लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, उनके कारण नींद डिस्टर्ब रहती है। और आयुर्वेद में 3 चीजें मुख्य बताई, एक आहार, एक निद्रा और एक व्यायाम। अगर आपकी नींद ठीक है तो आप दूसरे दिन जो भी आपको काम करना हो बड़े अच्छे से कर सकते हैं, और जिस दिन नींद डिस्टर्ब रही आपके कितने भी असाइनमेंट हो आप पूरा 100% आपका नहीं दे पाते।
1: बिल्कुल सही।
0: तो इसलिए अच्छी नींद लेना चाहिए, उसके लिए सबसे बढ़िया आयुर्वेद ने बता रखा है एक तो व्यायाम। अगर प्रतिदिन आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग के टाइम पे कुछ व्यायाम कर लीजिए, शाम के टाइम पे कुछ गेम, बैडमिंटन वगैरह, टीटी जो भी आप खेलते हो अगर थोड़ा सा वो कर लिया, मैंने शारीरिक श्रम आपका अगर बराबर हुआ है, रात को आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरा, नींद के लिए एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आयुर्वेद बताता है वो कहता है कि विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा सुपति मानव, माने हम कुछ न कुछ अगर सोचते ही रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। हमारा कि कल मैं क्या करूंगा, ये चीज है, इसको मैं कैसे फेस करूंगा, तो ऐसा कुछ न कुछ अगर दिमाग में चलता रहेगा तो नींद नहीं आती है। उसके लिए सबसे अच्छा आयुर्वेद कहता है मेडिटेशन। सोते टाइम आप आंख बंद कर लें, दिन भर की जो भी चिंता उन सबको भूल जाएं, और अच्छे से मेडिटेशन करें 5-7 मिनट के लिए, तो मेडिटेशन करने पर आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और कभी कभी नींद नहीं आना ये व्याधि के रूप में हो जाता है, तो उस कंडीशन में आयुर्वेद में शिरोधारा अलग अलग प्रोसीजर बता रखे, जो आज अपना मेन टेक्निक्स के रूप में आज का अपना पूरा शो है। तो इसमें हमारे यहाँ एक जो मेन टेक्निक अनिद्रा के लिए, इंसोमनिया के लिए, वो है शिरोधारा।
1: शिरोधारा,
0: और शिरोधारा चिकित्सालय में आके ही कर सकते हैं। तो उस कंडीशन, मतलब तो थर्ड स्टेज हो गई कि वहां तक भी अगर नींद नहीं आई तो आप चिकित्सक का परामर्श लें, और वो फिर शिरोधारा अगर कहते हैं तो कुछ मेडिसिन और शिरोधारा का प्रयोग करें। और एक और आयुर्वेद कहता है कि रात को सोते टाइम पे माहिष क्षीरम निद्रा जननानम, जैसे जो भैंस का दूध होता है, अगर रात को सोते टाइम, मैंने खाना खाने के 2 घंटे बाद में, अगर वो दूध पी के अगर आप सोते हैं तो आपको नींद जरूर आएगी। इसलिए हम जो स्टडी करते हैं बच्चे, उनसे बोलते हैं कि आप भैंस वाला दूध मत लीजिए, आप गाय का दूध पीजिए, तो आराम से रात में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको नींद आएगी। तो ये भी नींद लाने के लिए अच्छा है,
1: नींद
0: नहीं आएगी। जी जी, वो गुरु और लघु, वो थोड़ा ज्यादा गुरु होता है तो उससे नींद आती है, तो जिनको नींद नहीं आती है वो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं।
1: जी, आपने शिरोधारा की बात

0: आपकी डॉक्टर महेश, हम थोड़ा सा एक जानना चाहेंगे कि शिरोधारा अगर कोई लेना चाहता है, ये एक टेक्निक है और बहुत पॉपुलर टेक्निक है, तो इसमें कितने दिन तक उसको लेना होता है तो असर होता है कुछ इस तरह का होता है, और कितनी अवधि होती है, इसका ड्यूरेशन कितनी देर का होता है?
1: जी कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि सर 2 दिन से नींद ही नहीं आई। कई बार वो बोलते हैं कि रोज रात को बस 2 या 3 घंटे नींद आती है, बस उसके बाद खुल जाती, फिर नींद ही नहीं आती है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी कहना चाहिए कि उनकी अनिद्रा की कंडीशन ज्यादा है, ऐसे में शिरोधारा जरूरी है। और शिरोधारा करने के लिए हमारे यहाँ पर अलग अलग डिकॉक्शन है, क्वाथ है, क्षीर मतलब दूध की भी शिरोधारा करते हैं, तक्र से शिरोधारा करते हैं, कई प्रकार के डिकॉक्शन से करते हैं। तो व्याधि के मान से हम डिसाइड करते हैं कि इनको कौन से द्रव्य से शिरोधारा करना है और उनका स्टेटस देखते हैं कि कितनी सिवियरिटी है। अगर व्याधि ज्यादा क्रोनिक है, ज्यादा अगर दोष आदि बढ़े हुए हैं तो अधिक दिन तक करना पड़ती है, अदरवाइज एक वीक का जो ड्यूरेशन रहता है वो सामान्यता पर्याप्त रहता है कि उसके बाद में उनकी नींद जो है वो सामान्य अवस्था में आ जाती है।
0: और एक बार ठीक हो जाती है तो जरूरी नहीं है कि आप फिर लें,
1: जी
0: मतलब वो सामान्य हो गई,
1: बिल्कुल सामान्य हो गए तो उनको नींद अच्छी आने लग जाती है और फिर हम कुछ डाइट वगैरह उनको बता देते हैं कि इस डाइट का पालन करिए तो आपको बराबर नींद आती रहेगी।
0: जी जी, एक श्रोता वेट कर रहे हैं, समस्या सुन लेते हैं इनकी। हेलो
2: हेलो, नमस्कार शालिनी जी,
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार जी।
2: हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा बचपन में मुझे मेरे दादाजी यूनानी आयुर्वेदिक के ही वैद्य थे
1: जी।
2: तो मेरे को सारी बॉडी पे बहुत मोके हो गए थे, तो उन्होंने मेरे को अनार का रस और एक और दवाई भेजी थी, उससे मैं 5-6 दिन में ठीक हो गई थी
1: जी।
2: मेरे को याद नहीं है, अगर आप बता सकते हैं मेरे को कि उसके साथ क्या लिया होगा मैंने, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है
1: जी। आपको कब से प्रॉब्लम थी और उसमें क्या क्या होता था?
2: नहीं, मेरे को मोके नहीं होते हैं, जो मोच हो जाता है, मास आ जाता,
0: मस्से
2: अच्छा,
1: बिल्कुल
2: जी, जी। तो वो सारी बॉडी पे मैं बहुत छोटी थी तब,
1: जी जी जी।
2: तो उन्होंने जो मेरे को दवाई गांव से भेजी तो उससे मैं 1 हफ्ते में बिल्कुल क्लियर हो गया। और 2 मोके खाली मेरे एक निशानी के तौर पे मेरे गर्दन पे रह गए।
1: जी जी जी।
2: तो अगर वो मेरे को अनाप के रस याद है, बाकी नहीं याद की क्या सौंफ ज्वारिश का मुनी क्या दी थी
1: जी।
2: और एक मेरा और क्वेश्चन है,
1: हाँ जी,
2: कि तभी जोड़ों के दर्द के लिए, गाउट के लिए
1: जी,
2: हमारे घर में मजून सरंजा खाते थे, तो अब वो मीठी हो गई है, तो क्या अब भी उसका असर वही रहेगा जो पहले था?
1: जो आपका पहला प्रश्न था मस्से वाला, कई बार जो है ना पूरी स्किन पे, कई बार चेहरे पे, कई बार जो है वो शरीर के अलग अलग भागों में छोटे छोटे दाने जैसे निकल जाते हैं और उनके लिए ये एक स्किन का विकार है और इसके लिए आयुर्वेद में कई प्रकार की चिकित्सा है। और पहले तो जैसे कि आपने बताया कि हम 7 दिन तक वो दवाई लगे उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया, अभी तो हमारे पास में जो है वो अग्निकर्म की विधि है कि आप एक सिटिंग में आप अगर चिकित्सालय आए तो मैक्सिमम 2-3 मिनट का समय लगता है और हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये तो अभी और अच्छी टेक्निक आ चुकी है और उसके बाद में वापस होते भी नहीं है, तो इसको हम हमारे यहाँ जो है अग्निकर्म कहते हैं। तो अग्निकर्म की विधि है और आयुर्वेद में कई द्रव्य हैं कि जिनका उनके ऊपर लगाने से भी वो जो है समाप्त हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए एग्जैक्ट मैं ये नहीं बता सकता कि उन्होंने आपको क्या द्रव्य दिया होगा अनारस के रस के साथ में, क्योंकि कई औषधियां मतलब एक एक व्याधि के लिए सैकड़ों द्रव्य बता रखे हैं।
0: अच्छा।
1: कि जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा तो आपको यही एडवाइस है कि अगर आपको समय हो, आप कभी भी भारत सरकार का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उसमें आइए, मैक्सिमम 2-5 मिनट लगेंगे और हम उसको अग्निकर्म करके निकाल देंगे।
0: जी जी। और जोड़ों का दर्द के बारे में एक इन्होंने एक बताया था, तो उसका क्या है डॉक्टर साहब, कि अब वो मीठी हो गई है लेकिन उसका ये चाह रही है कि पता करना कि क्या वही इफेक्टिवनेस है उसकी?
1: देखिए, जो दवाई रहती है उनका प्रयोग करने का समय रहता है।
0: अच्छा।
1: कि उतने समय के बाद में अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वो काम नहीं करती है, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं ड्रग एक्सपायर जैसे हो जाती है। तो इसलिए जोड़ों के दर्द की काफी मेडिसिन है और आजकल जोड़ों का दर्द कई लोगों का वेट ज्यादा होता है उसके कारण होता है, अगर ये थोड़ा सा अगर वेट बढ़ा हो तो अपना वेट कम कर लें। कुछ चीजें खाने के कारण, जैसे रात के टाइम दही ले लिया तो भी वो हो जाता है, बारिश का मौसम है, बादल हो रहे हैं, उस समय अगर बाहर निकले और भीग गए तो भी जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, खट्टी चीजें जितनी भी है वो लेने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो पहले तो इन खान पान का ध्यान रख लें और आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन है, ऑयल्स का उपयोग है, तो उनका प्रयोग अगर ये करेंगे बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो मेरा तो उनको यही कहना है कि कोई भी औषधि अपने मन से लेने के बजाय आप चिकित्सालय में आए, चिकित्सक का परामर्श लें और हम जो मेडिसिन वहां से दें या आपको एडवाइस करें उसका प्रयोग करें
0: जी। तो हमारे

0: श्रोता जो हैं वो बहुत सारी समस्याओं के साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जबकि टॉपिक हमारा ये है कि आज हम चाह रहे थे कि आयुर्वेदिक टेक्निक्स पर ही ज्यादा बात करें, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो भी हमारा छूटे नहीं। तो पहले एक गाना सुन लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं। आप हमें फोन करते रहिए, मैसेजेस करते रहिए। हमारा विषय फिर से एक बार नोट कर लीजिए, हमारा विषय है आयुर्वेदिक वेलनेस टेक्निक्स, और आज हम उन टेक्निक्स पर बात करना चाहते हैं जो खासतौर पर आयुर्वेद में शामिल की जाती हैं अगर आपको किसी तरह की समस्या होती है। और डॉक्टर महेश व्यास हमारे साथ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास, डीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर साहब सुन लेते हैं गीत
1: जी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आयुर्वेदिक टेक्निक्स पे हम बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि वो इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन पर भी, मैसेज के माध्यम से भी। हम कोशिश करेंगे सबको शामिल करें, पर जितने हम कर पा रहे हैं, आप जरूर कार्यक्रम में बने रहिए और सुनते रहिए, क्योंकि जानकारी बहुत लाभकारी रहेगी आपके लिए।
1: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
0: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
0: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi@gmail.com पर।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ दोस्तों साक्षी मांडवाल और इस वक्त मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है शाबाब अनवर और हम लेकर आ गए आपके लिए ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। घड़ी में बज रहे इस वक्त दोपहर के 3:30 बजे और इस अपडेट की शुरुआत मैं एक निराशाजनक खबर के साथ करने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि विमेंस वर्ल्ड फाइनल के अंदर भारत की लोन रिप्रेजेंटेशन जो कि थी प्रणति नायक, उनसे हमारे सारी उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, प्रणति नायक्स मेडल्स होप इन द वुमेन्स वर्ल्ड फाइनल आर ओवर। इंडियाज लोन जिमनास्ट स्कोर 13.100 आफ्टर हर 2 अटेम्प्ट्स, बट स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंसेज फ्रॉम यू सियो जोंग, अनचंग ओक एंड डू सियो पुश्ड हर डाउन द स्टैंडिंग्स टू द 6th पोजिशन। उज़्बेकिस्तान्स 51 ईयर ओल्ड लेजेंड ओक्सना चुसोवितिना देन स्कोर 13.199 टू मूव अहेड ऑफ प्रणति एज वेल। तो इस खबर के साथ मैं यहाँ से अब अगली अपडेट की ओर इशारा कर रुख करूंगी और उसके पास हम चलेंगे शबाब के पास।
4: या आज बॉक्सिंग की मुक्केबाजी का जो मुकाबला है जिसमें भारत की भागीदारी थी वो समाप्त हो चुका है आज के दिन, और कुल कहा जाए कि आज का दिन जो भारतीय मुक्केबाजी में दिल तोड़ने वाला रहा है एक तरह से कहा जाए तो। सुमित, जैसा कि हम आपको अपडेट दे चुके हैं पहले, एक ऐसे समय पर घायल होकर बाहर हो गए जब वो जीत के करीब आते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो भारत की साक्षी चौधरी से काफ़ी उम्मीदें थीं क्योंकि उन्होंने शुरुआती राउंड में ओलंपिक पदक विजेता को हराया था, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, अच्छी शुरुआत भी उन्होंने की थी, लेकिन वो अपने मुकाबले को बचा नहीं पाई और 2-3 से मुकाबला हार गई। और जाते जाते

0: चाहते एक थोड़ी सी उम्मीद और आशा जरूर दे गई हैं, वो अपने खेल से नहीं बल्कि किस्मत से। परवीन हुड्डा को वाकओवर मिल गया था चूंकि राउंड शुरू होने से पहले ही। अगर देखा जाए तो तजाकिस्तान की मलिका नोजिशोवा को थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने वाकओवर दे दिया, जिसके कारण वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। तो एक उम्मीद बनी है कि क्वार्टर फाइनल में अब उन्हें हम खेलते हुए यानी कि परवीन हुड्डा को देख सकते हैं। तो साक्षी चौधरी की बात अगर की जाए तो मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई। उन्हें कजाकिस्तान के मुक्केबाज आलुआ बालिकम बोवा ने 3-2 से पराजित किया। तो ये मुक्केबाजी में आज तक का सफर था भारत का।
1: जी, और बॉक्सिंग के अंदर एक स्लाइट करेक्शन करके आपके पास वापस आती हो कि वेमेन 65 केजी प्रिलिमरी राउंड ऑफ 16 में भारत की परवीन को वॉकओवर जरूर मिला, लेकिन वो तजाकिस्तान की मलिका नोजिमोवा थी, जिसकी वजह से हमारी भारत की बॉक्सर परवीन ने अपनी एंट्री अब क्वार्टर फाइनल्स के अंदर सिक्योर कर ली है। गुड न्यूज कमिंग ओवर देयर थैंकफुली इन सम फॉर्म फॉर द इंडियंस। लेकिन हम यहां से आगे बढ़ेंगे, अगली खबर में आपके लिए दोस्तों लेके आ रही हूं स्क्वाश की दुनिया में, जहां जोशना चिनप्पा एंड वी संतिल कुमार सिक्योर अ हार्ड 2-0 victory over their own fellow Indians Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. दूसरी तरफ अगर बात करें तो Anahat Singh also won her women's singles round of 16 3-0 to qualify for the quarterfinals, defeating her opponent 11-4, 11-5, 11-7. India also made a bright start in squash in men's singles round of 16 with Abhay Singh defeating Sri Lanka's Ravindu Laksari to seal the match 3-0 in his favour. On the adjacent court, we also saw Veer Chotrani facing a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiva. The final score of the match was 3-2 in favour of India's Veer Chotrani, the score line being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. And finally, Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Oh Yong Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. So happy days, smiling days for now for the Indians in the world of squash, Shabab.
0: जी बिल्कुल, और लेकिन सब अभी तक आज का जो सबसे ज़्यादा जो खुशखबरी दी है वो निश्चित रूप से हम फिर दोहराना चाहेंगे, जो हर अपडेट में हम उनका नाम ले रहे हैं, और वो है रोशबीना देवी। यानी वुशु में आज का दिन बहुत अच्छा रहा भारत के लिए। उम्मीद तो हालांकि गोल्ड मेडल की जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया महिलाओं के 60 किलोग्राम जो सांडा इवेंट होता है उसके फाइनल में। चीन की झांग शिया आयुष 0-2 से हालांकि वो हार गई, लेकिन एक खास बात यह है कि रोशबीना ने एशियाड में लगातार तीसरा मेडल ये जीता है, ये महत्वपूर्ण है, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला वुशु खिलाड़ी बनी है।
1: जी, एंड नाउ ब्रिंगिंग यू सम न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग, इन व्हिच इन वुमेन सेबर इंडिविजुअल श्रेया गुप्ता रिसीव्ड अ बाय इन द राउंड ऑफ 32 एंड लेटर लॉस्ट 6-15 वर्सेस जुआन हायुंग ऑफ कोरिया इन द टेबल ऑफ 16 टू फिनिश 11th ओवरऑल। वहीं अगर कबड्डी की बात कर ले तो एज वाज एक्सपेक्टेड द चाइनीज ताइपे टीम वाज नो मैच फॉर इंडिया इन द फाइनल ग्रुप ए गेम एंड थेरबाय इंडिया सिक्योर्ड अ 37-21 इजी विन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स एज द टॉप रैंक टीम। और इसके साथ ही कबड्डी में भारत ने अपने लिए एक मेडल तो तय कर ही दिया है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए और देश के लिए भी। दोस्तों, वी आर नाउ गारंटीड अ मेडल इन मेंस कबड्डी। शबाब
0: जी हाँ बिल्कुल
1: जी, ओके, एंड इसके साथ ही आई विल गिव अ क्विक रैप अप बिफोर वी से गुड बाय ऑन द मेडल टैली आल्सो। मेडल टेबल पर भारत की पोजीशन अभी 14th है। कुल मिलाकर भारत के पास दोस्तों इसमें 15 मेडल्स है, जिसमें से

0: आया है, लिखने वाले हैं पवन, उम्र है 31 ईयर्स, सोनभद्र में रहते हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार। मेरे दो प्रश्न हैं। घुटनों का ग्रीस या लिक्विड बढ़ाने के लिए क्या औषधि होती है आयुर्वेदिक उसमें? साथ में मैं टेक्निक भी जानना चाहूंगी आप जैसे बता रहे हैं, और बाल इनके बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, उसके लिए भी कोई उपाय बताएं, और मैं अभी अविवाहित हूं ये भी बताया उन्होंने।
1: देखिए ऐसा है कि घुटनों का दर्द जो है ना वो अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो प्रतिदिन व्यायाम करते रहें, केवल एक ही जगह पर बैठे हैं तो उसके कारण होता। तो मेरा उनको कहना है कि तो एक्सरसाइज करते रहें, और घुटनों में अगर उनको कई बार जो है ना खड़े होते हैं बैठते तब कटकट की आवाज आती है तो समझ लीजिए कि उनके इसमें जो है ना स्नेह की कमी हो गई है। तो वैसी अवस्था में हम जानू बस्ती करवाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो आयुर्वेद में जानू बस्ती की टेक्निक, मैंने एक्सटर्नल मेडिसिन है इसमें ये नहीं है, तो उसमें जो नी का एरिया है उसके ऊपर हम एक रिंग के माध्यम से उसमें कुछ आयल का प्रयोग करते हैं और कुछ समय तक आयल उसमें भरा रहता है। तो मैं इनको भी ये कहना चाहूंगा कि अगर इनको ये है तो आप चिकित्सालय में आए, चिकित्सक का परामर्श ले, और उसके लिए हम जानू बस्ती का प्रयोग करेंगे और उससे उनको ठीक हो सकते हैं। अपने मन से कोई भी मेडिसिन नहीं ले।
0: जी जी। और दूसरा इन्होंने एक चीज और पूछी थी डॉक्टर साहब कि बाल झड़ रहे हैं, इसके बारे में भी कोई ऐसी टेक्निक है आपके आयुर्वेद में?
1: देखिए अभी इनने कहा कि जैसे इनके अभी शादी नहीं हुई है, मीन्स इनकी अभी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होगी,
0: 31 लिखा है
1: जी, 31 ईयर्स के हैं। तो इसमें मुख्य कारण जो रहता बाल झड़ने का, एक तो गर्म चीजों का ज्यादा प्रयोग करना, गर्म चीजों में रेड चिली है, ज्यादा स्पाइसी खाना है, पिकल्स का बहुत उपयोग करना है, साल्ट का उपयोग बहुत करना है। तो मैं इनको कहना चाहूंगा एक तो नमक का उपयोग कम करें, अचार का उपयोग कम करें, गर्म चीजें कम खाएं, तो इससे बाल झड़ना बंद होंगे। और आयुर्वेद जो है वो कहता है कि एक तो आंवला का प्रयोग करें, आप आंवला करेंगे तो आंवला शीत वीर्य है और आंवला हेयर्स के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो वो झड़ना रोकेगा और बालों की ओर ग्रोथ बढ़ाएगा। और साथ में थोड़ा सा डाइट का पूरा ध्यान रखें, मतलब शरीर को अगर न्यूट्रिशन बराबर मिल रहा है, बराबर ऋतुफल का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो ये कहीं डिफिशियंसी जो होती है ना उसके कारण ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो मेरा ये कहना है ऋतुफल का सेवन करें और डाइट का ध्यान रखें, नमक आदि का प्रयोग कम करें, चाय काफी बिल्कुल कम लें, अगर वो किसी प्रकार का टोबैको या वो लेते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दें, तो निश्चित रूप से इससे उनको
0: निजात। खान पान और लाइफ स्टाइल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: बहुत महत्वपूर्ण
0: जी। बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं डॉक्टर साहब। यशपाल जी हमें लिख रहे हैं द्वारका से, दिल्ली से, कि नमस्कार टू माय फेवरेट दोस्त शालिनी मैम एंड डॉक्टर साहब, वेरी नाइस टॉपिक, प्लीज एडवाइस ऑन आयुर्वेदिक डिटॉक्स एंड आयुर्वेदिक फेस मसाज।
1: जी देखिए आयुर्वेद में डिकॉक्स करने का मतलब यह होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो हम डाइट वगैरह लेते हैं, कई प्रकार के पेस्टिसाइड उसमें प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के जो आजकल एग्रीकल्चर है उसमें कई प्रकार के यूरिया और उन सब का यूज करते हैं, तो इनके कारण शरीर में कई प्रकार के विष रहते हैं। तो उन टॉक्सिन को दूर करने के लिए आयुर्वेद में प्यूरिफिकेशन मेथड है और उस मेथड को हम बोलते हैं पंचकर्म। पंचकर्म के माध्यम से, और आयुर्वेद तो यहां तक कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति भी, ये कंडीशन तो वो है कि कुछ ना कुछ अपने को डिजीज प्रारंभ हो जाती है तब हम पंचकर्म करवाने आते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ रहते हुए साल में तीन चीजें, एक तो ये जो अभी समय चल रहा है ये सबसे अच्छा समय है विरेचन का, पित्त का निर्हरण करने का, वसंत ऋतु जब प्रारंभ होती है फरवरी मार्च में वो सबसे अच्छा समय रहता है कफ को दूर करने का, वमन करने का, और बारिश का मौसम जो है वो वात का शमन करने के लिए बस्ती का। तो नियमित रूप से अगर हम वमन, विरेचन और बस्ती शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में, इनमें अगर इनका प्रयोग करते रहे तो हम पूर्णतया स्वस्थ रहेंगे, हमको कोई व्याधि नहीं होगी, क्योंकि व्याधि उत्पन्न वात पित्त और कफ करते हैं। तो ये करने के लिए एक तो अपने को चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा चिकित्सालय में, तब हम कर सकते हैं। बाकी वमन और विरेचन में कई बार क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन आदि है तो हम परगेटिव कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, तो अपनी इच्छा से कुछ भी लेने के बजाय चिकित्सक की सलाह लेकर के किस सीजन में वमन कराना है, किस में विरेचन कराना है और कब पस्ती का प्रयोग करना है, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहेगा।
0: जी, और यही बात हमें पूछी भी है हमारे एक श्रोता ने, पंचकर्म के अंतर्गत विरेचन टेक्निक द्वारा पेट की कौन कौन सी समस्याएं दूर होती हैं और इसको करवाने से कोई दिक्कत तो नहीं होती है, क्या ये सुरक्षित है? मनोहर लाल गांधी जी ने लिखा है चाणक्य चौक गाजियाबाद से, तो आप यही अभी बता रहे थे,
1: बिल्कुल,
0: तो लगभग यही प्रश्न है, तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया। और एक और हमारे पास हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, पहले इनको सुन लेते हैं, मैसेजेस तो बहुत हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते
2: मैम, मैं मेरठ से गीता बात कर रही
0: हूँ। गीता जी, हाँ जी, हाँ जी।
2: मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो मतलब जैसे मुझे नींद कम आ रही है आजकल,
0: नींद का तो डॉक्टर साहब ने बताया,
2: दर्द बहुत है जैसे साइडों में,
0: हाँ

0: में दर्द रहता है
1: बराबरों में और इतना दर्द है मैम के उसकी वजह से फिर मुझे और भी ढंग से नींद नहीं आ पा रही है।
0: जी जी जी।
1: एक तो इसके बारे में मुझे जानना था, दूसरी बात और एक ये जानना था कि जैसे कि मेरे पेट पे जैसे प्रेगनेंसी के दौरान निशान से हो जावे वो बहुत ज्यादा हो गए, तो मैं जानना चाहूंगा अगर मुझे इसके बारे में कोई उपचार मिल जाए।
2: बिल्कुल, देखिए जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया था प्रेगनेंसी वाला, प्रेगनेंसी के बाद में जो बर्थ मार्क्स हो जाते हैं तो उसके लिए बिल्कुल आयुर्वेद चिकित्सालय में आए, कई प्रकार के लेप हैं उनका प्रयोग करने से वो जो आपके मार्क्स हैं वो कम हो सकते हैं। और पहला आपका क्वेश्चन निद्रा का था, देखिए नींद अगर नहीं आएगी तो हेडेक होगा ही, तो आप बिल्कुल प्रयास करें कि आपको नींद अच्छी आए और उसके लिए बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहिए। आप किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लें, गुस्सा कम करें, अगर आप क्रोध करते हैं चिड़चिड़ापन रहेगा तो भी नींद नहीं आएगी। खाने पीने में ध्यान रखें, तो अपनी डाइट को संतुलित रखें। कुछ अगर आपको रात को सोते टाइम कई बार जैसे बिस्तर पे 2 घंटे तक आप सोए रहे तब तक भी नींद नहीं आती है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, तो नींद अगर अच्छी आएगी तो आपको सर दर्द बिल्कुल नहीं होगा। और ये सब करने के बाद भी नहीं होता है तो एक बार आप चिकित्सक के पास आएं, हम उसके लिए आपको औषधि जरूर बताएंगे।
0: जी, और शिरोधारा भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसके लिए हेल्प कर सकती है। एक और श्रोता है लाइन पर, हेलो।
3: जी, मेरा नाम फारूक अहमद है, मैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से बात कर रहा
0: हूं। जी जी फारूक जी बताएं।
3: मैंने आज आपका प्रोग्राम पहली दफा सुना और मुझे लगा कि मेरे संबंधित आज टॉपिक है, इसलिए मैं आज आपके साथ कुछ अपने सवाल शेयर करना चाहता हूँ।
0: बहुत अच्छा किया फारूक जी, और इसी तरह से आप रोज अब सुनिए हमारे कार्यक्रम को, डेली ये कार्यक्रम आता है 3 से 4 बजे और अच्छा है आप इस फैमिली के साथ जुड़ गए। जी
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि मेरी नाक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है खासकर सर्दियों में, जो ही सर्दी आ जाती है फिर हमें उस दौरान ज्यादातर वो ड्रॉप्स डालना पड़ता है तब हमारी नाक खुली रहती है, नहीं तो अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है या मौसम ठंडा पड़ जाता है तो हमारी नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। कई लोगों ने कहा था कि आप इसके लिए सर्जरी करवाओ, लेकिन फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप आयुर्वेदिक का कोई इलाज अपना लो तो आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं डॉक्टर साहब की इस मामले में सलाह चाहता हूँ। और दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि काफी देर तक मुझे नींद नहीं आती, तकरीबन 1 बजे के बाद रात को मैं सो पाता हूँ और फिर सुबह सवेरे मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो इस वजह से मेरा दिन पूरा खराब जाता है।
0: ठीक है फारूक जी, नींद के संबंधित तो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, शायद आप फोन कॉल लगा रहे थे नहीं पता चला आपको, तो डॉक्टर साहब से हम कहेंगे जरूर वो रिपीट कर दें। लेकिन ये नाक बंद होने वाली जो समस्या डॉक्टर साहब, और कफ कोल्ड मुझे लगता है मिली जुली होगी क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने कफ कोल्ड की समस्या के बारे में भी हमें लिखा है, तो पहले ये जवाब दे दें, मैं उनके नाम पढ़ लूंगी बाद में।
2: देखिए प्रायः कई लोगों को जो है बचपन से ही रहता है कि बार बार थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, कभी पानी में बारिश में भीग गए या कभी ठंडी हवा लग गई तो उनको स्नीजिंग छींके आना शुरू होता है और उनको जो है वो सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, जिसको अपन कहते हैं भाई सर्दी उनको हो गई। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो एकदम बारिश अगर हो रही है तो भीगे नहीं, और खास तौर से गुनगुना पानी जैसे गर्म पानी है अगर उस समय गर्म पानी पिए, और आयुर्वेद में एक ऑयल आता है जिसको अपन बोलते हैं अणुतेल, अणुतेल सामान्य व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है, और हमने तो स्वास्थ्य रक्षा किट बनाई थी अखिल भारतीय आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने और सभी व्यक्तियों के लिए हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था कि उसका प्रयोग कर सकते हो, तो विशेषकर सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में अगर नाक में 1-2 बूंद हम अणुतेल का डालें, और प्राय अणुतेल तो एक मेडिसिन है, अगर घर पे वो नहीं हो तो आप खास तौर से सरसों का तेल अगर हो, तिल का तेल अगर हो, तो उस तेल को केवल लास्ट फिंगर जो है उसको टच करके और थोड़ा सा नोज में लगा लें बस, तो आपको सर्दी भी नहीं होगी। और सर्दी अगर है तो नींद नहीं आती है क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है, तो एक तो सर्दी का ध्यान रखें, और नींद अगर नहीं आती तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में सबसे अच्छी टेक्निक है शिरोधारा, और श्रीनगर में भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय है तो वहां सेंटर पर जाकर के भी शिरोधारा आदि करवा सकते हैं, और साथ में अगर नींद के कारण कई बार क्या चाय दिन भर में अगर ज्यादा पीते हैं उसके कारण भी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, तो उन चीजों को नहीं ले, गुस्सा आदि नहीं करें, शांत रहें, और आहार में डाइट में अगर घी का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं तो नींद अच्छी आती है। मतलब गुरु पदार्थ जो मीठे पदार्थ रहते हैं ना, अगर आपको ब्लड शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो आप स्वीट का उपयोग करिए भोजन में, जैसे कुछ भी मिष्ठान बनाया है तो वो चीजें भी आपको हेल्पफुल रहती है, मतलब डाइट भी हेल्प करती है नींद के लिए। पर ये सब चीजों के लिए एक बार चिकित्सक को बता के उनकी सलाह लेकर के फिर शुरू करें।
0: जी जी, इसी तरह से जो मैंने बताया कि कफ कोल्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं डॉक्टर साहब, तो लगभग इसी तरह का है इसमें, जैसे आपने बताया खान पान में बदलाव, या कोई ऐसी एक और तकनीक आप बता सकते हैं? जैसे भारती ने लिखा है बेंगलोर से, आई हैव कफ एंड कोल्ड फ्रॉम पास्ट वन वीक और आई एम ड्रिंकिंग हॉट वाटर ऑल्सो, आपने बताया गर्म पानी पीना, मेडिसिन भी लिए है पर कफ नहीं जा रहा है और मैं इसी कारण सो भी नहीं पा रही हूं, तो इनका वो जो गर्म पानी वाली तो ये अपना चुकी हैं, पर आपने कुछ दवाइयां भी बताई या वो एक अड़ू तेल वाला बताया।
2: इनको एक्चुअली दो चीजें, इनको कफ भी और कोल्ड भी है, तो कफ अगर बड़ा हुआ है तो गर्म पानी बहुत अच्छा काम करेगा, साथ में उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके अगर ये गरारे करें तो कफ से इनको राहत मिलेगी और ये तेल का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। साथ में मेरा इनसे कहना है कि ठंडी चीजें, मतलब जिनका स्वभाव शीत होता है, उन चीजों का प्रयोग कम करें। जैसे कई बार हम फ्रिज में रखी हुई कोई चीज ले लेते हैं तो उसके कारण तुरंत कफ को, तो कफ कोल्ड वाले व्यक्तियों को जिनको सर्दी है खांसी है उनको ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन चीजों को हम गर्मी के मौसम में यूज करते हैं उनका स्वभाव शीत रहता है, और जिन चीजों का अपन सर्दी के मौसम में खाते पीते हैं वो उष्ण गुण वाली रहती है, तो शीत गुण वाली चीजों का प्रयोग ये कम करें। जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड कॉफी है, फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीजें, इनका प्रयोग नहीं करें। इनकी जगह आप जो है वो गर्म चीजों का प्रयोग करें तो उनके लिए अच्छा है।
0: जी, हमारे एक श्रोता है डॉक्टर साहब, उन्होंने सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और जानना चाहते हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। श्याम मित्तल जी हैं, 74 इयर्स, रोहिणी में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि डायबिटीज में रोटी को नरम करने के लिए मैं आटे में खपली नाम का वीट मिक्स करता हूं, इससे मेरी इंसुलिन मात्रा कम हुई है, तो क्या ये ठीक है, कहीं से साइंटिफिक है?
2: देखिए, हम तो हमेशा ही कहते हैं कि केवल गेहूं की रोटी लेने के बजाय उनको मिक्स ग्रेन जो रहते हैं, जैसे जो है उसको थोड़ा सा उसमें ले लें, बाजरा है, ज्वार है, चना है, इनको मिक्स करके ले, तो केवल गेहूं के बजाय आप अगर दूसरे ग्रेन को, रागी का उपयोग कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से अगर ये लेने से इनको अगर लाभ मिल रहा है, इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो गई है, तो निश्चित रूप से आप इनको प्रयोग कर सकते हैं,
0: इसमें बुराई नहीं है, अच्छा ही है।
2: बिल्कुल, हम तो केवल डाइट के द्वारा भी डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं कि आप डाइट को ऐसा चेंज कर दीजिए, अगर स्टार्टिंग में जिनने मेडिसिन लेना शुरू नहीं किया हो, फर्स्ट बार जिनको देखा है कि डायबिटीज ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी, बीपी के लिए भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं डॉक्टर साहब, की बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, नाम मैं बाद में पढ़ दूंगी, तो बता दीजिए।
2: ब्लड प्रेशर भी आजकल बहुत समस्या है और कई लोगों को थोड़ा सा भी कुछ होता है, होता है, एंग्जाइटी होती है, तो पल्पिटेशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तो खान पान में साल्ट का उपयोग थोड़ा कम करें। जो लोग नमक का उपयोग ज्यादा करते हैं ना, कई बार हम पूछते हैं उनसे कि आप नमक ज्यादा लेते, तो बोलते नहीं नमक तो मैं सामान्य लेता हूं, फिर उनसे अगर सुबह से शाम तक पूछें तो बोले सुबह कोई फ्रूट्स लेता हूं उसके ऊपर थोड़ा सा साल्ट डाल लेते हैं, कभी खीरा या ककड़ी लिया उसके ऊपर कुछ साल्ट डाल लिया, दिन में शाम के टाइम पर थोड़ा सा कुछ चिप्स ले लिया, अगर कभी कुछ जो फास्ट फूड वगैरह हैं, पिज्जा की जो स्लाइड लेते हैं उसमें जितना नमक रहता है, तो व्यक्तियों को दिन भर में अगर हम काउंट करें तो उनका साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जिनको भी ब्लड प्रेशर है उनको मैं कहना चाहूंगा ऊपर से नमक ले ही नहीं, जो खाने में डाल रखा बस उतना ही नमक का प्रयोग करें, फ्रूट्स का उपयोग करें, जैसे अनार जो है वो हृदय के लिए बहुत बढ़िया है।
0: अच्छा।
2: तो जिनको भी ब्लड प्रेशर है वो दिन में अनार का जूस ले लें या अनार के दाने जो है उनका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रूट्स जो है जैसे पपीता है, इनको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, जब भी थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहा, हेडक शुरू हुआ, समझ लो कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो वो डाइट ऐसी लें कि जो कॉन्स्टिपेशन नहीं बढ़ाती हो, जैसे मैदे में भी डीप फ्राई की हुई जो चीजें हैं, कचौरी, समोसा, ये चीजों का उपयोग बिल्कुल कम करें, सिंपल खाना घर का लें, फ्रूट्स का उपयोग करते रहें, और उसके बाद भी ऐसा है एक बार चिकित्सक को जरूर बताएं, आपके हृदय की जांच करवाएं, वो फिर एडवाइस करेंगे अगर कोई मेडिसिन देना है तो।
0: जी बिल्कुल सही, एक श्रोता वेट कर रहे हैं। जी जी आइए बताइए।
4: जितेंद्र जयपुर से।
0: जी जितेंद्र जी
2: नमस्कार।
4: अच्छा सर, जैसे एलोपैथिक में हर एक डिपार्टमेंट होता है, जनरल मेडिसिन का, हार्ट का अलग और स्किन का अलग, तो ऐसा क्या आयुर्वेदिक में है और नहीं है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, पहला प्रश्न तो ये है, और लीवर को ठीक रखने के लिए क्या क्या चीज खाना चाहिए आयुर्वेदिक के हिसाब से?
2: तो आपके दो क्वेश्चन थे, पहला तो कि क्या आयुर्वेद में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। देखिए, आयुर्वेद आज से 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और जब वो प्रारंभ हुआ था तो 8 ब्रांच के साथ प्रारंभ हुआ था। मैंने शुरुआती आयुर्वेद की 8 ब्रांचों से हुई थी और आज अगर देखें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हमारे पास 42 डिफरेंट स्पेशलिटी है। अलग अलग सबकी अलग अलग ओपीडी, कैंसर की अलग ओपीडी है, अर्थराइटिस की अलग ओपीडी है सबकी, तो इसलिए आयुर्वेद में अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग डिपार्टमेंट है और पूरा उस पर शोध होता है और बराबर ट्रीटमेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये था। दूसरा क्वेश्चन आपका जो था
0: लिवर,
2: उसमें आपने लीवर का बोला, आयुर्वेद में लीवर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो लीवर

में एक्चुअली क्या कई प्रकार की व्याधियां होती हैं कि भाई आपका SGOT बढ़ा हुआ है या SGPT बढ़ा हुआ है, जिसको आप सामान्य रूप से बोलते हैं पीलिया अगर हो गया है, या अलग अलग व्याधियां। तो लीवर में सभी प्रकार की जो व्याधियां होती है उनका आयुर्वेद में अच्छा ट्रीटमेंट है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जयपुर में भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भारत सरकार का बना हुआ है, आप वहां जाकर के बता सकते हैं। कभी आप दिल्ली आए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आइए, हमारे यहाँ लीवर के लिए स्पेशल OPD है। तो जो भी आपकी जांच है उनको साथ लेके आइए, उसके मान से हम आपका बिल्कुल सफल ट्रीटमेंट करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक टेक्निक्स पर और प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब, सोनू दिल्ली से लिख रहे हैं चांदनी चौक से, कि क्या आयुर्वेदिक कोई सर्वाइकल के इलाज के लिए भी कोई ऐसी चीज है कि जो आयुर्वेद में है जो हमें फायदा दे सके?
1: जी, आजकल क्या कि हमारी लाइफ स्टाइल के कारण सर्वाइकल के बहुत केस आते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं। और उसका मेन कारण एक तो ट्रेवलिंग जो रहती है ना, ट्रेवलिंग के कारण मतलब प्रॉपर जितना स्लीपिंग होना चाहिए, जितनी नींद होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। हमारे कुछ काम उस टाइप के अगर रहें कि जो खड़े रह करके चलने फिरने के काम ज्यादा हैं, तो उन चीजों में थोड़ा सा रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए। और इसके लिए आयुर्वेद में टेक्निक है अभ्यंग की। तो आयुर्वेद में कई प्रकार के ऑयल्स रहते हैं अलग अलग, जैसे बैक पेन है, नी पेन है, सर्वाइकल का पेन है, तो इन सब के लिए अलग अलग ऑयल हैं। उस ऑयल की हल्के हाथ से मसाज करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में अभ्यंग एक टेक्निक या थेरेपी है। और आयुर्वेद तो यहां तक कहता है अभ्यंगम आचरेत नित्यम, रोज अभ्यंग करना चाहिए। और पहले हमारी दिनचर्या में था कि हम स्नान से पहले अभ्यंग करते थे, और अभ्यंग से पूर्व हम थोड़ा सा अभ्यंग करते थे ऑयल के साथ में, तो ना तो स्किन वाली कोई प्रॉब्लम होती थी। और ये जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इसमें आयुर्वेद के मान से जो मेन दोष इन्वॉल्व होता है वो है वात दोष। और वात दोष की सबसे अच्छी चिकित्सा जो है वो अभ्यंग है। तो सर्वाइकल वालों को अब तो चिकित्सालय में जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं वहां पर पंचकर्म सेंटर में अभ्यंग की पूरी व्यवस्था रहती है। तो मेरा उनसे यही कहना है, आप चिकित्सालय जाएं, चिकित्सक को बताएं, और उनको बताने के बाद में वो जो डिसाइड करेंगे उस आयल से वो अभ्यंग आपका करेंगे और औषधि दे देंगे, तो बिल्कुल सर्वाइकल से आपको निजात मिलेगा।
0: और अपने से भी कर सकते हैं फिर बाद में इसको, जैसा आप कह रहे हैं कि
1: जी,
0: पहले किया जाता था,
1: बता देंगे उसको आप घर पे भी
0: कर सकते हैं। हमारे श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो जी, जी बताइए।
2: मैम डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: हैदराबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम मधु गुप्ता है, मैं 55 इयर्स की हूँ। सर मेरे को ना थोड़ी डायबिटिक की ये प्रॉब्लम आती है कि मेरा फास्टिंग और पोस्ट वाला सही आता है 110 अराउंड वो 145, लेकिन HbA1c है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है, कभी 6.7 6.5। मैं डाइटिशियन से मिली थी तो उन्होंने मेरे फ्रूट सारे बंद करा दिए। अभी आप कह रहे थे फ्रूट लेने चाहिए, तो क्या मुझे लेने चाहिए या नहीं?
1: देखिए, सामान्य अवस्था में व्यक्ति को रोज फ्रूट्स वगैरह लेते रहना चाहिए, पर जब डायबिटीज का व्यक्ति है तो हम उसको सबसे पहले कहते हैं कि आपको आम है, चीकू, बनाना, ग्रेप्स, इन चीजों को बंद रखना चाहिए। आपके लिए सबसे बढ़िया फ्रूट है गुआवा, जिसको अपन अमरूद बोलते हैं, अमरूद आपके लिए बहुत अच्छा है, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। पपैया का सेवन कर सकते हैं, कीवी का उपयोग कर सकते हैं। तो हर एक व्याधि के लिए कुछ फ्रूट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप डाइट के द्वारा भी, लाइफस्टाइल के द्वारा भी, मॉर्निंग वॉक करके और

0: इन अमरूद आदि का प्रयोग अगर करें।
1: रागी की रोटी भी लेती हूँ मैं, बहुत
0: बिल्कुल
1: हेल्थी है, उसे
0: जी
1: पसंद
0: जी
1: नहीं हो रही मैं 1 साल से, लेकिन फिर मेरा अप डाउन हो जाता है और मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अश्वगंधा बोला है, क्या मैं वो ले सकती हूँ?
0: देखिए ये तो और भी उन्होंने जो साइन सिम्टम्स देखे होंगे उस मान से मेडिसिन एडवाइस की होगी, तो उसके लिए तो आप चिकित्सालय में आ सकते हैं, फरीदाबाद के पास में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है बदरपुर में, आप वहां के दिखा सकते हैं। तो मेडिसिन का तो वो हो गया, लेकिन आप थोड़ा डाइट और लाइफ स्टाइल पर ध्यान रखिए। मॉर्निंग में थोड़ा मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, रात को टाइम पे सोने की कोशिश करिए।
1: जी
0: जी बिल्कुल, और लंच और डिनर का टाइम फिक्स कर लीजिए कि लंच जो है दोपहर में जब भी करते हैं रोज का टाइम फिक्स, और रात को डिनर सूर्यास्त के टाइम तक अगर आप कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा लेट नाइट करते हैं तो भी उसका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, तो इनका ध्यान रखें और एक बार चिकित्सक को बता दें।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और डॉक्टर साहब ये एक हमारे पास प्रश्न आया है पुरुषोत्तम पाटिल जी ने लिखा है जलगांव महाराष्ट्र से, कि कॉन्स्टिपेशन और हेमरॉइड्स इसके लिए भी कुछ है क्या आयुर्वेद में किया जा सकता है?
0: बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन अगर कंटिन्यू रहता है तो पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मेरा इनको यही कहना है कि थोड़ा सा ध्यान रखें कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, और कॉन्स्टिपेशन नहीं हो उसके लिए अपने पास बहुत सारे उपाय हैं। जैसे रात को सोते टाइम थोड़ा सा दूध में मुनक्का उबाल करके और उसको ले लिया तो भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है। फ्रूट्स में पपीता का अगर अपन प्रयोग करते हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है। जितने भी रेशे वाले फ्रूट्स हैं वो इसके लिए बहुत अच्छे हैं। एक तो डीप फ्राई की हुई चीजें, मैदे की चीजें जो कॉन्स्टिपेशन करती है, जो चीजें वात को बढ़ाती, ऐसे आहार को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो वात को बढ़ाने वाली चीजें, ये सब मसाले वाली चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें पाइल्स में बड़ी दिक्कत देती है कि अभी तो केवल वो है, उसके बाद ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें।

एक तो डीप फ्राई की हुई चीजें, मैदे की चीजें जो कॉन्स्टिपेशन करती है, जो चीजें वात को बढ़ाती, ऐसे आहार को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो वात को बढ़ाने वाली चीजें, ये सब मसाले वाली चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें पाइल्स में बड़ी दिक्कत देती है कि अभी तो केवल वो है, उसके बाद ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, डाइट में ध्यान रखें, और आप चिकित्सक की सलाह लें तो हेमोराइड से बिल्कुल आपको जो है लाभ मिलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी टेक्निक है।

0: डाइट में ध्यान रखें और आप चिकित्सक की सलाह लें तो हेमोराइड से बिल्कुल आपको जो है लाभ मिलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं क्षारसूत्र पद्धति।
1: अच्छा।
0: और क्षारसूत्र पद्धति से किसी भी प्रकार का पाइल से फिस्टूला है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मेरा इनको कहना है कि आप चिकित्सक की परामर्श जरूर लें और उसमें अगर क्षारसूत्र के प्रयोग की जरूरत है तो वो भी किया जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं हो उसके लिए डाइट को पूरा अच्छे से लेते रहें।
1: जी, और एक श्रोता और वेट कर रहे हैं और शायद ये हमारा आखिरी ही फोन पर सवाल हो पाएगा और मैसेजेस भी हैं, समय कम है। चलिए आपको ले लेते हैं हम। हेलो,
2: गुड आफ्टरनून।
1: जी जी, अपना नाम बताएं और जल्दी से प्रश्न कर लें।
2: जी, मैं मुजफ्फरनगर से सना बात कर रही हूँ।
1: जी जी सना जी, प्रश्न कर लें।
2: डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून।
0: जी गुड आफ्टरनून।
2: जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ ना तो फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, हेयर डैंड्रफ के लिए भी कुछ बताएं। और मैम एक ना मेरी आईलिड्स बहुत झड़ रही है, तो इसका क्या रीजन है?
0: तो आपका पहला प्रश्न जो था ड्राई फ्रूट्स का, देखिए ड्राई फ्रूट्स उष्ण प्रकृति के रहते हैं, अगर
3: शाम के 4 बज गए हैं और पेश हैं एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य, और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। वहीं पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार, आगे है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो। कारगिल की बुलंदियों पर लिखी गई थी एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया आज भी भारत की विजयी शौर्य गाथा के रूप में याद करती है। हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, वीरता, कर्तव्य, निष्ठा और उनके अमूल्य बलिदान की कहानी। संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे खास मेहमान कारगिल युद्ध के एक ऐसे योद्धा, एक डैरिंग सोल्जर हैं जिन्होंने 25 साल तक इंडियन आर्मी आर्टिलरी में अपनी सेवाएं दी। वो हेलीकॉप्टर पायलट रहे और अनगिनत मिशंस के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, देश और साथी जवानों की सुरक्षा में जान की बाजी लगा दी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्यूटी प्लानिंग ऑफिसर के रूप में इंटरनेशनल कोऑपरेशन संभाला। ऑफसेट पॉलिसी 2006 के रचनाकार रहे। उन्होंने नेक्स्टर फ्रांस और राइन मेटल जर्मनी के हेड के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्ट

0: कर्नल अनिल नंदा जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जय हिंद। थैंक यू ऑल द लिसनर्स। थैंक यू शाहिद फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस ब्यूटीफुल शो टुडे।
0: थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो सर, हम आज का शो शुरू करेंगे आपके साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा। इतनी सारी आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो

0: आपके जो ऑनर्स हैं उनको मैं जब पढ़ रहा था, तो आपकी शुरुआत ही, आप बचपन से बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ही हम्बल और बहुत ही ऑनेस्ट चाइल्डहुड आपका रहा। आपके पिता एक डॉक्टर और आपकी बहन जो है नेशनल एथलीट्स, और आपके भाई भी जो है स्पोर्ट्स और स्टडीज में एक्सेल कर चुके हैं। तो किस तरीके का बचपन था, कैसी हुई शुरुआत, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमको बहुत मेहनत की, हम बच्चों के ऊपर बिल्कुल ऑनेस्ट शुरू से सिखाया है कि आप सिंसियर रहो लाइफ के अंदर, ऑनेस्ट रहिए, और बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ सीधी लाइन में चलना हमारे माँ बाप ने सिखाया था। तो हमारी बहनों के ऊपर बहुत मेहनत की स्पोर्ट्स के ऊपर, हम भाइयों को उन्होंने बोला, उस टाइम स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो नहीं था चांसेस, तो उन्होंने बोला आप पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, तो हम चारों बहन भाई ने अपने अपने फील्ड में जहाँ भी काम किया काफ़ी एक्सेल किया लाइफ के अंदर, जो जो हम कर सकते थे, माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग था उसमें।
0: जी सर, हम बात करें कि जैसे आपकी शुरुआत हुई, तो क्या पहले से ही कुछ प्लान था बचपन में, लड़कपन में कुछ जोश, कोई जज्बा था कि इंडियन आर्मी मुझे ज्वाइन करनी है, और क्या ये कुछ खास एक जज्बा आपके दिल में था कि हेलीकॉप्टर पायलट ही बनना है? कैसे हुई शुरुआत, आपने आई में ज्वाइन किया?
1: ऐसा था, मैंने ना बीकॉम किया था, मैंने ग्रेजुएशन किया था, मेरे ब्रदर इन लॉ आर्मी में थे, मेरे अंकल, हमारे और रिलेटिव बहुत आर्मी में थे, और जब भी मैं उनके यहाँ जाता था तो मुझे
0: जी
1: बहुत बहुत अच्छा लगता था, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट वहाँ का, और यूनिफॉर्म्स में देखना सोल्जर्स ने आना, जैसे सोल्जर्स ने आके सल्यूट करना,
0: जी
1: कंडक्ट सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का लेडीज़ की तरफ, या जैसे बहुत बहुत ही जैसे होना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये इन्वायरमेंट विजा वी आउटसाइड जो मैं देखता था, जैसे जो मुझे किसी, तभी तो कॉलेज में था तो थोड़ा थोड़ी समझ कम थी, पर फिर मैंने सोचा मुझे आर्मी ही ज्वाइन कर रही है। फिर मैंने आर्मी के दौरान हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जब हम ज्वाइन करते हैं, मैंने कॉलेज के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, तो वहाँ पर हमसे चॉइस ऑफ आर्म पूछा जाता है, तो मैंने आर्टलरी इसलिए चुना कि मैं चाहता था कि आगे जाके मैं फ्लाइंग कर सकूँ, फ्लाइंग मेरा समहाउ पैशन था,
0: पैशन
1: और सिर्फ आर्टलरी की वजह से ही मैं फ्लाइंग कर सकता था, इसलिए मैंने आर्टलरी चुना।
0: राइट सर, तो ये बड़ा जोशीला ये जज्बा था, और मतलब हमें अभी भी सुनकर के लगता है कि कितना ही एक्साइटिंग सा ये रहा होगा और रहता है, तो क्या ये उतना ही एक्साइटिंग होता है या बहुत ही खतरनाक भी होता है, और जिस तरीके के जब हमें मिशंस करने पड़ते हैं?
1: फ्लाइंग पे आने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फ्लाइंग पे आने से पहले मैं और दो यूनिट्स में मैंने काम किया, 92 मीडियम रेजिमेंट में, 217 मीडियम रेजिमेंट में, उसमें मुझे मौका मिला काफ़ी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करने में, चाहे आप पंजाब प्रॉब्लम समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम समझ लीजिए, तो हमने ग्राउंड वर्क पे बहुत ज़्यादा, मतलब जो मिलिटेंसी के साथ बहुत इन यूनिट्स ने काम किया, तो हम वेरी प्राउड कि मैं ऐसी यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड था। फिर उसके बाद फिर मैं जब फ्लाइंग कैरियर में आया, मैं पायलट बना, मुझे विंग्स मिले, फ्लाइंग में फिर हमने 9 साल फ्लाइंग किया, तो उस 9 साल के अंदर हम अलग अलग स्टेशन पे, आगरा, नासिक, कई जगह पे फ्लाइंग करता रहा मैं,

0: वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर, जहां टेम्परेचर होता है -50 से -60, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की बात करो तो वहां की फ्लाई, मतलब हमारे हेलीकॉप्टर भी जो थे वो चीता हेलीकॉप्टर थे
1: जी।
0: जो हमारे कुछ शुरू शुरू में एक्सीडेंट भी थे, हमारे से पहले एक्सीडेंट्स भी होते, तो फ्रेंच वालों को बुलाया गया था कि यहाँ पर आपके एक्सीडेंट क्यों होते हैं। कहते हैं ये जो आप हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ा रहे हो इस जगह के लिए नहीं बना है ये। पर हमारी आर्मी में इतना जोश था, इतना जज्बा था कि चीता हेलीकॉप्टर्स हमारे आर्मी के भी और एयरफोर्स के दोनों उड़ा रहे थे। और सुबह से लेकर शाम तक जो हमने काम किया 2 साल, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी सेटिस्फाइंग कैरियर नहीं महसूस किया टिल आई केम टू द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, बट जो मेरी फ्लाइंग सियाचिन ग्लेशियर में थी, मेरे को लगता था मैंने ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया है।
1: जी सर, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों पर और ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही एक्साइटिंग था ये आपका जो फ्लाइंग करियर था, और जो हेलीकॉप्टर उड़ाना, और जिस तरीके के जो ख़तरनाक एरियाज़ में, और इतने कम टेम्परेचर, इतनी ऊँची पहाड़ियों पर, तो वो सब चीज़ें, और जो करियर आपका शुरू हुआ बड़ा ही जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ था। तो जैसा कि आपने बताया कि वो बचपन में जब आप देखते थे तो वही चीज़ मोटिवेटिंग बनी, या और भी कोई चीज़ थी जो आप, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं अपने आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं, बैटल्स देखते हैं, तो वो जोश, वो जज्बा, वो हम उस पर आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो पहले हम बता दें अपने लिसनर्स को कि आप भी आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी से सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमें नंबर है 9868107070, और आप हमें सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर, दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग हिस्सों में देश के। और साथ ही हमारी मोबाइल ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, जिस पर आप हमें सुन सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप पर।

0: 102.6 एशिया नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। बचपन से ही शौक रहा अनिल नंदा जी को कि वो हेलीकॉप्टर पायलट बने, और जिस तरह की टेरेन में इनको मौका मिला काम करने का वो अपने आप में अद्भुत है, अनबिलीवेबल है। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका हमारे इस शो में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: सर, हम बात करना चाहते हैं कि ये जो आपने चूज किया, ये जोश और जज्बे से भरा एक करियर था हेलीकॉप्टर पायलट, जब आप बने और आपने सियाचिन ग्लेशियर जैसी एक मतलब बहुत टफ कहा जाए टेरेन होती है, कैसे रहा? मतलब शुरुआत तो जाहिर है जब आप शुरू कर रहे थे तो डर भी लगा या सब जोश था सब कुछ?
1: ऐसा है, जब हम लोगों ने फ्लाइंग कैरियर शुरू किया था
0: जी,
1: तो हम लोग थोड़ा टफ कंपटीशन से हम लोग को सिलेक्ट होते थे हमारे आर्टिलरी में, तो पायलट करीब होते थे, तो जो भी हम फ्लाइंग के लिए जाते थे पहले 6 महीने हम लोग फिक्स विंग फ्लाइंग करते हैं। वो ऐसा टाइम होता है जिसमें आदमी को फ्लाइंग से अगर डर लगता है तो वो ग्राउंड हो जाता है, उसको वापस भेज देते हैं। तो फाइनली हम लोग 28 में से 18 लोग बच गए थे जो हेलीकॉप्टर फाइनली हमने कोर्स पूरा किया था। तो जिन जिन के दिमाग में वो डर था वो पीछे मतलब उनको उन्होंने वापस यूनिट पे भेज दिया था।
0: सर, ऐसा ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ये मौका दिया जाता है कि जो फ्लाइंग कर रहे हैं एक्चुअल फ्लाइंग, उसके बाद भी उनको वापस बुलाया जा सकता है?
1: नहीं, जो एक बार ग्राउंडेड हो गया वो कभी दोबारा फ्लाइंग में नहीं आ सकता।
0: अच्छा,
1: एक बार ग्राउंड हो गया, जैसे मैंने बताया 28 में से हम लोग फाइनली 18 जो ऑफिसर्स थे जो फाइनली जिनको विंग्स मिला था जो पायलट बने थे, तो 18 बाकी 10 को वापस यूनिट आर्मी में बाकी काम के लिए भेज दिया गया। पायलट बन गए तो उसके बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते।
0: सर, आपने जैसे बताया कि सियाचिन में जो टेम्परेचर होता है वो -50 to 60 degrees Celsius, सर वो अनबिलीवेबल लगता है हमें सुनकर के, आपको कैसा लगता था?
1: ऐसा है, ये टेम्परेचर -50 to 60, मैंने इसलिए बोला ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो -50 या 60 पे जाता है, -10 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। ये टेम्परेचर ऐसा होता है जब विंटर्स होती है वहाँ पर, तो हमको सुबह सुबह उठ के फ्लाइंग करनी होती है, तो आप ग्लव्स पहने होते हैं। अगर उस टेम्परेचर पे अगर आपने हेलीकॉप्टर के किसी पार्ट को हाथ लगा दिया, नंगे हाथ लगा दिए, तो आपको वही फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
0: तो सर, उसको क्या समझे हम आम भाषा में?
1: फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे बर्फ को अगर आप किसी अगर उस जगह पे करें तो आपका खून जम जाएगा वहां पर, वो खून आपको उंगली ही कटवानी पड़ेगी, आप वो उंगली ठीक नहीं हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट उसी को कहते हैं। तो अगर आपने सुबह सुबह ऐसा होता है कि जब हम हिल्स में सियाचिन ग्लेशियर हिल्स है बेसिकली, हिल्स में 11-12 बजे के बाद वेदर पैकअप हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, और क्योंकि ऊपर लोग बैठे हैं, जो जवान लोग ऊपर चोटियों पे बैठे हैं, उनको खाना पहचाना, उनको उनको राशन पहुंचाना, उनको ऑयल पहुंचाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको जो कैजुअल्टी ऊपर बैठी है उसको नीचे लेके आना, लोगों के घर से जो चिट्ठियां आती हैं या उनकी चिट्ठियां जवानों के नीचे लेके आनी। मोबाइल वगैरह का टाइम तो हमारे टाइम पे नहीं था, जब मैं अपने टाइम, आज का क्या है मुझे नहीं मालूम। तो इन सबको करते करते हमारे को हम 2 घंटे फ्लाइंग करके फिर पेट्रोल खत्म हो जाता था, वापस आके फिर पेट्रोल भर के फिर दोबारा, तो 5:30 बजे हमारी फ्लाइंग शुरू हो जाती थी। 11-12 बजे के बाद हर रोज और तकरीबन वहां वेदर पैकअप हो जाता है। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये रहती है जितने भी ऊपर जो बीमार वगैरह है उनको जल्दी नीचे लाया जाए। हर पोस्ट के ऊपर एक डॉक्टर होता है, वो कहता है कि ये P1 कैजुअल्टी है, P2, P3। अगर P1 कैजुअल्टी है इसका मतलब अगर आदमी को नहीं निकाला आपने तो ये कल तक नहीं बचेगा। तो हेलीकॉप्टर पायलट का ये पूरा मिशन रहता है कि जल्दी से जल्दी उसको लाया जाए, और वेदर खराब मिला तो बहुत मुश्किल।
0: तो इसका मतलब सर हर रोज हर एक मिशन एक नया चैलेंज होता है आपके?
1: एब्सोल्युटली।
0: तो सर वो इस कदर टफ सिचुएशंस में आपको अपनी भी सेफ्टी तो रखनी होती होगी ना, तो वो कैसे फिर आप पॉसिबल कर पाते हैं?
1: तो बी ऑनेस्ट विद यू, हर फौजी जब उसी अपने मिशन पे काम कर रहा होता है ना, अपना तो नहीं सोचता है, वो सोचता कि मुझे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिली है, मेरे को फ्लाइंग करना है सियाचिन में। अगर वो डरेगा तो फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे आप अगर सुना होगा कभी कोई हेलीकॉप्टर का कभी भगवान ना करे एक्सीडेंट होगा ना, तो ऑर्डर ये होते हैं कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद सब फ्लाई करनी शुरू कर देंगे, किस ताकि जो पायलट्स ग्राउंड पे बैठे हैं उनके दिल में डर ना बैठ जाए। ये डर दूर करने के लिए हमेशा ऐसे होता है, जैसे मिक्स अगर मिक्स स्क्वाड्रन में कहीं कोई क्रैश होता है तो बाकी थोड़े मिक्स सब के सब फ्लाई करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये डर निकालने के लिए।
0: क्या बात है सर,
1: ये ट्रेनिंग का तरीका है। तो हम लोग अपना तो उस टाइम कहाँ सोचते थे, मतलब ऊपर जो जवान बैठा है उसको नीचे कैसे लाना है, जो बीमार है उसके उसको राशन कैसे पहुँचाना है। तो बहुत मतलब बहुत सोल्जर्स का बहुत ज़रूरी जज्बा होता है।
0: बिल्कुल सर, और वो जज्बा जो एक सोल्जर का होता है वो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते, जो एक सोल्जर का जज्बा, जैसे आपने कहा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर।
1: एब्सोल्युटली
0: जी। तो सर ये जो चैलेंजेस आपके रहे इस तरीके से आपने जो मिशंस किए, तो उन मिशंस के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी डराता हो, याद आता हो?
1: ऐसा है, जब हम लैंड करने जाते थे तो जो जो 17,000 फीट 18,000 फीट पे जहाँ हेलीकॉप्टर आपका उड़ना ही नहीं चाहता, पावर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है।
0: जी जी, आपने बताया इस बारे में कि हेलीकॉप्टर इनकार कर देता है,
1: इनकार कर देता फ्लाइंग की, बिकॉज पावर पूरी खत्म हो जाती है। जब आप लैंड करने जाते हो तो ऐसी जगह है, छोटा सा हेलीपैड होता है, वहां पर जो पोस्ट होती है वो लोग इग्लू के अंदर होते हैं, इग्लू के अंदर।
0: अच्छा।
1: ओके, बाहर सारी बर्फ इतनी पड़ रही होती है रात को, तो एच कैसे बार्क करें हेलीकॉप्टर हमको भी बताना है, क्योंकि हर जगह व्हाइट व्हाइट व्हाइट। तो एच क्या करते हैं, बाहर निकल के एच को, पेट तो है नहीं, कभी बॉर्नविटा से एच बना रहे हैं, कभी चॉकलेट पाउडर से एच बना रहे हैं, ताकि हेलीकॉप्टर आ सके। हेलीकॉप्टर उनके लिए जान होती थी, तो वहां पर उससे पहले क्रिवास 100 फीट 200 फीट 500 फीट की क्रेवास होती है। तो एक बार आप लैंड करने जा रहे हो, उधर से पाकिस्तान को जब पता चलता था ये हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो एयरबर्स्ट एम्यूनिशन फायर करने शुरू कर देता,
0: यानी कि आपको चारों तरफ से वो खतरा
1: एब्सोल्युटली
0: उसका सामना भी करना है और मिशन भी पूरा करना है, और आपको लैंड करने के लिए जगह भी नहीं है।
1: कुछ सेकंड मिलते थे, हेलीकॉप्टर के ब्लेड आप रोक नहीं सकते।
0: अच्छा।
1: आप वहां पर रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, पीछे लोग आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पूरा सामान निकालते थे, अपनी खाली टिन अंदर डालते थे, किसी कैजुअल्टी को नीचे आना, एकदम जंप करता था हेलीकॉप्टर में, कुछ सेकंड्स भी हमको हेलीकॉप्टर हटा के वापस लाना होता था। तो मतलब कुछ सेकंड मिलते थे, कुछ आई विल नॉट से सेकंड्स, मे बी अप टू अ मिनट और टू, तो हमको इमीडिएटली वापस।
0: ये अगर मैं समझूं एक आम भाषा में, तो पलक झपकते ही आपका हेलीकॉप्टर वहां आना है।
1: हाँ।
0: और वो जो एक मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ सेकंड्स का उसको समय मिलता है, और उसको फिर वापस टेक ऑफ करना।
1: और हम सब ऑक्सीजन यूज कर रहे होते थे, लेवल पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो हम सब ऑक्सीजन बॉटल्स में होते थे। मतलब वैसे भी अगर ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगी हो, थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी और भी कम हो जाती है।
0: तो सर ये जो खतरा, जैसा आपने बताया कि हेलीकॉप्टर लैंड करना भी इतना मुश्किल होता था, कि नीचे जो आप बता रहे हैं वहां पर गहरी गहरी दरारें, जो
1: क्रेवास,
0: उसके अलावा हेलीकॉप्टर भी आपके ऑर्डर कहता था कि मत मनवाओ मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं।
1: बिल्कुल।
0: तो दूसरी तरफ से आपने कहा कि दुश्मन भी आप पर
1: एयरबस्ट एम्यूनिशन है,
0: कि वो कभी भी आप पर फायरिंग कर दे, तो दैट वाज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर यू ऑलवेज।
1: एब्सोल्युटली एवरी डे।
0: सर ये पूरा करियर आपका एज ए हेलीकॉप्टर पायलट खतरों से चैलेंजेस से पूरा भरा रहा, वॉज दैट वेरी टफ स्कैरी और प्योरली मैं कहूँ सेटिस्फाइंग जोश और जुनून देश सेवा जन सेवा से भरपूर, क्या कहेंगे आप?
1: मैं आपको मैंने पहले बोला था मेरा 25 साल में सबसे बढ़िया मेरा अगर कैरियर रहा
0: जी,
1: है ये 2 साल फ्लाइंग सियाचिन में सबसे ज़्यादा मेरे को लगा मैंने जिंदगी में कुछ किया है। उसके बाद जब कारगिल में मौका मिला, फिर लगा एक और मौका मिला है, पर फ्लाइंग कैरियर इन सियाचिन वॉज माई मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग।
0: तो मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइंग, पूरा जोश जुनून से भरा हुआ।
1: Absolutely.
0: सर आपको कभी डर नहीं लगा?
1: कभी नहीं।
0: क्या बात,
1: कभी भी नहीं।
0: तो सर ये जो आपकी बात है, ये जो डेयरिंग सोल्जर, हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को यहाँ पर के हमारे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, तो उनकी बातें सुन करके और उनसे बात करके मुझे भी जोश भर रहा है। तो ये जो
1: सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अनिल नंदा नहीं, आप कोई भी सोल्जर देखिए, कोई भी ऑफिसर देखिए, आप उसको किसी मिशन पे भेज दीजिए,

0: ये जो सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अनिल नंदा नहीं, आप कोई भी सोल्जर देखिए, कोई भी ऑफिसर देखिए, आप उसको किसी मिशन पे भेज दीजिए, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये मैं नहीं हूँ, ये पूरे सोल्जर की हमारी ट्रेनिंग है। हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ है, एक बारी ट्रेनिंग में एक बार मेंटल हमारे को ना फिजिकली टफ तो
1: ही फोकस होता है, वो होता है कि अपने मिशन को पूरा करना और अपने देश की सुरक्षा, उसकी हिफाजत। तो सर हमारी और आपकी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे ये बताऊं कि हमारे पास मैसेजेस काफी आ चुके हैं, अगर आप कहें तो मैं लेना शुरू करूं।
0: आपकी मर्जी, आपकी
1: सर। मैं यहां पर ये एक मैसेज जो मैं शुरू से लेना चाहूंगा, संदेश टू सोल्जर्स शो पर बहुत खूबसूरत गीत सुना रहे हैं और साथ में दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये है सर यश शिंदे, मुंबई से इन्होंने मैसेज किया है।
0: इसके अलावा
1: जय हिंद सर जी, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल हैं ये महाराष्ट्र डहाणू वाणवाण से। इसके अलावा ये मैसेज है, जय हिंद कर्नल साहब, हम ये सवाल कर रहे हैं सर, ये हम जानना चाहते हैं रात में हेलीकॉप्टर यूज करना कितना सेव होता होगा। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: ऐसा है, हेलीकॉप्टर रात को हमारे फ्लाइंग नहीं करते हैं, जो हम यूज करते थे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर आर्मी के पास है, हम रात को फ्लाइंग नहीं करते, पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पर हमको जब फुल मून होता है,
1: अच्छा,
0: 3 दिन महीने में ट्रेनिंग करनी होती है रात को।
1: ओके।
0: क्योंकि ऐसा होता है अगर हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ लैंड करे, रात को कहीं ऊपर न गिर जाए, इसलिए रात को वैसे ही फ्लाइंग नहीं करते। अगर कोई मिशन होता है, जैसे वॉर होती है, मिशन होता है, तो आई एम श्योर वो मौका भी होगा, मेरे साथ नहीं हुआ है, मौका होगा कि रात को आप जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ट्रेंड पाए,
1: ट्रेनिंग है आपको,
0: आपको थोड़ी सी चाहे मूनलाइट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल अंधेरे में फ्लाइंग करना
1: फ्लाइंग कर सकता जी। ये है सर, जय हिंद, मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मेरे पास एक शेयर जरूरी है, जो सरहद पार रात बिताते है वही हमें सुकून की नींद सुलाते, खुद मौत से आंख मिलाते हैं तभी हम आजादी से मुस्कुराते हैं। सर मुझे गर्व है आप जैसे वीर जवानों पर, जय हिंद सर। इनका नाम है, माय नेम इज सौम्या वर्मा सर।
0: थैंक यू वेरी मच,
1: ये लाइनें आपके लिए लिखी इन्होंने।
0: थैंक यू सौम्या जी, आई एम ग्रेटफुल।
1: और ये है सर अनिल नंदा सर जी, आपको मेरा सलाम, आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है, सोल्जर होना ही एक अलग ही लाइफ है। जय हिंद, ग्राम गेंडा खाली नंबर 1 टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से लिख रहे हैं। इनका नाम है सर अनिल कुमार।
0: थैंक यू अनिल जी।
1: और ये सर मैसेज आया है त्रिचुरापल्ली से सर, श्रीरंगम राजेश का, गुड इवनिंग टू ऑल इन न्यू दिल्ली AIR 102.6, सल्यूट एक्स आर्मी पायलट कम कारगिल वॉर वेटरन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम श्रीरंगम राजेश। और सर इन्होंने बस यही ग्रीट किया है सर।
0: थैंक यू वेरी मच सर।
1: और ये है विकास थापर सर, DLF 2 गुड़गांव से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको, वी लव यू अनिल नंदा जी, ही इज अ ग्रेट कम्युनिटी वर्कर टू हेल्पिंग द रेजिडेंट्स ऑफ DLF 2 फॉर मेनी इयर्स, ही इज आल्सो प्रेजिडेंट ऑफ आर RWA DLF 2।
0: थैंक यू वेरी विकास जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं
1: जी जी।
0: तो ये थैंक यू विकास जी।
1: जय हिंद सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन एज पायलट टू ज्वाइन द आर्मी सर, ये इनका सवाल है। ये है प्रवीण जी।
0: प्रवीण जी ऐसा है, आपको पहले तो अगर आर्मी पायलट बनना है तो आर्मी में आप आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, उसके बाद आपका PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, और टेस्ट पे आप क्लियर हो जाते हैं, जब आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी आर्मी सर्विस की प्लस आपके जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट पे जो आप अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो आपको पायलट सेलेक्ट कर लिया जाए।
1: सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हमें जैसे इन लोगों ने सवाल किया कि पायलट बनने के लिए इनको कहां से कैसे प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए
0: ये आर्मी पायलट की बात कर रहा हूं,
1: आर्मी पायलट की। जी जी जी, एयरफोर्स की नहीं।
0: हाँ जी, आर्मी नहीं, आर्मी मतलब सिविल की नहीं, मैं आर्मी और एयरफोर्स का अलग,
1: एयरफोर्स का अलग प्रोसीजर है।
0: हाँ जी
1: जी, तो सर सभी को IMA से ही होना
0: नहीं, ऐसा नहीं, मैं इंडियन

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ आप सुन रहे हैं, और हमारे साथ हैं हमारे योद्धा, हमारे लोहे का बंदा, अगर मैं सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको पुकारना चाहूं, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर ये गीत मैंने बिल्कुल टोटली आपको ही डेडिकेट किया था, वो जो जोश और जज्बा आपने बताया उससे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए।
1: थैंक यू सो मच
0: सर। हम यहाँ पर जाना

0: हम दो हेलीकॉप्टर में पायलट थे, हमने उनके पीछे डाली तो हेलीकॉप्टर को हम नीचे लेके आते हैं। हमारा एम ये रहता है, इंडियन आर्मी का एम ये रहता है कि बॉटल रिमेंस फैमिली तक पहुंचे ताकि उनके अच्छे से लास्ट राइट्स हो सके। जब मैं पहली बार मॉर्टल रिमेंस लेके हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, आपने जैसे रोंगटे खड़े होने की बात की है ना, मेरे रोंगटे तब खड़े हुए थे लाइफ में। और मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था, मेरे हेलीकॉप्टर में पीछे किसी के मॉर्टल रिमेंस पड़े हैं, बार बार ऐसे देख रहा था। जब हम लैंड कर रहे थे जहाँ पर, पूरी दोनों साइड पे आर्मी के बहुत जवान ऑफिसर्स JCOs खड़े थे और सब सैल्यूट कर रहे थे टू रिसीव दैट मॉर्टल रिमेंस। एक एक करके हम सब मॉर्टल रिमेंस को नीचे लेके आए, फिर वहां से आगे Mi-17 से, फिर वहां से चंडीगढ़ वगैरह बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट में। तो बॉडी मॉर्टल रिमेंस ये फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ में ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब आई वुड से बहुत हार्ट
1: टचिंग। आपके साथी सिपाही जवान जब वो शहीद हो गए तो जाहिर है वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है।
0: एब्सोल्युटली
1: जी, उन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी।
0: हाँ जी,
1: और शहीद हुए। सर उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो कारगिल युद्ध आपके सामने ही हुआ, तो क्या वजह रही, मतलब कैसे समझें हम के कारगिल युद्ध क्यों हुआ, क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ सब?
0: शायद मैं जल्दी से बताऊंगा कारगिल हुआ क्यों था, मुझे पता है ज़्यादा हम लोग के पास टाइम अब भी नहीं है बेशक, आधे घंटे से ज़्यादा। मैं कारगिल हुआ क्यों था, ऐसा है कि हर साल हमारी जो आर्मी है अपने एरिया में कारगिल की हिल्स ऑक्यूपाई करती है
1: जी।
0: पाकिस्तान वाले अपनी हिल्स ऑक्यूपाई करते हैं। इस कारगिल का ऐसी जगह है जहाँ पर पाकिस्तान वाले विंटर्स में अपने वापस चले जाते थे और ये इंडियन आर्मी नीचे आ जाती थी, बिकॉज पूरे विंटर्स के ऊपर सोल्जर्स को उतना मेंटेन करना उस हाइट्स पे बहुत एक्सपेंसिव है। हम सीएचएन में करते हैं, हमें पता कितना करोड़ों का राशन, ऑयल, दवाई, डॉक्टर्स बैठे, तो हम कारगिल में हम पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी नहीं करती थी। मुशर्रफ ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस बारी जब धोखा दिया इंडिया को और

0: आपकी ही यूनिट ने सबसे ज्यादा गोले भी दागे, और कितने गोले दागे सर, वो पूरा एक रिकॉर्ड है अपने आप में।
1: हमारे पास जो हमने कारगिल के अंदर फायर किया उस टाइम पर करीब 9,200 गोले फायर किए थे हमने। हमारी यूनिट पहली यूनिट थी बोफर्स यूनिट जो कारगिल वॉर के अंदर गई थी। जैसे मैंने आपको बताया छः, हम ऑलरेडी छः गने हमारी सियाचिन में थी और छः गने कारगिल में थी, तो वो भी लगातार फायरिंग कर रही थी। तो टोटल दो साल में तो हमने 18,000 गोले फायर किया, ये रिकॉर्ड है। आज तक किसी ने पहले नहीं किया था, बाद में नहीं किया, पर ड्यूरिंग कारगिल वॉर हमने 9,200। आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारी सारा दिन सारी गने फायर करती है, हम पास में बैठे होते तो हम बहरे हो चुके थे।

सेक्शन में थी और 6 गने कारगिल में थी, तो वो भी लगातार फायरिंग कर रही थी। तो टोटल 2 साल में तो हमने 18,000 गोले फायर किया, ये रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने पहले नहीं किया था, बाद में किया। पर ड्यूरिंग कारगिल वॉर हमने 9,200, आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारी सारा दिन सारी गने फायर करती है, हम पास में बैठे होते तो हम बहरे हो चुके थे अभी भी, बल्कि हमारे को फिजिकली इफेक्ट हुआ। आप गनर्स और आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स को देखोगे या जवानों को देखोगे, उनका हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाती है टुवर्ड्स द एंड। तो

0: तो हमने पूरा का पूरा मैप रेड था वो।
1: अच्छा,
0: हमारे डॉक्टर क्यों खड़े हो गए कि हमारी सब हिल्स जो हमारी हैं, टाइगर होल हो या 5.1540 हो या अदर हिल्स, सब हमारी हिल्स पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो उनको निकाला और अगले दिन हम ओपन में बैठे हुए हैं जैसे हमारे बाकी सोल्जर्स और ऑफिसर्स बैठे हैं, तो पता चला वहां से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी हमारे एरिया से। सो हमारे को तब बहुत पता चला कि हमको ये तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है।
1: तो इसलिए वो जो चूंकि ऑक्यूपाइड थी चारों तरफ से हमारी ही हिल्स,
0: हमारी
1: हिल्स, उनको रेड हिल्स का नाम दिया गया।
0: मैंने रेड हिल्स का नाम दिया थी, मैंने बोला है कि उनको पूरा रेड मार्क था मैप के अंदर, पूरा एरिया और पूरा हिल्स रेड मार्क थे। रेड मार्क्स मीन एनिमी,
1: एनिमी
0: और ब्लू मीन्स हम। अगर वो सारी रेड थी तो इसका मतलब एनिमी हमारे एरिया में बैठा हुआ है, दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग रेड।
1: सर वहां की कोई ऐसी आपके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो आपको आज भी याद आता हो, कोई ऐसी याद उस मोमेंट की, उस वॉर जोन की, कारगिल वॉर की?
0: ऐसा है कि मतलब हमको ये था कि जैसे रोड क्रॉस, हमने दराज से हमको कारगिल जाना था और बीच में पाकिस्तानी पोस्ट हमारी रोड्स को देखती थी, मतलब अच्छा। रोड देख रही थी और गन्स हमारी इतनी बड़ी बड़ी बोफोर्स गन को लेके जाना, तो हमारे जो ऑफिसर्स जवान्स को लेके जाना रात को, उनको तो पता था पाकिस्तानी यही रोड है, ऊपर एक ही रोड थी ऊपर जाने के लिए, उन गन्स को बिना आवाज़ किए उस रोड से क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम था। और मतलब
1: यानी कभी भी कोई भी अटैक आप पर हो सकता,
0: वो होता था, वो फायर करते थे।
1: अच्छा।
0: इसीलिए कोशिश होती थी रात को जाओ, रात को जाओ तो दिखाई नहीं देता था, दिखाई दे तो मतलब ऐसा है कि इतनी चौड़ी गन, ये छोटी गन तो है नहीं, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी रोड पे, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें तो थी नहीं। मेरा मतलब टाइम वो बहुत टफ था, पर हर बंदे में इतना जज्बा था और हमको

0: से फायर आ रहा था, मीडियम मशीन गन थी, उसको भी उड़ा दिया। और मतलब पहले दिनों में कितनी सक्सेस मिल गई, फिर आगे आगे करके तो बहुत सक्सेस मिली।
1: तो मतलब जाहिर है जो सोल्जर्स जो जवान थे उनका जोश पूरी तरीके से हाई था और वो पूरी तरीके से दुश्मन को खदेड़ने के लिए तैयारी करके गए थे कि अपनी सरहदों से उनको बाहर निकाले।
0: शायद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से बात की, ऐसा है कि हर हिल्स के ऊपर
1: जी
0: इन्फेंट्री अटैक जाता था।
1: okay.
0: इन्फेंट्री अटैक जाता था, पूरा प्लानिंग से जाता था, पूरा ब्रिगेड डिवीजन सब प्लानिंग होती थी, आज इस हिल को हमने पाकिस्तानी पे अटैक करना है, तो इन्फेंट्री बटालियन को काम दिया जाता। तो वो हिल्स होती है ऊपर, जवानों ने फायर जाना है ऊपर अटैक करना है, बहुत मुश्किल होता है नीचे से ऊपर अटैक करना, कोई ऊपर बैठ के अगर पत्थर भी फेंकेगा ना आपको चोट लगेगी बहुत बुरी तरह। हमारे जो ऑफिसर्स जेसीओ जवान वो ऊपर फायर करते थे, हम लोग क्या करते थे बोफोर्स या और आर्टिलरी यूनिट्स पहले उस जगह को पूरा पल्वराइज करते थे, उसको पूरा हम दबाते थे ताकि इतना फायर करते रहे कि पाकिस्तानी बाहर आके ओपन हमारे पे लोगों फायर ना कर सके।
1: okay.
0: हमारे लोग चल रहे हैं ऊपर से हम फायर करते जा रहे हैं, तो पहले उनके पास पहुंचने से पहले हम आर्टिलरी फायर उठाते थे तब वो हमारे लोग अटैक करते थे। तो ऐसे होता था कि हर पता चलता आज यहाँ इस हिल पे फायर जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, तो हम वेट ही करते रहते थे क्या हुआ क्या सक्सेस सिग्नल हमारे जो लाइट जो वेट कर रहे थे। अच्छा। हमको सक्सेस मिला है कि नहीं
1: जी।
0: दिस वाज एवरी डे लाइक ए वॉर, एवरी डे
1: एवरी डे। और सर ये लगातार बहुत दिन
0: ये लगातार चलता रहा, ये मतलब जून तक एंड तक चलता रहा।
1: और सर इस दौरान जो फौजियों का जो मनोबल था सिपाहियों का
0: बहुत हाई था, बहुत हाई था, बहुत हाई था।
1: तो सर वो फिर कैसे कनेक्ट रहते थे, जैसे परिवार से तो फिर जाहिर याद आती है, तो कोई चिट्ठियां या कोई कम्युनिकेशन कैसे करते थे?
0: ऐसा हमारे को ना हफ्ते में एक बार ही फोन मिलता था, थोराया फोन मिलता था, थोराया सैटेलाइट फोन है,
1: तो कुछ अच्छा स्पेशल फोन होता,
0: स्पेशल थोराया फोन एक आया, एक यूनिट में आता है, आप अपनी फैमिली में एक हफ्ते में एक बार बात कर सकते। हमारी फैमिली तो सारी बाप बाप वाइफ बच्चे सारे टीवी से जुड़े होते थे, शायद कुछ खबर आ जाए, मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उन जमाने में, तो थोड़ा फोन मिलता आपको हफ्ते में एक बारी बात करने के लिए, कुछ मिनट के लिए अपनी फैमिली से बात करते थे, वो सुन लेते थे माँ बाप आवाज फैमिली सुन लेते, को अच्छा लगता। इधर से चिट्ठियां इतनी आनी शुरू हो गई, शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, पूरा देश ये टीवी की लड़ाई थी, आपको पता है ये टीवी की लड़ाई थी, टीवी में सब दुनिया देख रही थी लड़ाई, तो लोगों ने इतनी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, मिठाइयां भेजनी शुरू कर दी सोल्जर्स के लिए।
1: अच्छा।
0: अच्छी अच्छी चीजें, पर उन्होंने क्या हुआ सामान ऊपर आना शुरू हुआ तो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया, जहां हमको एम्यूनिशन चाहिए था गाड़ियों का
1: वहां
0: पर चिट्ठियों वाले ट्रक रोके, फिर उनको रोकना पड़ा।
1: अच्छा, तो सर ये फिर मोमेंट मतलब जाहिर है जो सोल्जर है वो फ्रंट पर है लड़ रहा है दुश्मन से, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए।
0: बहुत मोटिवेशन, बहुत मोटिवेशन, मतलब हर कोई छुट्टी तो सबकी कैंसिल
1: थी, तो कैंसिल सब।
0: मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे दिमाग में जो आया है। एक हमारे यूनिट के अंदर एक आदमी आया हमारे पास कमांडिंग ऑफिसर साहब के पास, कि कहता है कि सर मुझे छुट्टी जाना है, लड़ाई चल रही है छुट्टी जा रखे थे, सब मजाक कर रहे तो छुट्टी मांग रहा है इस टाइम पर लड़ाई में, कहता बहुत जरूरी बात है, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला भी इतनी बात है तो चले जाओ भाई, कारगिल से बेचारा श्रीनगर आया, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से आगे, जम्मू से आगे घर गया, चार पांच गया था 15 दिन के लिए।
1: अच्छा।
0: चौथे दिन में हमने देखा वापस आ गया यूनिट के अंदर, हमने पूछा तू वापस कैसे आ गया, कहता साहब मैं गांव पहुंचा बहुत जूते पड़े मेरे को मेरे को गांव वालों ने इतने जूते मारे, कहते पूरी लड़ाई लड़ रहा है देश और तुम घर में अपनी माँ के लिए, तेरी माँ को हम संभालेंगे, तो वो अपना देश के लिए लड़।
1: क्या बात है सर, क्या बात है।
0: और मेरे साथ हुआ शायद जी, मेरे साथ हुआ ऐसा। मिसेस चोना मेरे बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी डीपीएस आरकेपुरम की
1: जी,
0: उनकी मुझे चिट्ठी आई कि कर्नल साहब आप देश के लिए लड़िए, बच्चे मैं आपकी संभालूंगी, मिसेस चोना ने मेरे को चिट्ठी लिखा।
1: सर ये है मतलब ये जो जज्बा देशवासी,
0: पूरा देश आपके साथ खड़ा,
1: अपने सिपाहियों के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ
0: पूरा खड़ा होता है देश आपके साथ।
1: बिल्कुल। सर आपने बात की चिट्ठियों की, कम्युनिकेशन की, के सोल्जर्स को सिपाही को जब घर से कोई चिट्ठी आती है या वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस पर क्या असर होता है। मुझे था ये जहन में क्या है, मैं ये गाना चलाऊंगा और आपकी पसंद का भी यही है।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: 102.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स चल रहा है। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, हम कारगिल वॉर पर बात कर रहे थे और हम वहां पर आपकी बातों में लग रहा था जैसे हम उसी मोमेंट पर उसी वॉर जोन में पहुंच गए हैं। तो सर, कुछ ऐसी यादें भी हैं जो आपको आज भी कुछ खूबसूरत यादें भी हैं? जाहिर है सब बहुत ही वो जो टेरेन था, वो जो सिचुएशन थी, वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ यादें आपके साथ जुड़ी
1: हैं। बिल्कुल है, मेरे को बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मेरे को ये बताना चाहता हूँ कि आपको कि उस एरिया में जो कमांडर साहब थे हमारी यूनिट के, बहुत काबिल ऑफिसर ब्रिगेडियर देविंदर सिंह जो 70 ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, उन्होंने का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कारगिल वॉर में। बटालिक सेक्टर के कमांडर थे, बहुत बड़ा उन्होंने बढ़िया काम किया हमारी यूनिट में, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया, अपनी ही उनकी अपनी यूनिट थी। तो हमारी यूनिट 307 मीडियम ने बहुत अच्छा काम किया कारगिल के अंदर और पूरा अपने कमांडर साहब को भी पूरा सपोर्ट दिया। प्लस उसके वॉर के अंदर हमारे कई ऑफिसर्स को अवार्ड्स भी मिले। एक हमारे कैप्टन साजू चेरियन है, उनको सेना मेडल मिला। एक मेजर दहिया, उस टाइम मेजर दहिया, बाद में कर्नल दहिया, उनको और एक सी विजन को मेंशन इन डिस्पैचेस मिले। मेजर झुलका मिला, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला। एक कैप्टन अतुल है, उनको GOCNC कमेंडेशन कार्ड मिला। हमारी खुद यूनिट को नॉर्दर्न कमांड आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला। तो हमारी काफी यूनिट ने काफी अचीवमेंट की,
0: बहुत अचीवमेंट,
1: बहुत अच्छा काम किया।
0: बिल्कुल सर, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने ये जो सर्विस दी अपनी एज एन हेलीकॉप्टर पायलट और फिर उसके बाद आपने कारगिल वॉर में भी जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी, उसके बाद सर फिर आपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए भी काम किया तकरीबन 5 साल और उससे ज़्यादा। तो उसके बारे में थोड़ा सा
1: मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में मैंने 5 साल काम किया और मैं काफ़ी अच्छे काम किया। मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजर्स में मैंने काम किया। DPP 2006 में मैंने बनाई है प्रोसीजर, बैठ के बाकी लोगों के साथ मिलकर हमने पूरे प्रोसीजर्स बनाए प्रोक्योरमेंट वगैरह के बाद। प्लस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में था तो मैं डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह के साथ, इन लोगों के साथ मैं आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ट्रैवल किया। जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एग्जीबिशन, जितनी नेगोशिएशंस विद पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पूरा के पूरा हम लोगों ने काफ़ी काम किया 5 साल का। बहुत मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला, उसकी वजह से फॉरेन कंपनीज ने भी मेरे को देखा कि मैंने अच्छा काम किया तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। फिर मैंने उसके बाद फिर फॉरेन अपनी मेरे को कि दिल्ली छोड़ने का मेरी मजबूरी थी आर्मी छोड़ने की। अच्छा। दिल्ली में ही रहना था, बच्चे छोटे थे तो मेरे को इसलिए फिर मैंने आर्मी छोड़ी और फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में आ गया। मैं जॉब शुरू किया
0: आपने। फिर सर आपने कोविड के दिनों में भी बहुत लोगों की हेल्प करी और आगे बढ़ करके मदद करने में, ब्लड डोनेशन में, उनको राशन और बाकी चीज़ों में भी। तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था उस दौर में? बहुत ही एक डर वाला जो माहौल बना हुआ था।
1: शायद मैं बताता हूँ, मेरे ना 15 साल ये जो मेरे जॉब ख़त्म करने के बाद मैं अपने तो मैंने बोला अभी बहुत हो गया, बस 40 साल मैंने नौकरी कर ली है, अभी थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करनी चाहिए। समाज सेवा हमारे पूरे खानदान में, मेरे फादर, मदर, मेरी बहनें, ब्रदर बहुत समाज सेवा करते हैं अपने अपने लेवल पे। मैंने सोचा हम कुछ समाज सेवा करना चाहिए। तो मैंने RW का एक जो जरिया मिला जिसकी मदद में हमने RW में आया और RW में लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम ठीक करनी शुरू की। फिर कोविड का टाइम आ गया। कोविड के टाइम पर ऐसा था जो कोई घर से नहीं निकलना चाहता था। हम लोग कुछ थे जो RW के मेंबर्स थे, वो पूरे दिल से, पूरे जोश से घर से निकलते थे। पूरी इतनी हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी को पूरा संभालने के लिए हम लोग किसी को तो आगे आना था। तो हमारे RW के सारे मेंबर्स सारे बाहर आते थे सिक्योरिटी के साथ, हम गेट्स को मैनेज करना किसी, और कोविड ऐसी चीज़ थी आदि, हर बच्चा ये चाहता मेरे माँ बाप घर से ना निकले, माँ बाप चाहते बच्चा घर से ना निकले, पर हमारी ड्यूटी थी। तो हम लोगों को राशन पहुँचाना, लोगों को जिनको ब्लड डोनेशन, जिनको ब्लड की जरूरत, आप पता होगा ब्लड की इतनी शॉर्टेज हो गई थी, हॉस्पिटल बेड्स की इतनी शॉर्टेज थी हमारी कॉलोनी में। हमारे RW ने ऑक्सीजन बॉटल्स तक किया, अपना एक टेम्परेरी कैंप लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मिलकर काम किया, लोगों के राशन बांटे, किसी ओल्ड एज पीपल को और कपल को, किसी को या किसी सीनियर सिटीजन को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, मेडिसिन, खाना पीना, हम उनके घर में पहुंचाते थे। तो बहुत सेवा की। तो उससे क्या है,

0: एक के बाद मैं तीन टाइम मैं आरडब्ल्यू में लगातार आता जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार बना हुआ है, तो मुझे चाहते भी है कि मैं वापस आऊँ। तो
1: सर, उनका प्यार और आपकी सेवा लगातार अभी भी बने हुए हैं, आप अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं।
0: हाँ जी, वो चाहते हैं मैं जुड़ा रहूँ तो मैं जुड़ा, जब चाहेंगे नहीं होंगे तो मैं बाहर चला जाऊँ।
1: लेकिन सर, आपने इतना सब जो अपने पूरे करियर में किया वो मतलब बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत ही रिमार्केबल हैं, लैंडमार्क्स हैं वो, तो इसमें सर आपकी फैमिली का भी जरूर सहयोग और सपोर्ट और हेल्प रही होगी। किस तरीके से आपको वो लगातार इन सब चीजों के लिए, भले ही वो वॉर जोन में आप थे तब, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स,
0: मेरे बाबा, बहन भाई, मेरे मतलब मेरी वाइफ रश्मि, मेरे तीन बच्चे लड़के हैं, मतलब तीन बच्चे हैं, अंकित, शिवेन और मेरी बेटी साहिबा है, और मेरी डॉटर रिलोदृषिका है। हम सब ने मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि मैं ये काम करता था तो वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, मेरे को सबकी सपोर्ट है उन लोगों।
1: बिल्कुल सर,
0: आई एम क्वाइट अ ब्लेस्ड मैन।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सपोर्ट होती है खासतौर पर फैमिली की, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होती है और वही आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देती है।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो यहां पर सर मैं अभी तो हमारे पास जो समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी चलते चलते ये जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जरूर मैं आपसे शेयर कर दूं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: ये टेक्निकल ग्रेजुएट है, ये कहते हैं कि सर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेजुएट विच ब्रांच ऑफ आर्मी कैन आई ज्वाइन?
0: He can join every branch. As an engineer, he can join as a technical. When okay. he comes, there's a special called technical branch in the army. He can apply for that. Okay. And as an engineer, he can join that technical branch.
1: Right, sir. और सर ये मैसेज है मंसूर अली का बीकानेर से, और ये आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार
0: sir. नमस्कार जी।
1: और ये है कर्नल अरिंदा, इज वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी हेल्पफुल, सल्यूट टू हिम, रिगार्ड्स विनोद तायल है सर, ये डीएलएफ गुड़गांव से। प्लीज एयर दिस मैसेज ऑन योर एफएम, आई एम ऑनलाइन, थैंक्स।
0: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
1: कर्नल अरिंदा, वाह वाह कर्नल अरिंदा, ग्रेट ऑफ यू।
0: थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
1: मल्टीपल मैसेजेस इन्होंने किए सर आपकी तारीफ में।
0: और ये है तारीफ सर, क्या था? आप उसका प्यार है सबका ही।
1: बिल्कुल सर। ये सर हैं डॉक्टर दीपक जोशी। सर ये अच्छा, ये शायद रेडियो डॉक्टर के लिए मैसेज कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं। और ये है सर, नमस्कार, जय हिंद यशवंत, आडमुटे हैं धाराशिव महाराष्ट्र से सर ये।
0: हाँ जमशेदा जी।
1: और सर ये है, हमारा देश का फौजी भाइयों की हमेशा सैल्यूट, और देशहित ना रचने के लिए उनका जीवन त्याग में जीवन है, बहुत प्यार से सैल्यूट करता हूं मैं। कर्नाटक स्टेट विजयपुर डिस्ट्रिक्ट अराकेरी गांव से पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावद।
0: तो सरावद साहब थैंक यू
1: जी, ये आपको सैल्यूट करते हैं और कहते हैं सोल्जर भाइयों का हमारा सैल्यूट, हमारा भारत माँ के रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान का श्रेष्ठ जीवन का संदेश है।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: और सर ये एक और मैसेज मैं पढ़ दूं, फिर इसके बाद समय बिल्कुल खत्म। मेरी तरफ से सभी सोल्जर्स को जय हिंद जय भारत, रंजीत मस्ताना रायबरेली।
0: थैंक यू।
1: तो सर ये सब बहुत ही प्यार भरे मैसेज आपके लिए, प्यार का इजहार है सर हमारे इस शो में, और हम आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ पर चलते चलते।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल अली नंदा जी, जोश से भरपूर हमारे सोल्जर हमारे साथ रहे सर।
0: थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू।

AIRFM रेनबो पर पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट PG 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने बताया कि उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और अंत में जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। वहीं पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार FM रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और ये है सुषमा की वाणी जो आ गई है एफएम रेनबो पर। और सिटी लाइट्स प्रोग्राम जब होता है तो आपको इंतजार होता है कि क्या कुछ हो रहा है। चलिए, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है आपकी जिंदगी में, लेकिन दिल्ली में क्या क्या कुछ हो रहा है और मौसम कैसा है, ट्रैफिक कहाँ पर है, ये सब कुछ बताने के लिए मैं आ गई ना। वैसे मौसम दिल्ली का बदल चुका है। मैं हूं सुषमा आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स।

लगा तो मुझे भी ऐसी था कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश तो अब आपसे विदा ले चुकी है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मानसून अब आपसे विदा ले चुका है दिल्ली वालों के लिए। और आपको पता है 23 साल में मानसून की सबसे पहले ऐसा हुआ है कि जल्दी विदाई हो गई। और डेट की जहां तक बात है तो 23 सितंबर को हुई थी ये विदाई 2002। सोचिए कितने सालों बाद, है ना। अब बारिश का इंतजार आप मत करिए दिल्ली वाले, लेकिन ऑलरेडी बारिश जो है वो रेड अलर्ट हो रहा है हमारे जो तटवर्ती हिस्से हैं वहां पर। और दिल्ली तो अभी साफ सुथरी है क्योंकि दिल्ली वाले तैयारी कर रहे हैं आने वाले जो फेस्टिव सीजन है उसकी। और दिल्ली में ट्रैफिक तो हमेशा ही लगा रहता है, लेकिन कहानियां आपकी क्या हो सकती हैं ट्रैफिक की, आप मुझसे साझा कर सकते हैं कहां 9868107070 पर।

देखिए, मेरी मेरी कहानी या आपकी कहानी बहुत सारी कहानियां बन जाती हैं, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बहुत सारी और भी कहानियां बनने वाली हैं। कहानियां तो नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि रोज़गार के जो अवसर हैं वो जल्दी मिलने वाले हैं महिलाओं के लिए खासतौर पर। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट की जो बैठक हुई उसमें ये बताया गया कि भाई महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दुर्गा पिंक ई ऑटो ऑटो योजना को मंजूरी दी गई और पहले चरण में 1300 पिंक ई ऑटो परमिट आवंटित किए जाएंगे और इनमें से 1170 महिलाओं और 130 ऑटो

और ई ऑटो पर 3 साल की अनिवार्य लॉक इन अवधि होगी। लॉक इन पीरियड बहुत जरूरी होगा और आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन बिल्कुल सीखना पड़ेगा कि ऑनलाइन कैसे करना है उन लोगों को जो वाकई में इसमें लेना चाहते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं। और पिंकी, ई ऑटो की अगर हम बात करें तो आवेदक की जो एज है, एज लिमिट 20 से 40 यानी 20 से 40 साल के बीच ही होने चाहिए और सबसे जरूरी महिला के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए और परिवार की जो वार्षिक आय है वो 5 लाख से अधिक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर आपको नखरे दिखाने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझदारी आपके लिए, देखिए रोजगार की हो रही है तैयारी।

0: ऐसे ही एंड होते हो, जाने जाना कहंदी। छोटा सा ब्रेक ले लूं, फिर आती हूँ आपके पास।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित

0: बिल्कुल, खूबसूरती की कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ सीमा होती है तो आपकी नजरों की होती है। एक छोटा सा गाना मैं लेकर आ रही थी आपके लिए, लेकिन सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक ले लूं तो भी ठीक रहेगा आपके लिए।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें।

0: नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

0: अब से मैं आपके लिए एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: दिस इज दिल्ली।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों, मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं शबाब अनवर। हम लेकर आ गए आपके लिए शाम के 5:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। और आपको बता दें कि आज के दिन की एथलेटिक्स के इवेंट्स की फाइनली शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, दीज इवेंट स्टार्टेड ऑफ विद द मेंस 100 मीटर्स इन विच अनिमेश खजूर एंड गुरिंदर वीर सिंह फ्रॉम इंडिया क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 मीटर सेमीफाइनल एट द एशियन गेम्स। अनिमेश खजूर फिनिश थर्ड इन heat and clocked 10.36 seconds to finish behind Thailand's Puripol Boonsoorn and China's Zheng Kili. Kujor's third place finish was enough to earn him a qualification for the semi-final. वहीं पर अगर बात करें गुरिंदर वीर कीत, उन्होंने फिनिश किया सेकंड इन हीट 4 ऑफ राउंड 1। गुरिंदर वीर क्लॉक 10.38 सेकंड्स टू फिनिश बिहाइंड ओमान जमलहम अल बलूशी हु वन द हीट इन 10.29 सेकंड्स। हिज सेकंड प्लेस फिनिश वाज इनफ टू अर्न हिम अ प्लेस इन द सेमीफाइनल। तो उम्मीदें अब इन दोनों से रहेंगी सारी ही भारतीयों की कि हमें अंत में एक मेडल की यहां से सिर्फ गुंजाइश नहीं, मेडल लेकर भारत में ये दोनों में से कोई एक तो जरूर वापस आए। अब बात करते हैं वहीं पर वुमेन्स हेप्टाथलॉन के शॉटपुट में, जहां पूजा हैज मूव्ड ऑन टू द फोर्थ पोजीशन। इंडियाज पूजा मूव्ड ऑन टू द फोर्थ पोजीशन आफ्टर रजिस्टरिंग अ थ्रो ऑफ 11.44 मीटर्स इन अ थर्ड अटेम्प्ट। पूजा रिकॉर्डेड 11.20 मीटर्स इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट बिफोर फाइनली मैनेजिंग 9.91 मीटर्स इन अ सेकेंड। लेकिन क्योंकि उनका 11.44 मीटर का तीसरा अटेम्प्ट उनका सबसे बेस्ट था, उसको कंसिडर किया जाएगा एंड शी इज मूव्ड ऑन टू द फोर्थ। एथलेटिक्स ट्रिपल जंप के अंदर भी निहारिका वशिष्ठ की कुछ ज्यादा बहुत बेहतर अच्छी शुरुआत नहीं रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट उनका फाउल हो गया था, लेकिन उसके बाद अगर बात करें आशा लांगू की कि तो उनका एथलेटिक्स ट्रिपल जंप में पहला अटेम्प्ट ही बहुत अच्छा गया था 13.43 का, जिसकी वजह से क्योंकि उनका दूसरा अटेम्प्ट फाउल कंसिडर हो गया था, बट पहला अटेम्प्ट इतना अच्छा होने की वजह से शी स्टिल इन दैट सेफ्ड बफर वेयर शी कैन होप टू गेट क्वालिफाइड इफ she is able to either better a third attempt or possibly this in itself achieves her that. अभी तक की एथलेटिक्स की यही अपडेट्स हैं आपके लिए दोस्तों, लेकिन ये अपडेट्स लगातार जारी रहेंगे हर घंटे में, क्योंकि एथलेटिक्स के अंदर और भी अपडेट्स आते रहेंगे शबाब।
3: और उधर स्क्वाश की बात करें तो ये भी एक ऐसा खेल है जिसने आज पूरे दिन भारत की पदक की उम्मीदों को जिंदा रखा है। पूरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, अभय सिंह और वीर चोटरानी ने एशियन गेम्स के स्क्वाश स्पर्धा के एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली शानदार प्रदर्शन करते हुए, जबकि जोशना चिनप्पा और बेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिश्रित युगल के अंतिम आठ में पहुंच गई। जूनियर विश्व चैंपियन और पदक के दावेदार अनाहत ने महिला एकल में सिंगापुर की वाई यीन ओ उयोंग को महज 19 मिनट में 3-0 से, यानी कि 11-4, 11-5 और 11-17 से हराकर अभियान की शानदार शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक खास बात यह है कि सेमीफाइनल में पहुंचने पर भी तय नहीं होगा पदक, ये खास बात है। कुछ इसमें तब्दीली आई है, हम बताएंगे आपको। इसके बाद तन्वी ने भी सिंगापुर की वाई यान ओ योंग को 39 मिनट में 3-1 यानी के 5-11, 11-4, 11-5, 13-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इन नतीजों के साथ महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में अनाहत और तन्वी के बीच ही मुकाबला तय हो गया है, यानी दो भारतीयों के बीच। पिछले एशियन गेम्स के विपरीत इस बार स्क्वाश की एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों का पदक पक्का नहीं होगा। कांस्य पदक के लिए सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे और चौथे स्थान का मुकाबला खेला जाएगा, ये खास बात है। तो काफी दिलचस्प रहेगा, एक बार फिर दो भारतीयों के बीच मुकाबला भी हमें को देखने को मिलेगा।
1: तो आज का पूरा पदक स्क्वाश
3: खिलाड़ियों ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया।
1: जी शबाब, नाइसली पुट। एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग, जहां पर सुमित कुंदू ने आज भले ही अपने पहले दो बाउट्स की अच्छी शुरुआत करी हो, लेकिन तीसरे बाउट में चोटिल हो जाने की वजह से ही गॉट फॉरफीटेड और उनके जो ओपोनेंट थे इराक के अली अलसारे वो ऑटोमेटिकली क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर गए। वहीं पर अगर हम महिलाओं के लिए बॉक्सिंग के एंगल से देखें तो भारतीय महिला बॉक्सर्स का भी कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। साक्षी चौधरी lost to Kazakhstan's Aloa Balkebekova in the women's 51 kg round of 16 bout and exited the competition. वहीं पर 65 kg preliminary round of 16 में भारत की परवीन को walkover मिल गया thankfully, which was God sent gift, and now she has moved into the quarter finals. शबाब
3: जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहा है और कई और ऐसे खेल रहे हैं जिसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन जिन खेलों में सबसे ज़्यादा उम्मीद थी भारत को, मुक्केबाजी और निशानेबाजी, उसमें उतना वैसा प्रदर्शन नहीं रहा जिसकी उम्मीद थी।
1: जी ऑफकोर्स निराशाजनक रहा, लेकिन फिर भी हमें उसमें भी एक ब्रॉन्ज मेडल आज प्राप्त हो गया। लेट्स नॉट फॉरगेट द मिक्स टीम स्कीट इवेंट दैट हैपेंड व्हिच गॉट अस द ब्रॉन्ज टुडे, शूटिंग बीइंग दैट सेविंग ग्रेस, क्योंकि इट हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग रन ओवरऑल अगर शूटिंग की बात करें। लेकिन अभी आई विल कम बैक टू एथलेटिक्स दोस्तों, बिकॉज एथलेटिक्स में आज बहुत इवेंट्स हैं। तो हेप्टाथलॉन की अगर हम बात करते हैं ना कि वुमेन्स हेप्टाथलॉन आफ्टर फोर इवेंट्स क्या स्टैंडिंग है, तो भारत की पूजा इस वक्त बनी हुई है 8वें स्थान पर और वहीं पर अनामिका कोजिन जपारमविल भी बनी हुई है 9वें स्थान पर। नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं तो फातिमा है और नंबर 2 पर काई जुआन है। तो अभी ये कहना कि भारत यहां से कैसे क्वालिफाई करेगा या फिनिश ऑफ करेगा, ये बहुत अर्ली ऑन होगा बिकॉज इसमें अभी और इवेंट्स एड ऑन होंगे एंड देन वी विल कम टू सी दैट इन टोटैलिटी हाउ डज इंडिया स्टैंड, स्पेशली वेदर इट्स इंडियन वुमेन और इट्स इंडियन मेन, व्हेन इट कम्स टू द टेबल स्टैंडिंग्स की टॉप 3 में भारतीय मेन और भारतीय वुमेन एथलीट्स फिनिश कर रहे कि नहीं। लेकिन 4 इवेंट्स की समाप्ति पर हेप्टाथलॉन के रिजल्ट कुछ इस प्रकार रहे, और आपको इसके साथ साथ ये भी बता देंगे कि इस वक्त किस तरह की टेबल स्टैंडिंग्स यानी मेडल टेबल स्टैंडिंग क्या बनी हुई है भारत की। तो मेडल टेबल पर इस समय भारत है 14th पोजीशन पर, ही इज होपिंग दैट वी मूव ऑन द मेडल टैली, लेकिन अभी के लिए दैट इज ऑल दैट शबाब एंड मी साक्षी हैड इन दिस अपडेट। वी विल जॉइन यू बैक एट द 6:30 PM लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

एक बारी नहीं बार बार जाने का मन करेगा आपको। मेट्रो स्टेशन के आसपास बहुत खूबसूरत बनने वाला है और मेट्रो से घर पहुंचना और भी होगा आपके आसान। वो इसलिए क्योंकि 6 मेट्रो स्टेशन पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी आपके लिए बहुत आसान और मेट्रो तक पहुंचने की यात्रियों को अब स्टेशन के आसपास बेहतर फुटपाथ मिलेंगे, सड़क पर सुविधा मिलेगी, आपको वॉक करने की लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी मिल सकेगी। दिल्ली के 6 मेट्रो स्टेशन के आसपास करीब 300 मीटर के दायरे में पैदल यात्रियों और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बेहतर करने वाली मल्टी मोडल इंटीग्रेशन जिसे MMI प्लान को मंजूरी भी मिल गई है।

बिल्कुल दिल धड़कने दो एक दूसरे का, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहो, मुझसे भी मोहब्बत है आपको मैं जानती हूँ, इसलिए जल्दी मिलने आ जाऊंगी कल फिर से सिटी लाइट्स में। अब तक के लिए बस इतना ही कहूंगी, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashvani. We now take you over to Dr. Bhimrao Ambedkar Stadium, Delhi, for the live commentary of the Under 17 Boys final match of the Subrato Cup International Football Tournament 2026. Our commentators are Ashish Kumar Chirangu in Hindi and Amit Arora in English.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां से आप सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत अंडर 17 बालक वर्ग के फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। आंखों देखा हाल सुना रहे हैं हिंदी में आशीष कुमार चरंगू और अंग्रेजी में अमित अरोरा। आइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम चले।
2: नमस्कार, दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम से मैं आशीष चरंगू अपने साथी कमेंटेटर अमित अरोड़ा और अपनी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 65वां संस्करण सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का अंडर 17 जूनियर बॉयज वर्ग में फाइनल मुकाबले के मुकाम तक पहुँच चुका है और इस फाइनल मुकाबले में आज जो भिड़ंत होगी वो होगी मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली CISCE और MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान।

0: नज़ारा इस समय डॉक्टर भीमराव स्टेडियम पर, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ जब यहाँ तमाम उपस्थित दर्शकों ने स्वर से स्वर मिलाकर उसे गाया तो यकायक रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक निश्चित रूप से एक ऐसी अनुभूति होती है जिसको शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल बात करते हैं 65वें संस्करण सुब्रतो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की, जिसका फाइनल मुकाबला अंडर 17 जूनियर बॉयज़ कैटेगरी में अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाला है। CISE मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली की टीमों के और MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल अतंकल केरला की टीमों के बीच। तो दोनों टीमें इस समय बीच मैदान पर कतारबद्ध हैं, उनके पीछे फीफा का ध्वज और सुप्रोतो कप का जो ध्वज है वो वहां पर नज़र आ रहा है और दाईं तरफ इस समय जो आज के चीफ गेस्ट हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह, PVSM, AVSM और साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर सुरेश रैना इस समय नज़र आ रहे हैं बिल्कुल दाईं तरफ। अमित, निश्चित रूप से एक अद्भुत नज़ारा इस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम पर नज़र आ रहा है।
1: Absolutely, Ashish. Good evening to all the listeners of Akashwani. We can right now see Air Chief Marshal AP Singh, PVSM, AVSM, ADC, Chief of the Air Staff, and Chairman Subroto Mukherjee Sports Education Society. And along with him is Suresh Raina, who's being felicitated right now. Suresh Raina is the former international cricketer. And the beautiful field in front of our eyes has both the teams, players, and the two flags. This is the grand finale of 65th edition of Subroto Cup International Football Tournament. Junior boys under 17 category here at Dr. B.R. Ambedkar Stadium in the capital city of New Delhi. It is going to be a clash between Minerva Public School, CISCE, and MIC English Medium Higher Secondary School from the Malappuram district of Kerala. The Kerala team is dressed in red color and the Minerva team, CISCE, in yellow. And both of the teams are just warming up and they're also eagerly anticipating the arrival of meeting and shaking

0: And with the chief guest and the guest of honor, in the center between the two teams are the referees, match commissioner, junior warrant officer Prasanta, main referee Nayak Bhaskar Tamang, to his left, assistant referee 1, Sergeant Anurag, assistant referee 2, Corporal H.C. Joshi, fourth official Sergeant Chandan Kumar Yadav, and the reserve assistant referee today will be Corporal Alicio. So with Suresh Raina right here, I'm reminded, since Ashish, you have done a lot of cricket commentary, even when the cricket match starts, we've seen cricketers playing football. So football is a common denominator.
1: बिल्कुल, फुटबॉल कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी होते हैं उनकी रग रग में बसा होता है। क्रिकेट के मैदान पे भी हमने देखा है कि मैच शुरू होने से पहले वो किस तरह से पूर्वाभ्यास करते हैं फुटबॉल के साथ। और सुरेश रैना इस समय सामने हमें नज़र आ रहे हैं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ, और उनके ठीक पीछे यानी हमारे दाई तरफ अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। और क्या उनकी यादें यहाँ पर इस मैदान के साथ जुड़ी हुई हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सुरेश रैना, जिन्होंने कि कुल मिलाकर अगर बात करें उनके क्रिकेट कैरियर की, तो 18 टेस्ट, 226 एक दिवसीय मुकाबले और साथ ही साथ 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले उन्होंने खेले हैं। लेकिन आज वो मौजूद हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर इस फुटबॉल मैच के शुरुआत होने से पूर्व। इस समय वो धीरे धीरे आज के मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल AP सिंह, PVSM, AVSM के साथ गेस्ट ऑनर के रूप में इस समय सुरेश रैना वहां पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। पीले रंग की जर्सियों में है मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली CISC की टीम, जबकि लाल रंग की जर्सियों में है MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरला की टीम। इस समय खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए और निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ उत्साहवर्धक शब्द ज़रूर वो इन युवा खिलाड़ियों को ज़रूर कहेंगे। और हम सभी जानते हैं कि ये वो मंच रहा है सुब्रतो फुटबॉल टूर्नामेंट, जहाँ पर भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मिले हैं। चाहे आप भाईचुंग भूटिया की बात करें, रॉबिन सिंह की बात करें, सुनील छेत्री की बात करें, ब्रूनो कुटिनो की बात करें, श्याम थापा की बात करें, विक्टर अमलराज की बात करें, ना जाने कितने ऐसे और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से उभर करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह को बनाने में कामयाबी हासिल की है। और इन खिलाड़ियों में हम कहीं ना कहीं भविष्य के सारे देख सकते हैं। भविष्य के वो नामी ग्रामी खिलाड़ी यहाँ पर इस मंच से आते रहे हैं और आते रहेंगे। और इस समय जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं

0: मंच पर अपनी जगह को बनाने में कामयाबी हासिल की है। और इन खिलाड़ियों में हम कहीं ना कहीं भविष्य के सितारे देख सकते हैं। भविष्य के वो नामी ग्रामी खिलाड़ी यहाँ पर इस मंच से आते रहे हैं और आते रहेंगे। और इस समय जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं सुरेश रैना, उनके साथ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, पीवीएसएम एवीएसएम अग्रसर हो रहे हैं केरल की टीम की तरफ एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के खिलाड़ियों के साथ इस समय परिचय प्राप्त करते हुए। और जैसा कि एक परंपरा है, न केवल हाथ मिलाकर इस समय खिलाड़ियों का वो अभिवादन कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। जहां तक दोनों टीमों का सवाल है, तो अब तक मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली की टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में किया है। कुल मिलाकर उन्होंने 41 गोल किए हैं और उनके खिलाफ सिर्फ एक ही गोल दागा जा सका है, जबकि एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम ने 28 गोल किए हैं और 3 गोल उनके खिलाफ हुए हैं अब तक। मुकाबला निश्चित रूप से काफ़ी रोमांचक होने वाला है, काफ़ी संघर्षपूर्ण होने वाला है। सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर जो फ्लड लाइट है वो प्रज्वलित होगी और उसमें ये मुकाबला खेला जाएगा।
1: Yes, so it's a perfect weather to play sports. It's about 32 degrees Celsius and a humidity of 54%, wind blowing at 8 km per hour. And now that all the players and the match referees have been introduced to the chief guest, Air Chief Marshal AP Singh, and guest of honor, Suresh Raina, they're all posing for a group photograph. Suresh Raina is dressed in a light blue blazer and white trousers, but he's got his sporting shoes there. And when a sports person is on the field, one can understand they would always like to play. And he's a member of the World Cup winning team. I'm sure his interaction there with all the players would have motivated these school students who are here with a dream of winning the Subrata Cup.
0: लेकिन सुरेश रैना के ड्रेस सेंस की भी तारीफ करनी होगी। वायुसेना की तरफ से आयोजित किया जाता है ये खेल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तहत ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वायुसेना के जो शर्ट होती है वो नीले रंग की होती है हमारे सैनिकों और अधिकारियों की, और उनसे मिलती जुलती हल्के रंग के नीले ट्राउजर में, बल्कि वहाँ पर मैं कहूँ कि जो उनका कोट है ब्लेजर है उसमें वो आए हैं, तो ये एक सेंस ऑफ ड्रेसिंग भी आप उनकी कह सकते हैं कि अद्भुत है।
1: एंड आशीष, वी ऑल मस्ट हैव सीन सुरेश रैना विद द बैट एंड ही इज अ लेफ्ट हैंडेड बैटर, बट राइट नाउ व्हाट वी हैव जस्ट विटनेस्ड इज दैट ही हैज किक्ड द फुटबॉल, सो सेरेमोनियल किक एंड दैट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ स्माइल्स। Right now he's interacting with some of the veteran footballers and quite a camaraderie as the match is going to begin in few moments from now. There are in excess of 14,000 audience who are gathered here at Dr. Ambedkar Stadium. The two flags in the middle, the FIFA flag in yellow color and Subrata flag in blue color. And most of the people sitting in the audience are school students. They have their placards, they're carrying those musical instruments, they are creating all the noise to pep up the environment. They're excited to witness the grand finale of Subrata Cup Under 17 Boys 2026.
0: So, is samay wapas Suresh Raina apne dharit sthal ki taraf jaate hue, dono teamein beech maidan par qatarbandh khade hui hain. जैसा कि अमित ने बताया कि आज जो दोनों टीमें हैं उनके खिलाड़ियों का आपको परिचय दे दूं। जहां तक फर्स्ट 11 का सवाल है मिनर्वा पब्लिक स्कूल CISC का, उसमें गोलकीपर के रूप में रहेंगे के योहिंगबा, मूसा आशिक, चिंकिन गाबा, सलाम महेश, मोहम्मद आजम खान, साइलेक्स ओइनम टीम के कप्तान, टोनी खुद्रोम, पुनशिबा मैतई, चेतन तिवारी, राज सिंह और के योहिंगबा सिंह। जबकि MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम की तरफ से गोल रक्षक के रूप में रहेंगे प्रत्युष दे, इसके अलावा मोहम्मद शाहिद, रिम टोमी, एनोक एंटोनी, मोहम्मद आदिल, एंटनी जो, मोहम्मद फैजान, जीतू बी जो कि टीम के कप्तान हैं, अमर अजय

0: अद्वैत और तौफीक। और आज बीच मैदान पर रेफरी के रूप में रहेंगे नायक भास्कर तमा, असिस्टेंट रेफरी के रूप में, पहले असिस्टेंट रेफरी के रूप में सार्जेंट अनुराग, और दूसरे असिस्टेंट रेफरी के रूप में कॉर्पोरल एस सी जोशी, फोर्थ ऑफिशियल के रूप में सार्जेंट चंदन कुमार यादव, और रिजर्व असिस्टेंट रेफरी के रूप में कॉर्पोरल अलीशो, और मैच कमिश्नर जूनियर वारंट ऑफिसर प्रशांत था। तो खेल शुरू होने के लिए तैयार हैं। इस समय दोनों ही टीमें एक छोटा सा फोटो सेशन लेते हुए अपने अपने हिस्से में बीच मैदान पर आज की टीम के जो निर्णायक है वो मौजूद हैं, और जो दोनों ध्वज थे फीफा का और सुब्रतो कप का वो इस समय धीरे धीरे मैदान से बाहर की तरफ निकलता हुआ।
1: सो बोथ द फ्लैग्स आर बीइंग टेकन आउट ऑफ द ग्राउंड एंड द चीफ गेस्ट एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर आई हैव आल्सो टेकन देयर पोजीशंस नाउ एज वी आर इंचिंग क्लोजर टू द स्टार्ट ऑफ द मैच। बोथ द टीम्स are getting a group photograph along with the flag of their respective schools, Minerva Public School, CISCE, from Mohali, Punjab. Their best performance so far has been quarterfinal appearance here at the Subroto Cup. Twice they've been in the quarterfinals. This is the first time they've reached the finals. And almost a similar story for the other team, MIC English Medium, HSS, Athanikal, Malappuram District, Kerala. Their best performance has also been the quarterfinals. So both of them have already done their best by reaching the finals, and whosoever wins today, it will be their first win in under 17 boys of Subroto Cup. And I had a chance to speak with some of the footballers ahead of the match, and they said, Ashish, it's a big dream, and if they were to win, it will be like dream coming true for them.
0: जिसमें कोई संदेह नहीं है, कड़ी मशक्कत के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और केरल की टीम के लिए बात करूं तो केरल के फारूक हायर सेकेंडरी स्कूल कोझिकोड की टीम ने पिछले वर्ष यानी कि 64वें संस्करण में अंडर 17 जूनियर बॉयज के कैटेगरी में एमनिटी पब्लिक स्कूल उत्तराखंड की टीम को 2-0 से हराया था, और ये पहला अवसर था जबकि केरल की टीम ने सुब्रतो कप जीता था। क्या आज वो उसकी पुनरावृत्ति कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सामने उनकी चुनौती बहुत मजबूत है। मिनरवा पब्लिक स्कूल मोहाली CISCE की टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में खासा अच्छा प्रदर्शन किया है, और उनकी टीम में जो लय है वो देखने वाली है। जो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन है, जिस तरह से पासिंग करते हैं और जिस तरह से आक्रमण करते हैं, मानो मैदान पर सुनामी आई हो, इस तरीके की आक्रामक फुटबॉल वो खेलते हैं। और साथ ही साथ आक्रामक पंक्ति तो उनकी मजबूत है ही, सुरक्षा पंक्ति में मूसा आशिक जो हैं वो भारत के लिए अंडर 17 फुटबॉल टीम में शिरकत कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनुभव है मिनरवा पब्लिक स्कूल मोहाली की टीम के पास। मुकाबला निश्चित रूप से काफ़ी ज़बरदस्त होगा। इस समय हमारे बाईं तरफ वाले हिस्से में है पीले रंग की जर्सियों में CISCE की टीम, जबकि दाईं तरफ वाले हिस्से में लाल रंग की जर्सियों में MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम।
1: So the decibels are getting higher here. The audience is cheering their respective teams. Both the teams in yellow and red are in a huddle, and in moments from now, we will have the action beginning. A quick word on Air Marshal Subroto Mukherjee, who was the first Indian Chief of the Air Staff, in whose name this tournament exists and has been there since 1960. So total three categories. Two have already seen the result before this. In the junior girls under 17 category, it was Jharkhand team that got the better of NCC by 2-0, and they won that category. In the sub junior boys under 15 category, we had West Bengal as the champion, who got the better of Assam, although the difference there was

0: action is ready to begin in junior boys under 17 category. What's your take, Ashish? Will it be the yellow team, Mohali, or the red, Keralam, who's going to win the trophy today?
1: मुझे लगता है कहीं ना कहीं पलड़ा जरूर वहाँ पर मिनर्वा पब्लिक स्कूल की टीम का भारी रहने वाला है, जिस तरह का प्रदर्शन उनका इस पूरे टूर्नामेंट में रहा है। और अब यहाँ पर औपचारिकताएँ पूरी होती हुई जो मैच कमिश्नर हैं जूनियर वारंट ऑफिसर प्रशांता, वो मुख्य अतिथि एपी सिंह जो कि एयर चीफ मार्शल हैं भारत के, एपी सिंह पीवीएसएम एबीसीएम, वो इस समय उनसे अनुमति लेते हुए इस मैच को शुरुआत करने के लिए, तो अनुमति दी जा चुकी है। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर, रेफरी तैयार हैं इस समय। भास्कर तमांग अपने दोनों असिस्टेंट रेफरी से उन्होंने निगाहें मिलाई, मैच कमिश्नर तैयार वहां पर, और इसके साथ ही शुरुआत होता हुआ इस फाइनल मुकाबले का ये रोमांचक क्षण। शुरुआत में ही आक्रमण करने की कोशिश वहां पर दाईं तरफ से, इस समय एमआईएसआई स्कूल की तरफ से, लेकिन सुरक्षा पंक्ति में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, क्लियरेंस बहुत सफाई से हुआ नहीं, लेकिन इसी बीच गोल रेखा को गेंद पार कर गई और ये गोल किक इस

0: गेंद टच रेखा को पार करते हुए लगातार दूसरा थ्रो इन इस समय पक्ष में जाता हुआ सीआईएससी की टीम के 15 नंबर की जर्सी में पुनशिबा मतई इस समय थ्रो इन करते हुए गेंद एक बार फिर से उनके पास बैक पास के रूप में गेंद मूसा आशिक के पास गोल रक्षक युएनाबा के पास गेंद पहुंचा दिया है जो कि बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स के ठीक ऊपर इस समय पहुंच चुके हैं। गेंद को नियंत्रण करने के साथ ही छोर बंदा दूर वाले छोर पर इस समय आक्रमण करने की कोशिश बाईं तरफ से लेकिन गेंद एक बार फिर से वहां पर पुनशिबा मतई ने संभाला है। एक गोल दाग चुके हैं सेमीफाइनल में वो मुकाबला जो हुआ था उनका असम की टीम के खिलाफ उसमें उन्होंने एक बेहतरीन गोल दागा था और अपनी टीम के लिए 3-0 की जीत को सुनिश्चित किया था। फाउल इसी बीच वहां एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम के खिलाड़ियों का जिसके परिणाम स्वरूप ये फ्री किक इस समय दाएं छोर से सीआईएससी टीम के लिए तैयार वहां पर पुनशिबा मतई साथ में उनके खिलाड़ी खड़े हैं युएनाबा सिंह। युएनाबा सिंह ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया पेनल्टी बॉक्स के ऊपर पहुंची थी गेंद हेड द्वारा क्लियर करने में कामयाबी मध्य रेखा के नजदीक गेंद एक बार फिर से हेड द्वारा पास निकाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए दूर वाले छोर पर इस समय गेंद को अपने कब्जे में किए हुए खिलाड़ी वहां पर सीआईएससी के और फ्रैंक बदला एक लंबा क्रॉस हवा में तैरता हुआ और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर नियंत्रण लेकिन जिस तरह से वहां पर ये फाउल हुआ उसके परिणाम स्वरूप ये फ्री किक इस समय मिलता हुआ एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम को। केरल की टीम के खिलाड़ी इस समय धीरे धीरे गेंद को सरकाते हुए अपने साथी खिलाड़ियों की तरफ बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूर वाले छोर पर इस समय गेंद को रखा एक लंबा शॉट लगाया और गेंद को वहां पर अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी अमर अजीम ने बैक पास के रूप में गेंद को पहुंचा अपने साथी खिलाड़ी के लिए लेकिन गेंद को छीना वहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ इस समय चेतन तिवारी ने जो कि इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए अब तक कुल मिलाकर 9 गोल दाग चुके हैं। लगातार आक्रमण पेनल्टी बॉक्स के बाईं तरफ से खतरा हो सकता है लेकिन गेंद छिटकती हुई एन वक्त पर और गेंद गोल रेखा से बाहर चली गई तो एक अच्छा मूव एक अच्छा अवसर लेकिन बेकार जाता हुआ सीआईएससी टीम के लिए।
1: Well, clearly the first 5 minutes we've seen couple of attacking shots coming from Minerva and the goalkeeper Pratyush Dev is being tested here, the Keralam goalkeeper. But right now, once again a big aerial pass and the moment this aerial cross pass has been given to Muhammad Azam Khan, the right winger for Minerva, the audience certainly going and cheering the yellow team. This time Muhammad Azam Khan giving it back to Chetan Tiwari who gives the ball to the left winger. And that's where they would like to pass it to Raj Singh, who's the attacker. But good interception there by the Keralam team as the foul happens. And the throw will be taken by the Minerva Public School, who is in the yellow jersey. 6 minutes into the progress and goal line still reads 0-0. But certainly, we can see the action happening from both sides.
0: Silex team ke kaptan gend ko rakha aur pass de diya apne bain taraf pahunche huye khiladi ki taraf. गोल रक्षक के पास इस समय गेंद पहुंची है जो कि अपने पेनल्टी बॉक्स से करीब करीब 10-12 गज आगे की तरफ निकल कर आ गए हैं। एक लंबा क्रॉस वहां पर एरियल बॉल बनाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद टच रेखा को पार करती हुई और थ्रो इन इस समय केरल की टीम के लिए। दोनों ही टीमें फिलहाल 0-0 के बराबरी पर हैं। लगभग 9 मिनट का समय अब तक इस पहले हाफ का हो चुका है। गोल करने में अब तक दोनों ही टीमों को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हालांकि सीआईएससी की टीम ने अब तक एक दो अच्छे आक्रमण किए हैं लेकिन उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाए हैं। एक बार फिर से गेंद हालांकि पहुंची थी हाफ में ज़रूर वहां पर सीआईएससी के हाफ में लेकिन फिर से आक्रमण करने की कोशिश वहां पर दाईं तरफ गेंद को निकाला है वहां पर युएनाबा सिंह के लिए। युएनाबा सिंह गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए पेनल्टी बॉक्स के अंदर माइनस किया गेंद को खतरा हो सकता है लेकिन बहुत ही अच्छा बचाव प्रत्युष दे के द्वारा ग्राउंडर शॉट लगाया था लेकिन अच्छे पूर्वानुमान के साथ दाईं तरफ डाइव करते हुए उन्होंने गेंद को रोका उसके बीच एक बार फिर से आक्रमण और इस बार चूक नहीं हुई। पहला गोल इस फाइनल मुकाबले का डालने में कामयाब रहे हैं वहां पर मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली की टीम के खिलाड़ी और क्या शानदार प्रदर्शन। जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि मिनर्वा पब्लिक स्कूल की टीम बहुत ही शानदार फॉर्म में है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अब तक ये प्रदर्शन किया है और आज भी इस फाइनल मुकाबले में खेल के लगभग 10वें मिनट में उन्होंने अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलवा दी।

0: और एक चिर परिचित अंदाज में पूरी टीम गोल करने के बाद ठीक हमारे सामने कतारबद्ध खड़ी हुई और एक सल्यूट दागा उन्होंने वहां पर आज के मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह PVSM AVSM को.
1: Absolutely, I think that was quite a signature celebration in the 10th minute of the game. We've got the first goal that has come from Minerva Public School in yellow jersey. They go 1-0 up, and right after scoring that goal, all the members, including the goalkeeper, came towards the sideline and forming one line and saluting. The game has resumed once again, and the Minerva side would certainly be very happy to get that one goal. That was where the goalkeeper was tested. The Keralam goalkeeper, initially in the 9th minute, Pratyush Dev, dived towards his right, was able to save that goal, but a counter-attack happened, and the next time the goal was conceded. Right now, the possession is with the MIC English Medium Kerala team as they take this corner. And will they be able to get the header to get the equalizer? No. It has been cleared by the goalkeeper of Minerva, Yohenba, as he hits an aerial. And it goes to the other half in the Kerala side. And we've got the Kerala defender, Mohammad Shahir, there taking the possession of the ball. But once again, the midfielder, Chetan Tiwari, who's been in quite an attacking midfielder, getting the ball back from the Kerala side. A foul has been given. So after conceding the first goal, Keralam trying to up the ante and get the equalizer.
0: एक गोल की महत्वपूर्ण बढ़त फिलहाल सीआईसी टीम को हासिल हो चुकी है खेल के 10वें मिनट में और थ्रो इन का अवसर इस समय केरल की टीम के लिए. थ्रो इन के बाद वहां पर बहुत ही आसानी के साथ पुनशिवा मेतई ने गेंद को क्लियर कर दिया हेड के द्वारा. एक बार फिर से थ्रो इन केरल की टीम के लिए. गेंद को वहां पर संभालने की कोशिश में मिनर्वा पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी और गेंद को इस समय योनेबा ने संभाला था लेकिन उनका पास ठीक नहीं हुआ. हालांकि डिफ्लेक्ट होने के बाद गेंद को क्लियर करने में मूसा आशिक ने किसी किस्म की कोई कोताही नहीं दिखाई. इस समय खेल चलता हुआ केरल की टीम के हाफ में दूर वाले छोर पर बहुत तेज़ी के साथ गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश होती हुई कप्तान के द्वारा लेकिन कप्तान सेलेक्स ओइनम ठीक तरह से गेंद को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए. गेंद प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के पैर से टकराती हुई दूर वाले छोर से बाहर चली गई और थ्रो इन का अवसर इस समय मिलता हुआ सीआईएससी की टीम को. थ्रो इन पेनल्टी बॉक्स के अंदर पहुंचता हुआ एक टप्पे के बाद लेफ्ट फुटर लेकिन गोल पोस्ट के बाईं तरफ से लगभग एक या दो गज की दूरी से निकलता हुआ बाहर चला गया और इस तरह से एक अच्छा मौका जो मिला था वहां पर वो बेकार जाता हुआ मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली सीआईसी की टीम के लिए. 1-0 की बढ़त अभी भी हासिल है टीम को. बीच मैदान पर कश्मकश चलती हुई कि गेंद पर नियंत्रण करने के साथ ही वहां गोल दागा जाए अपनी बढ़त को बढ़ाया जाए सीएसए टीम की तरफ से. लगातार आक्रमण हो रहे हैं ठीक पेनल्टी बॉक्स के मुहाने पर एक और लेफ्ट फुटर वहां पर पुनशिवा मेतई के द्वारा लेकिन गोल पोस्ट से इस बार काफ़ी ज़्यादा दूर था और निश्चित रूप से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं गोल रक्षक प्रत्युष देव के लिए. प्रत्युष देव ने गेंद को रखा एक लंबा शॉट वहां पर हेड द्वारा गेंद को क्लियर करने की कोशिश. गेंद को नियंत्रण करते हुए इस समय 9 नंबर की जर्सी में राज सिंह जिन्होंने शानदार प्रदर्शन अब तक किया है कुल मिलाकर 8 गोल दागे हैं. राज सिंह के पास एक बार फिर से गेंद स्लाइड करते हुए गेंद पर नियंत्रण करने की कोशिश पेनल्टी बॉक्स के अंदर लेकिन गेंद हवा में उठी नियंत्रण करने की कोशिश. सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी चौकन्ने थे इस बार केरल के गेंद को उन्होंने क्लियर किया दूर वाले छोर पर गेंद को संभाले हुए इस समय आजम खान गेंद को लेकर आगे बढ़ते कोशिश करते हुए एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया और सीधा वहां पर लेफ्ट फुट से उन्होंने क्रॉस देने की कोशिश कामयाब हुए लेकिन सीधा गोलरक्षक से टकराती हुई गेंद बाहर चली गई.
1: Well, the entire tournament, the entire campaign of Minerva this time has been very, very dominant. It's been a very disciplined effort. They won all 4 league matches, didn't concede a goal, won the quarterfinal without conceding a goal, and in the semi-final they won over Assam pretty convincingly as well. In the quarterfinals, though, they had conceded a goal to Chandigarh. So in all, 41 goals scored, only one conceded. And today they've been able to score the 42nd goal that came from Chetan Tiwari, who's been absolutely brilliant in the attacking midfielder. Right now, Keralam trying to do some counter-attack, but a foul has been called there and the ball will be in the possession of the Keralam fielder there. And Keralam will...

बीच मैदान पर खेल चलता हुआ। एक गोल के बढ़ते समय सीआईसी मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली की टीम को हासिल है एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम के खिलाफ, जो कि 10वें मिनट में गोल किया गया था चेतन तिवारी के द्वारा, और ये टूर्नामेंट में उनका कुल मिलाकर अब तक का 10वां गोल था। कुल मिलाकर 42 गोल अब तक इस टूर्नामेंट में दाग चुकी है मिनर्वा पब्लिक स्कूल। मिनर्वा पब्लिक स्कूल के प्रशिक्षक रंजीत बजाज, जिनके बारे में आप सभी

0: एक की चूक थी वो, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता था और बराबरी का गोल हासिल कर सकती थी केरल की टीम। फिलहाल दाईं तरफ से मूसा के पास गेंद, लंबा थ्रू पास एरियल, लेकिन लेफ्ट स्टॉपर ने गेंद को क्लियर करने की कोशिश की, हेड द्वारा गेंद को एक बार फिर से अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हुए समय सीआईसी के खिलाड़ी, और गेंद इसी बीच इसी कशमकश में हमारे नज़दीक वाली टच रेखा को पार कर गई और थ्रो इन का अवसर इस समय केरल की टीम के लिए, केरल की टीम के खिलाड़ी। एक लंबा थ्रो इन अपने साथी खिलाड़ी तौफीक के लिए, लेकिन तौफीक से काफ़ी ज़्यादा दूर गेंद थी, प्रतिद्वंदी के खिलाड़ी ने क्लियर किया, लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर थ्रो इन का अवसर। गेंद को संभाले इस समय टोनी हुइड्रॉम, बाई तरफ गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन कोई भी साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। प्रत्यात्मन पर इस समय उतारू होती हुई केरल की टीम, मैदान के बीचों बीच गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन सुरक्षा पक्की पूरी तरह से चाक चौबंद, सीआईसी की गेंद को उन्होंने क्लियर किया। मैदान के बीचों बीच इस समय खेल चलता हुआ, गेंद को संभाला इस समय चेतन तिवारी ने, जिन्होंने अपनी टीम के लिए आज का अब तक का एकमात्र गोल किया। गेंद उसके पास बहुत तेजी के साथ देते हुए ट्रिपल करते हुए पहुंचे थे पेनल्टी बॉक्स के अंदर और शॉट लगाना चाहते थे दाएं फुट से, लेकिन सामने सुरक्षा पंक्ति खिलाड़ी के पांव से लगती हुई गेंद छिटकी और इस तरह से अवसर बेकार जाता हुआ। एक लंबा ऊंचा क्लियरेंस राइट फुल बैक का केरल की टीम की तरफ से, गेंद को एक बार फिर से कब्जे में के वहां पर चेतन तिवारी ने, और इस बार बहुत बढ़िया शानदार शॉट टॉप ऑफ पेनल्टी बॉक्स से, लेकिन सीधा गोल पोस्ट के काफी ऊपर से गेंद निकल गई इस अवसर पर। सलाम महेश को गेंद थमाई थी इस अवसर पर चेतन तिवारी ने, और सलाम महेश ने किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती, फर्स्ट टाइमर शॉट लगाया लेकिन दिशा को नियंत्रित नहीं रख पाए और गोल पोस्ट के ऊपर से गेंद निकलते हुए बाहर चली गई। अभी भी एक गोल की बढ़त हासिल है इस समय सीआईसी की टीम को केरल की टीम के खिलाफ अंडर 17 जूनियर बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट के इस फाइनल मुकाबले में, जो कि दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर दूधिया प्रकाश में इस समय खेला जा रहा है।
1: Well, in the 19th minute of the game, another beautiful attacking shot by Chetan Tiwari. It just had a little height, otherwise that would have been the second goal for Minerva. But we would also have to say that Kerala had their very good chance in the 18th minute when there was an error on the part of the goalkeeper for Minerva, Yohimba. He would consider himself very lucky as Kerala once again tried to get the possession of the ball. And this time Taufik, their striker who's already made 8 goals, makes an aerial shot. And this time Yohimba makes no mistake, gets both of his hands to the ball as the goalkeeper for Minerva Public School, CISCE, now passes the ball to the right back, which is their captain, Silex Onam. And he passes the ball back to the goalkeeper. And let's see whether he hits a big aerial shot or passes it to his left back, which he does. So this time, Salam Mahesh has the possession of the ball as the left back, passes the ball back to the goalkeeper. So they're taking their time. They're already 1-0 ahead. They're trying to get possession of the ball and ensure that Kerala doesn't get any chance to. But this time, a big pass, and that was towards the left winger. And another move being made from the left flank. This time there's a cross pass as the ball now comes to the right winger. And it'll be interesting if we've got Mohammad Azhar Khan, who has the ball right now in the right wing, trying to tackle the defenders of Keralan team, who've done reasonably well. Mohammed Shahid and Rim Tony, the two central back, trying to ensure that they do not let the Mohali team penetrate and concede another goal. This time the ball comes back to the Mohali end and goalkeeper passes it to the right back footballer, who passes it back to the goalkeeper. What I observe right now, Ashish, is that since they've already got a lead, the solitary goal, Minerva team is taking their own time.
0: समय अभी काफ़ी बचा हुआ है और डिफेंसिव होना अक्सर घातक होता है। आक्रमण आप कीजिए और समुचित रूप से आक्रमण कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल मिनर्वा की टीम को 1-0 की बढ़त हासिल है केरल की टीम के खिलाफ। सीआईसी की टीम है मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली और एमआईसी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल केरल की टीम। इस समय कश्मकश चलती हुई दूर वाले छोर पर गेंद को अपने नियंत्रण में रखने की, लेकिन गेंद दूर वाले छोर से बाहर चली गई। थ्रो इन का मौका वहां पर केरल की टीम को, बढ़िया प्रदर्शन और वहां पर जैसे ही गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिस तरह से सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी

0: ने वहां पर बाधा पहुंचाई, उसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से ये फाउल दिया जाएगा भास्कर तमांग के द्वारा, जो कि रेफरी हैं, और चेतावनी भी वहां दी जाती हुई खिलाड़ी को कि इस तरह के खेल को खेलने से आप बचें, और पीला कार्ड वहां पर दिखाया जाता हुआ। तो न केवल मौखिक चेतावनी बल्कि पीला कार्ड, और बिल्कुल बनता था क्योंकि वो बिल्कुल गेंद के नज़दीक नहीं थे, दाईं तरफ से आक्रमण हो रहा था। केरल की टीम के आक्रमक पंक्ति के खिलाड़ी गेंद को संभाले हुए काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ निकल रहे थे, और उनके पैर में उन्होंने अपने पैर अटका करके उनको गिराने की जो चेष्टा की, उसके परिणाम स्वरूप ये फाउल। तो फ्री किक इस समय केरल की टीम के लिए, देखना ये है कि क्या इस फ्री किक से वो बराबरी का गोल हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। दूर वाले छोर के दाईं तरफ पेनल्टी बॉक्स से करीब करीब 10 गज की दूरी पर इस समय ये फ्री किक लिया जाता हुआ। केरल की टीम के चार खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स के अंदर किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार, तीन खिलाड़ियों की एक दीवार बना ली है वहाँ पर सीआईसी की टीम के खिलाड़ियों ने, जो कि पीले रंग की जर्सियों में खेल रहे हैं, तैयार फ्री किक के लिए। लंबा शॉट, ताकतवर लेकिन दिशा से काफ़ी दूर, कोई भी खिलाड़ी उसको छू नहीं पाया और गेंद गोल रेखा को पार कर गई, और इस तरह से गोल किक का अवसर इस समय सीआईसी की टीम के लिए। 1-0 के बढ़त सीआईसी की टीम को इस समय हासिल है इस फाइनल मुकाबले में केरल की टीम के खिलाफ। दूधिया रोशनी में ये मुकाबला खेला जाता हुआ, लेकिन जो प्रकाश स्तंभ हैं वो हमारे पीछे वाले जो हैं स्तंभ, वो तो पूरी तरह से प्रज्वलित हैं, लेकिन सामने के दो प्रकाश स्तंभ अभी तक प्रज्वलित नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ रोशनी का जो है अभाव बीच मैदान पर नजर आता है।
1: Well, it's two light lamps right behind. They are providing the light, and in the front we've got the moon trying to compensate some light from the sky. Meanwhile, action happening in the grand finale of the 65th Subruto Cup, as after 25 minutes of play, Minerva Public School, CISCE, lead MIC English Medium High Secondary School, Malappuram, Kerala, 1-0. And that goal has been scored by Chetan. Meanwhile, one yellow card has also been given to the Minerva team. Right now the ball is back again with the Minerva, as they have the possession and they're trying to make more moves from the left flank, as Anthony Joe, the central midfielder, trying to tackle Tony Hudron, the defender midfielder from Minerva. And right now Tony Hudron passes on the ball to Muhammad Azam Khan.
0: तो इस समय केरल के हाथ में खेल चलता हुआ, कश्मकश दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस समय दिखाते हुए कि किस तरह से गेंद को वो अपने नियंत्रण में रखें। बैक पास के रूप में योनेबा के पास गेंद पहुंची है, जो कि बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स से बाहर निकलकर इस समय गेंद को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं, और इस रोचक फुटबॉल मुकाबले का विवरण तो हम जारी रखेंगे ही, लेकिन फिलहाल एशियाई खेलों में क्या कुछ हो रहा है जापान में, उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के लिए हम आपको लिए चलते हैं अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के स्टूडियोज़। भारत के खिलाड़ी वहां पर अपना सर्वस्व झोंकने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के लिए पदक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं एशियाई खेलों में क्या है कुछ ताज़ा समाचार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है शबाब अनवर, एंड द बिग न्यूज दैट वी ब्रिंग टू यू इन द 6:30 लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 इज फ्रॉम द वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल्स। यस, वी हैव आवर इंडियन एथलीट सीमा हु वेंट ऑन टू गेट द ब्रॉन्ज मेडल फॉर अस एंड फॉर हरसेल्फ, क्लॉकिंग अ टाइमिंग ऑफ 32:50.05। शी फिनिश्ड ऑन द थर्ड स्पॉट right behind Bahrain, who grabbed the gold medal, while Japan's Tanaka Nozomi grabbed the silver medal. Good news coming in from the world of athletics, as was much expected. We are hoping that these medals go on increasing, because athletics is one of the big hopes that India is going to be relying on. In the other news from athletics, hum aapko bata de ki women's triple jump ke andar Asha Elango missed out on a medal. Ji haan, Asha Elango could not improve. Unka jo pehla attempt tha, it was of 13.43. Second one was

0: ballot, third attempt was 13.83, fourth was 13.63, fifth was 13.65 and sixth was 13.59. अब आपको ये बता दे कि जो because she missed out on a final, what was the reason for that? It was because she was tied with China's Wai Li, but still with a best of 13.83. But Yai Li had a better second best. जो यहाँ पर आशा इलांगो का second best था, वो invalid consider किया गया था, जबकि China की Yai Li का second best was 13.83 meters, and hence the Chinese went on to get the bronze medal, while आशा इलांगो from India just missed out by a whisker from script. History in women's triple jump today, but maybe better luck next time in life. Definitely. अब बात करते हैं women's heptathlon की in short put, where Pooja moved on to the fourth spot after registering a throw of 11.44 meters in her third attempt. I will carry on with these updates in athletics, but right now it's also time for me to cue back in Shabab, who has some updates to share with all you lovely people. Also,
1: बहुत अच्छी खबर आपने शुरू में सुनाई सीमा कुमारी के, जिन्होंने कांस्य पदक जीता, और अब ऐसे खेल के बारे में जानते हैं जिनका ये मुकाबला शुरू होने से पहले पदक की पूरी उम्मीद सभी को होती है, वो खेल कबड्डी है, आप जानते ही हैं। तो आज के जो मुकाबले कबड्डी में समाप्त हुए हैं, उसमें दोनों वर्गों के सेमीफाइनल की लाइनअप भी तय हो गई है। पुरुष और महिला कबड्डी दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारतीय महिला टीम कल सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार नेपाल के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी, और इसके बाद भारतीय पुरुष टीम सुबह 10:45 पर थाईलैंड से मुकाबला करेगी। और एक यहां पर हम आपको बता दें कि एक अपसेट हुआ है, हालांकि उसका संबंध भारत से नहीं है, टेबल टेनिस का वो स्पर्धा है, और उसमें 1990 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि चीन चैंपियन नहीं बना है। इसमें जापान में आप जानते हैं कि मेंस टीम टेबल टेनिस फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। मेजबान टीम ने गोल्ड छीन लिया है। मेजबान जापान ने चीन को 26 साल लंबे दबदबे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस हार के साथ चीन 1990 के बाद पहली बार एशियन गेम्स के मेंस टीम टेबल टेनिस चैंपियन नहीं बन सका है। तो ये एक उलटफेर बहुत बड़ा हुआ टेबल टेनिस में।
0: हाँ जी शबाब, एंड कैरिंग ऑन दी अपडेट्स ऑफ एथलेटिक्स, आपको ये भी बता दें, आपको हमने ये तो बता दिया वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल्स में सीमा कुमारी ने आज ब्रॉन्ज जीत लिया, लेकिन वही वुमेन्स हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स की हीट वन में अनामिका ने फिनिश किया चौथे स्पॉट पर विद द रिजल्ट ऑफ 14.80। वही वुमेन्स हेप्टाथलॉन 100 मीटर हर्डल्स हीट टू में पूजा फिनिश ऑन द फिफ्थ स्पॉट विद द रिजल्ट ऑफ 14.61। सो हेप्टाथलॉन के सारे इवेंट्स एक साथ जब टोटल किए जाएंगे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस को, आफ्टर दैट वॉट एवर द टोटल स्टैंड्स विल बी द क्यूमुलेटिव फिगर टू डिसाइड कि कौन सा देश फिनिश करेगा इन द टॉप थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये रिजल्ट्स हम आपको कल ही बता पाएंगे, बिकॉज हेप्टाथलॉन के कुछ इवेंट्स कल भी होने वाले दोस्तों, एंड आफ्टर दैट विल बी द फाइनल मेडल टैली काउंटिंग एंड ऑल्सो द टोटल नंबर्स काउंटिंग टू विच विल डिसाइड विच कंट्री स्टैंड्स ऑन विच पोजिशन। एंड अ क्विक वन ऑल्सो इन एथलेटिक्स इज दैट अनिमेश कुजूर एंड गुरिंदर वीर सिंह हैव क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 मीटर सेमी फाइनल एट द एशियन गेम्स। वेल अनिमेश कुजूर हैड अ टाइमिंग विच क्लॉक्ड ऑफ 10.36 सेकेंड्स, while Gurinder Veer Singh had a timing of 10.38 seconds. We'll have to see how that develops on the athletic front. And some good news that has come will leave us with the smile of the 10,000 meter finals in women's, Shabab, जो हमने बताया।
1: और एक अच्छी चीज आज भी रही है कि बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद कोरिया से मुकाबला हॉकी में कड़ा हो, लेकिन भारत ने उसे भी निकाल लिया आसानी के साथ 8-2 से।
0: हाँ जी, हॉकी के अंदर तो दबदबा रहा ही हमेशा से भारत का, हॉकी कबड्डी दी द स्पोर्ट्स वेद वी शुड बी काउंटिंग इन द मेडल्स, एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट क्रिकेट आल्सो, द मेंस क्रिकेट आल्सो, द इंडियन रिप्रेजेंटेशन वी शैल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आल्सो। बट वुमेन्स वर्ल्ड फाइनल की बात कर लेते हैं आज, उसमें क्या हुआ, प्रणति नायक finished 6th in the women's vault, a disappointing performance coming in over there. More updates will carry on in athletics in the next 1 hour. Also, हम अपने सारे listeners को बता दें, फिलहाल आप सबके चेहरों पे ये छोटी सी अच्छी हंसी छोड़कर जा रही है कि सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज ग्रैब कर लिया एथलेटिक्स में इन वुमेन्स 10,000 मीटर्स फाइनल्स। We'll join you back at the 7:30 update. For now, it's Shabab and me, Sakshi, saying goodbye.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: थैंक यू वेरी मच फॉर दैट अपडेट ऑन द एशियन गेम्स 2026। कांग्रेचुलेशंस टू सीमा फॉर विनिंग ब्रॉन्ज फॉर इंडिया इन 10,000 मीटर्स एंड ऑफ कोर्स इन मेंस हॉकी आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया श्रीलंका। इंडिया गॉट द बेटर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया टुडे वेरी इजली 8-2। But one interesting sport that's been included in Asian Games this time, Ashish,

0: उनका सामने प्रतिद्वंदी टीम का खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उसे छकाने की कोशिश और स्ट्राइकिंग सर्कल की वहां पर पेनल्टी बॉक्स के अंदर। ये अच्छा पास था लेकिन ठीक तरह से उसको नियंत्रित नहीं रख पाए। गेंद हालांकि फिर से संभाली है वहां पर सीआईसी टीम के खिलाड़ियों ने, और सेलेक्स ऑयनेम जो कि टीम के कप्तान हैं उन्होंने पेनल्टी बॉक्स से 3 या 4 गज की दूरी से एक लंबा शॉट लगाया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। अभी भी 1-0 की बढ़त हासिल सीआईसी टीम को। लंबा शॉट गोल रक्षक प्रत्युष देव का गोल किक के रूप में। बीच मैदान पर कश्मकश होती हुई दोनों ही खिलाड़ियों के बीच, टीमों के खिलाड़ियों के बीच की गेंद को अपने नियंत्रण में रखें और आक्रमण करें। बाईं तरफ से इस समय आक्रमण करने की कोशिश 11 नंबर की जर्सी में अमर अजीम के पास गेंद पहुंची थी और एक अच्छा पास उन्होंने निकाला था अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन इसी बीच प्रतिद्वंदी उनके पांव से लगती हुई गेंद बाहर की तरफ चली गई उनके साथी खिलाड़ी के पैर से लगती हुई और ये थ्रो इन इस समय है सीआईसी की टीम के लिए। लेकिन वहाँ पर गलत थ्रो इन और उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी देर कर दी थी इस थ्रो इन को लेने के लिए, जिसकी वजह से ये फैसला पक्ष में जाता हुआ अब केरल की टीम के लिए। केरल की टीम के खिलाड़ी थ्रो इन करने के लिए तैयार, वहाँ पर मोहम्मद आदिल का थ्रो इन पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, लेकिन अच्छा क्लियरेंस वहाँ पर सुरक्षा पंक्ति की टीम के द्वारा सीआईसी के, आक्रमण करने की कोशिश लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं, सिर्फ राज सिंह थे जो कि गेंद से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और उसका कोई लाभ उनको मिलने वाला था नहीं। फिलहाल मैदान के बीचों बीच एक बार फिर से आक्रमण करने की कोशिश चेतन तिवारी के पास गेंद, अच्छा समानांतर पास मैदान के बीचों बीच इस समय हाफ में, बल्कि अगर कहूँ कि केरल के हाफ में खेल चलता हुआ तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। एक दूसरे को पास देके, छोटे छोटे पास देके आगे बढ़ने का प्रयास, आक्रमण करने की कोशिश होती हुई योंगबा के पास गेंद, बैक पास के रूप में साथी खिलाड़ी की तरफ निकला था और गेंद इस समय पहुंची है मूसा आशिक के पास। मूसा आशिक ने गोल रक्षक योंगबा की तरफ गेंद को सरका दिया है जो कि पेनल्टी बॉक्स से करीब करीब 8-9 गज बाहर आकर खेल रहे हैं इस समय। एक बार फिर से मूसा के लिए गेंद दाईं तरफ वाले हिस्से में, एरियल बॉल अपने कप्तान के लिए गेंद को निकाला था वहाँ पर साइलेक्स के लिए। साइलेक्स ने एक बार फिर से सुरक्षा पंक्ति में मौजूद खिलाड़ी की तरफ गेंद को निकाला। पिंटो के पास इस समय गेंद है, गेंद को उन्होंने निकाला अपने साथी खिलाड़ी की तरफ। पिंटो मध्य रेखा को पार करने के साथ ही गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को देने में वहाँ पर कामयाब होते हुए एक बार फिर से उनके पास गेंद और एक बढ़िया पास वहाँ पर मिलता हुआ चेतन तिवारी को। दो खिलाड़ी गेंद को उनसे छीनने की कोशिश करते हुए दाईं तरफ योंगबा के पास गेंद, योंगबा के सामने खिलाड़ी मौजूद, पेनल्टी बॉक्स के दाईं तरफ से प्रवेश किया, छकाने की कोशिश करते हुए बहुत बढ़िया ड्रिबल, गेंद अभी भी उनके पास है, बैक पास के रूप में गेंद को दे दिया इस समय पुन शिवा मैतेई के लिए और पुन शिवा मैतेई ने गेंद इस समय बढ़ा दी है एक बार फिर से मूसा आशिक के पास जो कि अपने ही हाफ में मध्य रेखा से करीब करीब 2 या 3 गज अंदर गेंद को अपने नियंत्रण में रखने के बाद गेंद को माइनस कर दिया वहां पर उन्होंने गोल रक्षक योंगबा की तरफ। योंगबा ने दूर वाले छोर पर गेंद को निकाला चिंकेन गानबा के लिए। चिंकेन गानबा इस समय साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए बैक पास के रूप में योंगबा के पास, जानते हैं कि मध्यांतर का समय अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक गेंद को अपने पास रखने की कोशिश इस समय होती हुई सीआईसी टीम के खिलाड़ियों की तरफ और उसमें पूरी तरह से कामयाब होते हुए सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी एक दूसरे को पास देकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दूर वाले छोर पर एक बार फिर से आक्रमण बनाने की कोशिश। क्या कामयाब होंगे? जी नहीं, गेंद को वहाँ पर छीनने में कामयाब केरल का खिलाड़ी और एक लंबा चिप वहाँ पर किया है सीआईसी के हाथ में, लेकिन सुरक्षा पंक्ति में चाक चौबंद मूसा आशिक ने गेंद को वहां पर हेड के द्वारा क्लियर किया। गेंद पहुंची है वहां पर 10 नंबर के खिलाड़ी में समय योंगबा सिंह के पास। योंगबा सिंह ने दूर वाले छोर पर गेंद को निकाला, गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में, लेकिन वहां पर जिस तरह से फाउल हुआ उसके परिणाम स्वरूप ये फ्री किक। हालांकि गेंद को लेकर जब आगे बढ़े थे तो उसके बाद गोंद में डाल दिया था वहां पर गेंद को और रेफरी वहां पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं भास्कर तमांग कि जब मैंने सीटी बजा दी तो उसके बाद आपने गेंद को गोल में क्यों डाला। और इस तरह से आज का ये दूसरा पीला कार्ड भी सीआईसी की टीम के खिलाफ।
1: वेल एब्सोल्युटली, बट इवन दो द गोल वाज स्कोर्ड देयर एंड द ऑडियंस थॉट दैट द गोल वाज स्कोर्ड, देयर वाज अ लिटिल बिट कमोशन, बट इट केम ओनली आफ्टर द विसल वाज ब्लोन। बट मीनवाइल, एंड अनदर अटेम्प्ट एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट बाय केरला।

पूरा करने जा रहा है और पिछला संस्करण जो कि 64वां संस्करण था उसमें कुल मिलाकर 4,351 स्कूल 69,616 प्रतिभागियों ने उसमें शिरकत की थी और ये एक इतना बड़ा आयोजन था कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में उसको जगह मिली। और जिस तरह से स्पोर्ट्स को खेलों का उत्थान लगातार करता आ रहा है निर्बाध रूप से स्पोर्ट्स मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी, उन्हें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिला, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से 2016 में, तो एक बेमिसाल कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा है सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी का भारत में फुटबॉल के प्रचार प्रसार का जहां तक सवाल है। तो मध्यांतर के बाद दूसरे हाफ का खेल शुरू होने वाला है, दोनों ही टीमें मध्यांतर तक एक एक गोल की बराबरी पर, और इसके साथ ही दूसरे हाफ का खेल शुरू होता हुआ रेफरी की एक लंबी सीटी के साथ ही गेंद को समय संभाले हुए हैं मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली के खिलाड़ी CISC। पहला गोल उन्होंने दागा था और मध्यांतर से दो या तीन क्षण पहले बराबरी का गोल दागने में कामयाब रही थी केरलम की टीम। फिलहाल गेंद को बहुत तेज़ी के साथ अपने कब्जे में करने के साथ ही एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस समय बैक पास के रूप में गेंद को बढ़ा दिया है अपने लेफ्ट फुल बैक की तरफ, 5 नंबर की जर्सी में गेंद को इस समय संभाले हुए मूसा आशिक ने गेंद को निकाला 7 नंबर की जर्सी में। इस समय क्या मौका उनके पास है, मोहम्मद आजम खान ने एक लेफ्ट फुटर लगाया ज़रूर था लेकिन काफ़ी कमज़ोर और दिशा से काफ़ी दूर, और परिणाम स्वरूप प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी से टकराने के साथ जैसे ही गेंद गोल रेखा को पार कर गई एक फ्लैग किक वहां पर मिल गया इस समय CISC की टीम के लिए। CISC टीम के खिलाड़ी इस समय भरपूर कोशिश करेंगे कि शुरुआत में ही वो बढ़त हासिल कर लें। 6 खिलाड़ी इस समय पेनल्टी बॉक्स के अंदर और उसमें ज़्यादातर की एकाग्रता गोल बॉक्स के आसपास एक बिल्कुल मैदान पर तैरता हुआ छोटा सा पास 9 नंबर की जर्सी में राज सिंह गेंद को अपने नियंत्रण में रखे हुए पुनशिबा के पास गेंद है। पुनशिबा मेहताई ने कोशिश वहां पर ज़रूर की लेफ्ट फुटर से गेंद को चिप करने की लेकिन अपने इरादे में कामयाब ठीक तरह से हुए नहीं। प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी से गेंद टकराते हुए गोल रेखा को एक बार फिर पार कर गई और यह लगातार दूसरा फ्लैग किक इस समय CISC की टीम के लिए। पुनशिबा मेहताई का एक ऊंचा हवा में तैरता हुआ ये शॉट गोल बॉक्स के ठीक मुहाने पर गेंद को हेड करने की कोशिश लेकिन वहां पर फाउल करार दिया गया और परिणाम स्वरूप ये फ्री किक इस समय मिलती हुई केरलम की टीम के लिए। केरलम की टीम के स्टॉपर बैक ने एक लंबा किक लगाया, गेंद पहुंची है वहां पर CISC के हाफ में, समानांतर पास के रूप में मूसा के पास गेंद है इस समय। मूसा गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए एक तिरछा एरियल पास निकाला दूर वाले छोर पर, क्या कामयाबी मिल सकती है आयुम्बा को वहां पर, लेकिन उनसे प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी जैसे ही गेंद को छीनना चाहते थे उनके पैर से गेंद टकराती हुई दूर वाले छोर को पार कर गई और थ्रो इन इस समय मिलता हुआ CISC की टीम को। CISC की टीम आक्रमण करने की कोशिश, दाईं तरफ से मूव बनाने का प्रयास होता हुआ लेकिन अभी तक एक सटीक मूव बनाने में कामयाब नहीं हुए। मध्यांतर के बाद के खेल का जहां तक सवाल है दोनों ही टीमें इस फाइनल मुकाबले में फिलहाल एक एक गोल की बराबरी पर हैं। दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला अंडर 17 जूनियर बॉयज वर्ग के लिए खेला जाता हुआ। इससे पहले अंडर 15 सब जूनियर और अंडर 17 जूनियर गर्ल्स के मुकाबले संपन्न हो चुके हैं। एक बार फिर से पेनल्टी बॉक्स के ऊपर गेंद को चिप करने की कोशिश, गेंद को वहां पर क्लियर किया सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने केरलम के, लेकिन गेंद को एक बार फिर से संभाला है मूसा ने अपने ही हाथ में मध्य रेखा से करीब करीब 7 या 8 गज अंदर की तरफ अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखने के साथ ही बैक पास के रूप में गेंद को निकाल दिया इस समय योहिनबा के लिए। योहिनबा पेनल्टी बॉक्स से करीब करीब 8-10 गज बाहर निकलकर गेंद को अपने पैरों में नियंत्रित करते हुए मूसा के लिए गेंद को एक बार फिर से निकाला, मूसा ने थ्रू पास के रूप में गेंद को निकाला है खूबसूरती के साथ मोहम्मद आजम के लिए, मोहम्मद आजम को एक बार फिर से गेंद मिली, अच्छा पास वहां पर पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, खतरा हो सकता है।

नंबर की जर्सी में वहां पर गेंद संभाली थी उनका खिलाड़ी ने और उसके साथ ही बहुत ही बढ़िया गोल करने में कामयाब रहे पुंशीराम मेथई। पुंशीराम मेथई ने सीआईएस के लिए दूसरा गोल दाग दिया है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम को इस फाइनल मुकाबले में 2-1 से आगे कर दिया है। क्या शानदार प्रदर्शन मोहम्मद आजम को गेंद मिली थी समानांतर पास के रूप में, उन्होंने वहां पर राज सिंह को निकाला गेंद को और राज सिंह ने वहां पर अपने पीछे की तरफ खड़े हुए खिलाड़ी की तरफ दिया था और उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरह से ये बेहतरीन गोल करने के साथ ही अब उन्हें 2-1 की बढ़त हासिल हो गई है। इसी बीच एक सब्स्टिट्यूशन होता हुआ, चेतन सिंह 16 नंबर की जर्सी में इस समय मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं सलाम महेश के स्थान पर। पहला परिवर्तन होता हुआ मिनर्वा पब्लिक स्कूल मोहाली सीआईसीए की टीम के द्वारा, प्रत्युष देव गेंद को संभाले हुए धीरे धीरे गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए पेनल्टी बॉक्स से बाहर की तरफ निकले, अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देख रहे हैं, बल्कि वहां पर माफ कीजिएगा योइंगबा थे जो कि सीआईसी के टीम के गोल रक्षक हैं। गेंद को निकाला अपने साथी खिलाड़ी मूसा के लिए, मूसा एक बार फिर से पास निकालना चाहते थे वहां पर चेतन सिंह। चेतन सिंह का प्रदर्शन खासा अच्छा रहा है परिवर्तित खिलाड़ी के रूप में, अक्सर वो अब तक इस टूर्नामेंट में मैदान पर उतरते हुए नजर आए हैं, एक हैट्रिक के समेत कुल मिलाकर 6 गोल अब तक उन्होंने दागे हैं और कोच रंजीत बजाज की निश्चित रूप से उनसे काफ़ी अपेक्षाएं होंगी कि आज भी कमे बेश उसी तरह का वो प्रदर्शन करें। दूर वाले छोर पर क्रॉस पेनल्टी बॉक्स के अंदर, हेड द्वारा गेंद को गोल में डालने की कोशिश वहां पर जरूर की थी लेकिन गेंद को ठीक तरह से नियंत्रित नहीं कर पाए थे इस अवसर पर मोहम्मद आजम खान। मोहम्मद आजम खान बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए, पहले हाफ में भी उन्होंने खासा अच्छा प्रदर्शन किया था, बढ़िया सटीक पासिंग का मुजाहरा इस समय होता हुआ सीएसए की टीम के द्वारा। सीएसए की टीम के खिलाड़ी दूसरे हाफ में बेहतर तालमेल के साथ आक्रामक मुद्रा में इस समय नज़र आ रहे हैं और हो भी क्यों ना, एक शानदार टीम है, इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन उनका रहा है। इस मैच से पहले कुल मिलाकर 41 गोल उन्होंने दागे हैं। प्रत्याक्रमण हालांकि इस समय होता हुआ वहां पर केरलम की टीम की तरफ से लेकिन सुरक्षा पंक्ति पूरी तरह से चाक चौबंद, गेंद को छीना, एक लंबा शॉट हवा में तैरता हुआ पहुँच रहा है इस समय प्रत्युष देव के पास जो कि गोल रक्षक हैं केरलम की टीम के। गेंद को उन्होंने संभाला, अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देख रहे हैं, एक लंबा शॉट वॉली शॉट लगाकर गेंद को पहुंचाया था उन्होंने सीएसए के हाफ में लेकिन मूसा ने वहां पर गेंद को क्लियर किया। सीएसए के खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हुए लेकिन गेंद वहां पर छिटके, गेंद को अपने कब्जे में करने का कोशिश जरूर किया था वहां पर अद्वैत ने लेकिन गेंद उनसे लगती हुई अंततः हमारे नज़दीक वाली टच रेखा से बाहर चली गई और थ्रो इन इस समय सीआईसी की टीम को। लंबा थ्रो इन 7 नंबर की जर्सी में मोहम्मद आजम को देना चाहते थे लेकिन एक बार फिर से अवसर बन चुका है इसी बीच सीआईसी की टीम के लिए इस थ्रो इन का। अब मध्यांतर के बिल्कुल मध्य रेखा के बिल्कुल नज़दीक इस समय थ्रो इन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां पर सीआईसी की टीम के खिलाड़ी। थ्रो इन के बाद वहां पर मोहम्मद आजम की कोशिश इस बार नाकामी साबित होती हुई लेकिन फिर से गेंद को संभालने में कामयाबी जरूर हासिल कर ली है वहां पर राज सिंह ने लेकिन राज सिंह से गेंद को छीना वहां पर और राइट फुल बैक के स्थान पर खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर कर दिया केरलम की टीम के।

0: Ujjiva throws that ball outside the sideline, so a throw-in will be awarded. To the Keralam side, meanwhile, one of the players of MIC English Medium High Secondary School, Athanikal Kerala, is lying on the ground, needs some medical attention. So the physio of their team, Amal Lal, is running in, and he's addressed him with some succor, but looks like he's coming out and there'll be a substitution. So in comes the substitute fielder, as the physio will ensure that the player is given adequate medical attention. Injury is also part of the game, and it teaches you, sports teaches you how to be resilient, not to give up. And we've seen things changing pretty fast in the last quarter. Whenever we talk about the last 5 minutes, 10 minutes, that is where the real endurance is tested, Ashish.
1: बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अमित. और वहाँ पर तौफीक इंजर्ड हुए थे, MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल खिरलम के खिलाड़ी. इस समय वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वापस उन्हें अनुमति मिले मैदान में उतरने की. फिलहाल आक्रमण CIC टीम की तरफ से होता हुआ, सैलेक्स के पास गेंद थी, जो कि टीम के कप्तान है. समानांतर पास के रूप में दूर वाले छोर की तरफ गेंद को सरका दिया है. पुनशिबा के पास इस समय गेंद है. पुनशिबा मैथेई ने बैक पास के रूप में गेंद को निकाला है इस समय चेंगिन गानबा के लिए. चेंगिन गानबा ने एक बार फिर से सैलेक्स को बढ़ा दिया है गेंद, और वहाँ पर मध्य रेखा के नज़दीक गेंद को अपने नियंत्रण में करने के साथ ही गेंद को बढ़ा दिया था मूसा के लिए. मूसा का वहाँ पर एरियल पास, फॉरवर्ड पास, लेकिन दिशा से दूर, गेंद हमारे टच रेखा को पार करती हुई, थ्रोइंग इस समय केरलम की टीम के लिए है द्वारा.

केरलम के हाफ में। बैक पास के रूप में हमारे नज़दीक वाले छोर पर इस समय मूसा के पास गेंद, मध्य रेखा के करीब करीब एक गज अंदर से एक लंबा एरियल पास, तिरछा बिल्कुल दूर वाले छोर पर युनबा के लिए। देखना यह है कि क्या वो ड्रिबल करते हुए गेंद को अपने नियंत्रण में करने में कामयाब हो पाते हैं। अंततः उन्होंने गेंद को अपने नियंत्रण में किया और पास के रूप में अपने साथी खिलाड़ी को बताया और पेनल्टी बॉक्स के ठीक ऊपर से एक राइट फुटर जिसे आसानी से रोकने में कामयाब रहे वहां पर प्रत्युष देव। 3-1 की एक महत्वपूर्ण बढ़त अभी भी हासिल है इस फाइनल मुकाबले में। सीआईसी टीम को मिनर्वा पब्लिक

0: है प्रशिक्षक रंजीत बजाज को, ये देखते हुए कि मूसा आशिक वहां पर चोटिल हो गए थे और उनके स्थान पर अब सामते को 13 नंबर की जर्सी में मैदान पर उतारा है। फिलहाल 3-1 की बढ़त है SCIC की टीम के पास और दूसरे हाफ का लगभग 26 मिनट का खेल अब तक हो चुका है और 3-1 की बढ़त इस समय हासिल है CISA की टीम के लिए। बैंक तरफ से आक्रमण करने की कोशिश सेलेक्स के पास जो कि टीम के कप्तान हैं, गेंद उनके पास, यूएन बा के लिए गेंद निकाली, दाएं छोर पे गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए ड्रिबल किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, एक खिलाड़ी को छकाया, अच्छा पास ठीक पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, समानांतर पास दिया था और एक ताकतवर शॉट लेकिन इस बार गोल पोस्ट से काफी ऊपर बाहर निकल गया। थोड़ा नीचे होता तो परीक्षा निश्चित रूप से वहां पर प्रत्युष देव की हो सकती थी और हो सकता था कि चौथा गोल भी वहां पर CISA की टीम को मिल जाता, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाए, काफ़ी ऊंचा शॉट खेल बैठे, हालांकि काफ़ी ताकतवर शॉट था लेकिन उसका फ़ायदा वहां पर कोई नहीं मिला CISA की टीम। मैदान के बीचों बीच इस समय खेल चलता हुआ, प्रत्याक्रमण करने की कोशिश वहां पर ज़रूर हो रही है केरलम की टीम के खिलाड़ियों की तरफ से लेकिन उसका कोई लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिला है। दूर वाले छोर पर इस समय तौफीक तैयार हैं, थ्रो इन वहाँ पर, देखना यह है कि क्या इस समय उसका कोई फ़ायदा उठा पाते हैं या फिर नहीं। दुधिया प्रकाश में दिल्ली के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर यह मुकाबला इस समय चलता हुआ, फाइनल मुकाबला सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का अंडर 17 जूनियर बॉयज के लिए। और बहुत बढ़िया वहां पर नियंत्रण और बहुत बढ़िया कोशिश इस अवसर पर कहना होगा MIC इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के खिलाड़ियों की तरफ से। केरलम की टीम के खिलाड़ी को जैसे ही वहां पर गेंद मिली थी थोड़ा सा वहां पर वो पलटे और उसके बाद गेंद को उन्होंने नियंत्रित करने के साथ ही लेफ्ट फुटर जमाया था लेकिन उसका वहां पर कोई फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा। अभी भी 1-3 से पिछड़ी हुई है केरलम की टीम इस मुकाबले में। समय बहुत तेज़ी के साथ खिसकता हुआ निकलता हुआ इस फाइनल मुकाबले में, पूरी तरह से इस मुकाबले में अब तक बढ़त और अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रही है मिनरवा पब्लिक स्कूल मोहाली CISA की टीम और उनके प्रशिक्षक रंजीत बजाज लगातार अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। 3 परिवर्तन अब तक रंजीत बजाज कर चुके हैं और ये तीनों ही परिवर्तन खेल के दूसरे हाफ में किए गए हैं उनके द्वारा, जबकि केरलम की टीम की तरफ से अब तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो कहना होगा अमित, एक शानदार फुटबॉल देखने को आज मिली है। हालांकि फुटबॉल जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि चोट लगना कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। अब से थोड़ी देर पहले मूसा आशिक चोटिल होकर मैदान से बाहर निकले थे और उनके स्थान पर सामते ने जगह ली थी और लगातार उसके बाद जो प्रक्रिया है आक्रमण करने की वो जारी है और कहीं ना कहीं केरलम की टीम इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती है कि मूसा आशिक जो हैं वो काफ़ी एक मजबूत स्तंभ हैं उनकी सुरक्षा पंक्ति में और अब उनकी अनुपस्थिति में कहीं ना कहीं उसका लाभ उठाने की कोशिश वो करना चाहते हैं। फिलहाल ये फ्लैग किक मिलता हुआ, पहला फ्लैग किक केरलम की टीम के पक्ष में लेकिन उसका कोई लाभ नहीं, हालांकि थ्रो इन ज़रूर वहां पर मिल चुका है केरलम की टीम।
1: So Kerala team getting throw in there and their captain G2B and that's been a nice shot and Kerala scores another goal there. So it's 3-2 now and Kerala team will be absolutely upbeat. The throw in has been converted into a goal. Kerala was trying to make inroads into the Kerala side. The audience cheers, the crackers go into the sky and even as we enter the last 7 minutes of this second half, things are getting exciting here. So many would have thought Minerva probably is going to win this under-17 boys easily. Keralam side is saying hold on, we are here to compete too. So a nice second goal being scored there, the throw in, and that was converted into a goal by a combination of G2B, the captain Taufik, and Advait, who've been brilliant in the entire tournament. So it's 3-2 in the second half as we've got the ball being thrown in from the Keralam right back player and the Minerva fielder

0: striker has been able to successfully intercept, and he hits a long shot, and that was on top of the goalpost.
1: तो दो तीन से हालांकि समय केरलम की टीम में पिछड़ी हुई है. फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं ताज़ा तरीन एशियन गेम्स की अपडेट के लिए आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: हेलो एंड a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. दोस्तों, मैं हूं साक्षी मांड.

0: वालों मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शाबाब अनवर एंड द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे इज कमिंग एंड हैज कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स. जी हाँ, द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द डे शुड आई बी सेइंग इज दैट इंडिया वेंट ऑन टू विन द सिल्वर मेडल इन 4x400 meter रिले मिक्स्ड इवेंट. द क्वार्टेट ऑफ पूवम राजू, विशाल थेनारासु, विद्या रामराज एंड मनु टीएस हु वर रिप्रेजेंटिंग इंडिया मेड श्योर दैट इंडिया finished with that coveted silver. At one point it looked that we might have to suffice with the bronze, but we were able to get that coveted silver for us. And also let me just inform all our listeners over here that India have already won the gold in 2018 and also the silver in 2022, and now we've been able to make sure that we maintain that silver once again into the 4x400 meter relay mixed event. Shabab,
1: yeah bilkul, aur ab us samay aa gaya hai shayad 5th-6th din ke baad ke लगातार जो भारतीय एथलीट हैं वो अपना दबदबा बरकरार रखेंगे सभी खेलों में. कल कबड्डी का दोनों सेमीफाइनल है, लगभग पदक पक्का कर लिया है दोनों ही टीमों में. और आप जानती हैं कि किस प्रकार से अपने स्वर्ण पदक की रक्षा भारत को करनी है कबड्डी के खेल में. जापान को जिस तरह से अपने अंतिम मैच में हराया है, 50-25 का अंतर था, तो कोई भी मुकाबला ऐसा नहीं हुआ है, अगर एक मुकाबले को शायद हम छोड़ दें, जिसमें ऐसा लगा हो कि भारतीय कबड्डी खिलाड़ी चाहे पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो कहीं पर कांटे की टक्कर हुई हो. बहुत ही आराम के साथ हॉकी में भी और कबड्डी में भी. हॉकी में देखिए, कोरिया से कहा जा रहा था कि शायद कोरिया की टीम जो है थोड़ी सी मजबूत साबित हो, लेकिन कोरिया को हमारी भारतीय हॉकी टीम ने आसानी से 8-2 से पराजित किया. तो जिन खेलों में हमारे पास अच्छी शक्ति है उधर बहुत अच्छे तरीके से चीजें जा रही हैं.
0: राइट, आई विल गिव अ क्विक अपडेट ऑन ऑल द रिमेनिंग एथलेटिक इवेंट्स आल्सो दैट हैपेंड टुडे, वेयर सीमा कुमारी डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट एथलेटिक मेडल ऑफ एशियन गेम्स 2026 बाय विनिंग द ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स 10,000 मीटर फाइनल टुडे. सीमा फिनिश्ड विद द टाइम ऑफ 32:50.05 एंड बैग्ड द नेशंस फर्स्ट मेडल इन द इवेंट इन 16 years. जी हाँ, 16 साल में पहली बार हमें ये पदक मिला है. अर्लिया आशा लांगो नैरली मिस्ड आउट ऑन अ हिस्टोरिक फर्स्ट वुमेन्स ट्रिपल जंप मेडल. शी फिनिश्ड विद द सेम बेस्ट रो एज द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बट मिस्ड आउट ड्यू टू अ वर्स सेकेंड बेस्ट अटेम्प्ट. वहीं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर क्वालिफाइड फॉर द मेन्स 100 meter सेमी फाइनल्स विद टाइमिंग्स ऑफ 10.38 seconds एंड 10.36 seconds रिस्पेक्टिवली. हेप्टाथलॉन में पूजा और अनामिका अनीश are not in the medal positions with 3 more events to go. Kal aur zyada clear ho jayega ki Bharat ki standing kis prakar rahegi medal table mein aur khaas taur se athletics ke andar. Rowing ke andar bhi aapko quick update de diye, the day started off with a medal first of all that came from the men's double sculls final, jiske andar humne dekha kis tarah se Satman Singh aur Salman Khan ne aaj teesre sthan par men's double sculls mein with a timing of 6 minutes 13.25 seconds ke saath Bharat ko aaj ke din ki early morning shuruaat mein bronze medal दिलवाया था. शबाब,
1: जी बिल्कुल, शुरुआत तो आज सुबह में अच्छी रही. पहले सिल्वर सबसे पहले, फिर ब्रॉन्ज, और उसके बाद फिर थोड़ा सा दिन में ऐसा लगा था कि सन्नाटा सा हो गया है, लेकिन अंतिम समय पर यह सन्नाटा पूरी तरह से चीरते हुए एक तरह से भारतीय एथलीटों ने फिर से जगा दिया है भारतीय खेल फैंस को. एक
0: जी सन्नाटा इतना तो हुआ नहीं था, क्योंकि यस, एक साइड पे हमने देखा रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान, कैसे उन्होंने हमें ब्रॉन्ज दिलाया. उसी के साथ साथ वुशु ने भी आज सबसे बड़ी खबर दिन की हमें दी थी, जहां रोशिबिना देवी ने वुमेन 60 kg फाइनल्स में आज भारत को सिल्वर मेडल दिलवा दिया. यस, वंस अगेन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ दैट शी, दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट हैपेंड बिकॉज शी वॉज एबल टू गेट अ हैट्रिक ऑफ मेडल्स. आपको बता दें ब्रॉन्ज उन्होंने 2018 में कमाया था, उसके बाद 2022 में भी उनको सिल्वर मेडल से नवाजा गया था, और अब उन्होंने इस साल के एशियन गेम्स 2026 में हैट्रिक ऑफ मेडल्स कंप्लीट कर लिया. सो अनदर गुड थिंग दैट हैपेंड फॉर द इंडियंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुशु. शूटिंग के अंदर शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि बहुत ही निराशाजनक खबरें आ रही थी, लेकिन अंत में चलते चलते हमारे शूटर्स ने मिक्स टीम स्कीट फाइनल्स के अंदर हमें खुशखबरी दिलवाई दी थी, क्योंकि उन्होंने हमें दिला दिया ब्रॉन्ज मेडल. एंड विद दैट समहाउ इंडिया कुड से दैट वी फिनिश्ड ऑफ ऑन अ सैटिस्फाइड नोट. मेडल टेबल में भारत की पोजीशन है 15th इस समय. 16 मेडल्स आ चुके हैं भारत के पास, जिसमें से एक गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है. वी आर होपिंग दैट इंडिया गोज ऑन टू इम्प्रूव इट्स पोजिशन इन द कमिंग डेज इन द ऑन गोइंग कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स 2026. इसके साथ आपको बता दें कि आज की अपडेट तो यहीं पर आके समाप्त होते हैं शबाब, लेकिन हम कल सुबह एक बार फिर 9:30 बजे से अपने श्रोताओं के साथ आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे, ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 एवरी आवर. फॉर नाउ

0: So, Ashish, how would you describe the action as it unfolds and resumes further?
1: मिनर्वा की टीम भरसक प्रयास के जो 3-2 की बढ़त उनके पास है उसे और मजबूत किया जाए और यही सही रणनीति भी है क्योंकि अगर आप डिफेंसिव हो जाते हैं सुरक्षात्मक ढंग से खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है जैसा कि हमने पहले हाफ के अंतिम क्षणों में देखा था कि बराबरी का गोल दागने में कामयाब रही थी केरलम की टीम। फिलहाल एक लंबा एरियल शॉट और पहुँचा सीधा वो वहाँ पर केरलम के हाफ में बल्कि CIC के हाफ में और वहां पर गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश इस समय करते हुए लेफ्ट फुल बैक लंबा थ्रू एरियल पास लेकिन टच रेखा को पार करता हुआ थ्रू इन इस समय मिलता हुआ केरलम की टीम को। केरलम के एंटोने इस समय थ्रू इन लेने के लिए तैयार हैं। 4 खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स के अंदर इस समय मौजूद उस थ्रू इन को लेने के लिए एक लंबा थ्रू इन हेड द्वारा गेंद को नियंत्रित करने की कोशिश वहां पर तौफिक के द्वारा लेकिन कामयाब नहीं हुए। प्रत्याक्रमण पर इस समय CISA की टीम बाईं तरफ से बहुत तेजी के साथ आक्रमण करती हुई 9 नंबर की जर्सी में गेंद को संभाले वहां पर राज सिंह के सामने खिलाड़ी मौजूद ड्रिबल करने के साथ ही उनको छकाया पेनल्टी बॉक्स के अंदर प्रवेश बाईं तरफ से समानांतर पास खतरा हो सकता है लेकिन इस बार सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने बहुत आसानी के साथ गेंद को वहां पर क्लियर कर दिया। तो अमित कहीं ना कहीं इस तरह के खेल के लिए ही जानी जाती है मिनर्वा पब्लिक स्कूल की टीम कि जिस तरह से वो आक्रमण और प्रत्याक्रमण करते हैं वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ हैं और जो पासिंग है उनकी वो बहुत ज्यादा सटीक है।
0: आई थिंक वी जस्ट विटनेस्ड फ्रॉम द लेफ्ट फ्लैंक हाउ ब्यूटीफुली द लेफ्ट विंगर क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर मूव एंड वाज वेरी स्ट्रांग ऑन द लेफ्ट फुट एज वेल हैड इट बीन आल्सो रिसीव्ड वेल बाय द कपल ऑफ अदर फॉरवर्ड्स देयर That could have resulted into the fourth goal for Minerva. But even though they have not scored the goal, yet you can see all of these attacking shots are creating pressure on the Keralam side. Right now the counter-attack has happened and the ball has gone to the other half where Keralam side is trying to penetrate the penalty area of Minerva. This has gone outside the sideline. The goal, the referee indicates

0: On behalf of the entire team out here, from my co-commentator Ashish Chirogu, this is Amit Arora taking you back to the Akashwani studios. Thank you.
1: अभी आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत खेले गए अंडर 17 बालक वर्ग के फुटबॉल फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। आंखों देखा हाल सुना रहे थे हिंदी में आशीष कुमार चरंगू और अंग्रेजी में अमित अरोरा।
2: यू हैव बीन लिसनिंग टू द लाइव कॉमेंट्री ऑफ द बॉयज अंडर 17 फाइनल मैच ऑफ सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 played at Dr. Bhimrao Ambedkar Stadium, Delhi. Our commentators were Ashish Kumar Chirangu in Hindi and Amit Arora in English. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू हिट्स एंड मेमोरीज ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो ब्रॉडकास्टिंग एट 102.6 मेगाहर्ट्ज। टुनाइट वी आर टेकिंग अ लिटिल म्यूजिकल टाइम मशीन, बट डोंट वरी, देयर आर नो डेट्स टू मेमोराइज एंड सर्टेनली नो हिस्ट्री एग्जाम एट द एंड। जस्ट सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, फैमिलियर वॉइसेस एंड अ फ्यू स्टोरीज हाइडिंग बिहाइंड देम। सो लेट्स बिगिन। वी बिगिन विद रॉय अकफ एंड अ सॉन्ग दैट प्रूव्स दैट कंट्री म्यूजिक हैज नेवर बीन अफ्रेड टू टेल अ सीरियस स्टोरी। रैक ऑन द Highway isn't a love song or a sentimental ballet. It's a cautionary tale about witnessing the aftermath of a road accident. Quite remarkable when you think about it. Taking something disturbing from real life and turning it into a song that makes people stop and listen. So let's begin this journey with Roy Acuff's Wreck on the Highway.

0: That was Wreck on the Highway by Roy Acuff. It's time now for a short break, but don't go anywhere because we'll be right back.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: That was The Drifters with The Unchained Melody. It's time now for another break, but don't go anywhere because we'll be right back.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. Phir aaya entertainment ka revolution, jab kone kone pahuncha Doordarshan. Kahani nahi badli, style gaya hai badal. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात.
4: दिल के तराने.

संवाद किया। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदले स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने बताया है कि उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 63वें सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। वहीं पुरुष कबड्डी टीम चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये थे अब तक के FM रेनबो पर मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जगाती है कयामत कोई।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 8:04। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। यह है 102.6 FM रेनबो। मैं हूँ गीता। ठीक 9 बजे तक आपका और मेरा साथ यूं ही बना रहेगा। मस्त मस्त गाने होंगे आपके सुनाने के लिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NEC

0: पर। मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:17। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, ये है 102.6 FM रेनबो। मैं हूँ गीता।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हाँ जी, टाइम हो चला है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:35। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, यह है 102.6 FM रेनबो और मैं हूँ गीता।

वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 8:55। ताहिर आ चुके हैं स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा सा प्रोग्राम लेकर। प्रोग्राम का नाम है आपकी याद आती रही, वो आपके साथ रहेंगे। मैं चलूंगी, टाटा बाय बाय कहूंगी, गुड नाइट कहूंगी, फिर मिलूंगी, बाय।

लीजिए पेश हैं एफएम पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर जैसी अनगिनत योजनाओं को देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की

की आवश्यकता पर बल दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की सचिव एस कृष्ण ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% निर्माण विनिर्माण होता है। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क में कटौती की है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में सद्भावना सम्मेलन में न्याय सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत का आह्वान दोहराया। दिल्ली के नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बाल भवन में नया रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया। उड़ीसा में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण एशिया में बने गहरे निम्न दबाव के कारण तेज बारिश हो रही है और जापान में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने मिश्रित रिले दौड़ और वुशू में रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल्स स्कल रोइंग और मिश्रित स्कीट शूटिंग में कांस्य पदक हासिल किए। ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जनाब रात के 9 बजते ही हवाओं का मिजाज कुछ बदल ही जाता है। दिन भर की भाग दौड़ रुक जाती है, कमरे की बत्तियां मध्यम होने शुरू हो जाती हैं और खामोशी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो गुजरते नहीं बस ठहर जाते हैं, किसी पुरानी डायरी के पन्नों की तरह, किसी भीगे मौसम की महक की तरह। आदाब, मैं हूं आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक। अगले एक घंटे हम उन्हीं खामोश दास्तानों की आवाजें देंगे और जो संगीत बनकर आपके दिलों में गूंजती रहेगी और गूंजती है। तो चलिए शुरू करते हैं यही प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं आपकी याद आती रहेगी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक ताहिर आप लोगों के बीच में है। प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही जो आपको कुछ ना कुछ याद दिलाती रहती है। एक ऐसी धुन जो दिल के तारों को छेड़ कर निकल जाए, जो लफ्ज खुद ब खुद बेमानी लगने लगे। कभी कभी लगता है कि कुछ गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, एक आईना होते हैं जिसमें वो अपना रूप देखते हैं, जो शायद दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं, है ना? ऐसा होता है ना, रात ढल रही है, जज्बात थोड़े नुमाया हो रहे हैं। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत सुर के साथ, ध्यान सुनिएगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक. मैं हूं आपके साथ, ताहिर. प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा, जिसे हम बोलते हैं आपकी याद आती रही. आपने कभी गौर किया है कि जब बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरती हैं तो खुशबू उठती है? बिल्कुल वैसी ही महक इन गीतों से आती है ना? ना कोई शोर, ना कोई फिजूल बात, ना कोई फिजूल जल्दबाजी, बस एक ठहराव जो बेचैन दिलों को सुकून दे जाए. अगर आप भी खिड़की के पास बैठकर तारों को ताक रहे हैं तो महसूस कीजिए इस हवा के झोंके को, जो किसी आहट की बनकर, यानी किसी की आहट बनकर गुजर रही है आपके पास से. अगला गीत आपकी नजर, क्या बोलूं, सुनिए.

आकाशवाणी ही एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं और जारी है आपका अपना प्रोग्राम आपकी याद आती रही। जिंदगी में कितने लोग आते हैं कितने लोग चले जाते हैं, पर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हमेशा कायम रहते हैं। ऐसे होते हैं नहीं होते बताइएगा। रात गहरी हो चुकी है, आइए डूबते हैं एक और ऐसी धुन में जो दिल के हर कोने को रोशन कर दे।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
9: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
8: इम्पॉसिबल
9: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
10: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
11: मंगल भवन मंगलहारी।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। कभी सोचिएगा पुरानी छत पर ठंडी हवा, हाथ में चाय का कल, कानों में गूंजता एक मीठा नगमा। जिंदगी कितनी बेफिक्र हुआ करती थी जब हम छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा दिया करते थे। ये गीत हमें उसी बेफिक्री के आलम में वापस ले आते हैं। लगता है जैसे वक्त जरा सी देर के लिए ठहर गया हो सिर्फ हमारी खातिर। चलिए ये अगला नगमा सुनते हैं, लाजवाब गीत।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जनाब कैसा लगा? एक घंटा कैसे गुजरा पता भी नहीं चल पाया, है ना? या आपकी रियाद आती रही ऐसे ही है, कोई बात नहीं, 11 बजे ताहिर आपके बाद दोबारा आएगा रंगे महफिल में। जब तक ख्याल रखिए, सुनते रहिए, खास तौर पे यही कहूँगा, FM रेनबो जो कि है दिल से दिल तक।

0: हाथी में आ चुके हैं। अब इंतजार है उस सुनहरे पल का जब पोडियम पर गोल्ड के साथ भारतीय तिरंगा सबसे ऊपर लहराए। शुरुआत करते हैं मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पूवमा राजू, विशाल थेनारसु, विद्या रामराज और मनु TSK क्वार्टेट ने 3:14.46 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्या रामराज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया। बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाओ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा। अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया। ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है। साथ ही महिलाओं की 10,000 मीटर में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है। 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था। 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है। अब रुक करते हैं मेंस 100 मीटर की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 सेकंड का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे। तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। यानी अब मेंस 100 मीटर में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं। अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया। अपने 6th और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59 मीटर की जंप लगाई और 4th पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया। यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया। इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रहीं। अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की। अनामिका ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.80 सेकंड में पूरी कर 868 पॉइंट, हाई जंप में 1.74 मीटर की कूद लगाकर 903 पॉइंट, शॉर्ट पुट में 11.15 मीटर के थ्रो के साथ 605 पॉइंट और 200 मीटर दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट हासिल किए। इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3,177 पॉइंट बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहे। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट, हाई जंप में 1.71 मीटर की छलांग लगाकर 867 पॉइंट, शॉर्ट पुट में 11.44 मीटर थ्रो के साथ 624 पॉइंट और 200 मीटर दौड़ 26.27 सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3,159 पॉइंट रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian doubles sculls rowers Satnam Singh

0: 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
1: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
2: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी 4 मुकाबले जीत कर ग्रुप स्टेज का समापन किया। यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ 2 मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार 3री जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
1: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
0: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreeja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdine Buttbook and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manu Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
2: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल 4 में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल 4 में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल 2 में 3रा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली। 3रे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हा यंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
0: India's Benedictine Beniston finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4 into 100-meter freestyle relay heats, Benedictine Beniston, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
0: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500-meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500 meter finals with the quartet of Niocha Singh Lithonjim, Varinder Singh, Oynam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500 meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds.

0: Megha Pradeep also missed out on the women's canoe single 200-meter final after finishing fourth in her five-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest from what happened in the esports arena with Prerna Sharma.
2: Esports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के लिए esports से अच्छी खबर आई है। भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में दो जीत और दो हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने esports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
2: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशू, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है। जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है।
1: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting when the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also be representing India in the shooting 10-meter air pistol and hoping to make it to the final. It's a crucial day for Kabaddi. It's semi-finals time for both men's and women's as India faces Nepal in the women's Kabaddi and India then face Thailand in the men's Kabaddi semi-final. 2 medals came for India in athletics today. Will the athletes tomorrow do well? Well, Manpreet Kaur and Krishna Jay Menon are in action in the women's short put final, while the women's pole vault final sees Sindhushri Ganeshan and Baranika Elangaval in action. We had success in the women's 10,000 meter. Will Gulveer Singh do well for India in the men's 10,000 meter final tomorrow? And then Meet Singh and Praveen Kumar are in action in the men's hammer throw final. Apart from the gold medal events, India are also in action in hockey, where the women's team takes on Japan. Sachin and Preeti are in action in boxing, while Animesh and Gurvinder will try to make it to the finals in the 100 meter athletics. India will also be seen in the action in surfing, fencing, badminton, keno, swimming and esports. So here's hoping for a great day from the Indian contingent. So that's all from the special Asian Games report on Akashwani. From producer Shehnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping that India have a glorious Friday and do well in the Asian Games. Thank you for listening.
3: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

0: That was the track dedicated to you by Sammy Davis Jr. It's time now for a short break, but don't go anywhere because you know we'll be right back.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो ब्रॉडकास्टिंग एट 102.6 megahertz. The program is All That Jazz, and now let's move into the 1950s. Miles Davis recorded

0: That was Miles Davis with the track A Night in Tunisia. Moving on, we have another short break coming up, but don't go anywhere because you know we'll be right back and waiting for you all.
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सब ये बॉक्स

0: रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: Welcome back, listeners. You're tuned to Akashvani FM Rainbow, broadcasting at 102.6 megahertz. This is All That Jazz. And from Miles, we move on to another giant of jazz. Louis Armstrong is the one I'm talking about. This particular recording of Let's Do It, Let's Fall in Love comes from Armstrong's 1957 sessions with the Oscar Peterson Quartet, featuring Peterson on piano, Herb Ellis on guitar, and Ray Brown on bass. And the song itself was written by the legendary Cole Porter. Armstrong had that rare ability to make a familiar song sound as if he had just invented it. So, let's do it. Let's fall in love with Louis Armstrong.

नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: That was Al with the track You Don't See Me. It's time now for the final break of this session of our program, All That Jazz. But don't go anywhere. We've got one more track that will blow your mind.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
5: इस शुक्रवार 25 सितंबर को सुबह 9:15 से 9:30 तक,
4: और जानिए SOL के स्किल और लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: Welcome back, listeners. You're tuned to Akashwani FM Rainbow, broadcasting at 102.6 MHz. The program is All That Jazz, and this is your host and friend, Aris Raghu, with the final track of this session of our program. Yes, we'll be ending tonight's session with the track My Funny Valentine by Art Blakey and the Jazz Messengers. This version was recorded live at Baba's Jazz Restaurant in Fort Lauderdale in 1980, with a later release featuring the performance. And if you know Art, you know that the quiet and restrained wasn't exactly his trademark. The Jazz Messengers were famous for being a kind of musical training ground for young jazz musicians. So here's a classic standard, but before that,

लीजिए पेश हैं इस घंटे के एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक है, प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद। भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 की परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। उड़ीसा में दक्षिण भागों और उसके सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में रोशिबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल्स स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में कांस्य पदक जीते। ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: मराठी वाणी आकाशवाणी।
1: रात का ये पहर आखिरी पहर, जब शहर की आखिरी रोशनी भी मध्यम पड़ चुकी है, हवाओं में एक अजीब सा ठहराव आ जाए और खामोशियां आहिस्ता से दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगें, ऐसे ही आलम में लफ्ज अपनी आवाज और अपना वजन पाते हैं और सांस रूह के तारों को छोड़ देती है। फिराक गोरखपुरी साहब ने क्या खूब फरमाया है, आने वाली ऋतु की तारीखी, आने वाले ऋतु की तीरगी में चिरागे शब जलाकर सो गए हम। आप सबों का बहुत बहुत तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। मैं हूं आपका हम सफर ताहिर, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पे दिल से दिल तक। रात के 11 बज चुके हैं, ये वक्त है गजल के उस जजीरे का जहां हर शख्स एक दास्तां है, हर सुर एक मरहम। आइए आरास्ता करते हैं आपके दिलों की बैठक प्रोग्राम रंगे महफिल में इस पहली दिलकश गजल के साथ।

गजल की फितरत ऐसी है कि ये चीखती नहीं, ये बस आहिस्ता से दिल में उतर कर घर कर देती है। गजल और उसके गायक जब ये दोनों मिलते हैं तो इख्तियार आंखों का के सामने बीते हुए मौसम ठहर जाते हैं। जिंदगी के फैसले और दिल की ख्वाहिशों के दरमियान जो कश्मकश रहती है, ये गजल उसी की तर्जमान होती है। आइए इस खामोश शब में अल्फाज के इस धरोहर को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं और चलते हैं अगले लाजवाब कलाम की तरफ।

कलम और गायक की एक आवाज वो शेर होती है जो सदियों तक दिलों पर हुकूमत करती है। कुछ गजलें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते वक्त लगता है कि जैसे ये हमारी ही है, हमारी ही कोई अनकही फरियाद थी जिसे किसी ने आवाज दे दी है। रात पूरी की तरह गहरी हो चुकी है, कमरे की सन्नाटे में सिर्फ दिल की धड़कन और हारमोनियम और सुर जिंदा है। ऐसे ही पुरदर्द लम्हों के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, गम भी जब गीत बन जाए तो सुकून दे जाता है। सुनते हैं ये रूपरवार गजल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो आकाशवाणी से, जो कि है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक। और ये है पसंदीदा अदबी सिलसिला रंगे महफिल। मशहूर शायरों की शायरी के ऊंचे मयार याद आते हैं अक्सर ये प्रोग्राम सुनने के बाद। दर्द की अपनी ही एक इज्जत होती है जो हर किसी के हिस्से नहीं होती। रात के लगभग आधा घंटा हमारा बीत चुका है, सफर मुकम्मल तकरीबन हो रहा है। आइए डूबते इस शानदार शेरो नगमे में।

कभी कभी किसी गजल की खूबसूरती सिर्फ उसे अल्फाज में नहीं होती बल्कि उस अंदाज में होती है जिस तरह उसे गाया गया हो। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल एक अलग ही एहसास पैदा करती है, मोहब्बत भी, अदब भी और एक खामोशी, खामोशी सिसक भी।

0: पहले प्यार की कसक हो या पीते हुए मौसमों की महक, ये आवाज हमेशा एक ऐसी शाम याद दिला देती है जो कभी ढलना नहीं चाहती। जिंदगी कितनी भी आगे निकल जाए पर कुछ एहसास दिल के किसी सफीने में हमेशा ताजे रहते हैं। मिर्ज़ा ग़ालिब साहब ने क्या फरमाया है, रहिए आप ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। उसी बेनियाजी के आलम में सुनते हैं ये बेहद नशीन ग़ज़ल।
1: बिलाखिर भूपेंद्र, जो मशहूर प्लेबैक सिंगर भी थे और कंपोजर भी, गजल के इस सफर में शामिल हुए।
2: गमे

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

0: बाजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, FM रेनबो और इस पे प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। एक गाना यानी कि एक गजल आपकी नजर लौट कर वापस आता हूं।

अब यही कहना चाहूँगा कि जाने का दिल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जाना पड़ेगा। वक्त ऐसा हो जाता है, जाना पड़ता है। बहरहाल फिलहाल यही कहूँगा कि ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, खुश रखिए, ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। खुदा हाफिज, शब खैर, और बने रहिए रेनबो के साथ।

रात्रि के 12 बजे है, प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है और सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी है और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में रोशिवीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने इस 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्किट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जीत पर बधाई दी है। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:03 हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो। मैं हूँ एस एम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अजीज दो
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के

0: घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर।
2: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसात अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप।

0: और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन।
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

रात्रि का 1 बजा है। ये समय है एफएम रेनबो मुख्य समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4th उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित किया। उड़ीसा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में घेरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्केट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी और भारत पहली बार यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2032 में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पुणे को मेजबान शहर चुना गया है। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 1:03 और 10 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4th उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री J.P. नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीता। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्किट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। और भारत पहली बार UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2032 में होने वाले इस प्रतिष्ठित योग्यता के लिए पुणे को मेजबान शहर चुना गया है। ये थी अब तक की FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:03 और 25 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सीते

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से राम

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदा दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू हुआ। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले और वुशु में रजत पदक जीता। वहीं सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके अलावा डबल्स सेकल्स रोइंग और मिक्स्ड स्किट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक भारत के नाम रहा। भारत पहली बार UAE रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2032 में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पुणे को मेजबान शहर चुना गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान। पुणे में गणेश उत्सव के समापन और आज प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। ये थे अभी तक के FM रेनबो इंडिया मुख्य समाचार।

एफएम रेनबो इंडिया पर वक्त हुआ है 3:05। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: उसने कसाया, पढ़ने न पाए उसने कसाया, देखो बजाना।
1: अरे वाह वाह मेरे शागिर्द,
0: थैंक यू।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4th उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे

पी नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने को मंजूरी दी। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले और वुशु में रजत पदक जीता। वहीं सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके अलावा डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्किट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक भारत के नाम रहा। भारत पहली बार UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2032 में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पुणे को मेजबान शहर चुना गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी और पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। ये थे FM रेनबो इंडिया पर अभी तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामापा, आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: रब
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बम्बई। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात।

0: हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

एफएम रेनबो इंडिया पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे पी नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इटली सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले

और वाशु में रजत पदक जीता। वहीं सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके अलावा डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्केट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक भारत के नाम रहा। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं।

0: मेरी वाणी आकाशवाणी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो FIR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।